दर्द भरे बयान हम सफर गम जो मोहब्बत में दिया है तुमने। अनूप जलोटा जी की आवाज़ में, अनूप जलोटा जी की आवाज़ में पैगाम आपके लिए पेश किया गया है। आपसे बता दे मेरे दोस्तों, आपसे बता दे कि चार प्रकार के लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जरा सुने और अपना दिमाग भिड़ाए और सोचे कि आपके जिंदगी में ऐसे व्यक्ति भी है। नहीं है तो बहुत अच्छा है, और आगे में जरूर से आप इस पर सावधान रहे। तो चले मिलकर हम सुनते हैं कि चार प्रकार के लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है वो

कहते हैं कि वे आपको अच्छे वे आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने। और ये सुनिए भी कि जिनके शब्दों और कर्मों में तालमेल नहीं होता, जिनके शब्दों में और कर्मों में तालमेल नहीं होता, ऐसे लोगों से सावधान रहे। यानी कि जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, ऐसे लोगों से बस आप थोड़ा सावधान हो जाए। आपके लिए चुनकर रखी हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों सुरेश वत्कर जी की आवाज में

जिंदगी आपकी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्तों। सुबह जल्दी उठे, बिस्तर से तुरंत निकलो, फोन नहीं छूना, ठंडे पानी से नहानो, इतने ठंडे पानी से भी मत नहाओ मेरे दोस्तों, ना लो वाटर से आप जरूर से नहा लेना, सेहत के लिए बहुत फायदा है। 15 से 20 मिनट तक जरूर से एक्सरसाइज करो, 15 से 20 मिनट तक जरूर से एक्सरसाइज करो, यानी कि एक्सरसाइज जिमनास्टिक। 10 मिनट ध्यान लगाओ, मेडिटेशन मींस 10 मिनट, हेल्दी नाश्ता करो, खसोंद अन खसोंद।

ये जो आपकी जिंदगी, ये आपकी जिंदगी जरूर से बदल देगी। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दो। तलत अजीज जी की आवाज में।

अजीज जी की आवाज़ में खूबसूरत है। आंखें तेरी रात को जागना बस छोड़ दे, जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है दोस्त, कि जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। समय की धारा में उम्र बस समय की धारा में उम्र बस जानी है, जो घड़ी जी लेंगे वही बस रह जानी है। ये भी एक सुंदर लाइन है, आप इसे भी जरूर से सुने कि खूबसूरत कुदरत का सुंदर संदेश, इस कुदरत का सुंदर संदेश है कि आप और मैं पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं। ये कुदरत का सुंदर संदेश है कि आप और मैं पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं।

तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम है। आप तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, लेखन तीन तख्त में ये पिक्चराइज किया गया है फिल्म रफी जी की आवाज में। यहाँ से हमने श्रवण कर लिए मेरे सुनने वालों। रिश्ते एक तरफा नहीं चलते, रिश्ते एक तरफा नहीं चलते, कोशिश दोनों तरफ से जरूरी है, कोशिश दोनों तरफ से जरूरी है। प्यार तो आधार है, लेकिन भरोसा और वफादारी भी जरूरी है। यहाँ सिर्फ शब्दों को ही नहीं एहसासों को समझना भी जरूरी है। वह चाहे जैसे भी आए सुख दुख में साथ निभाना जरूरी है। रिश्ते एक तरफा नहीं चलते, कोशिश दोनों तरफ से जरूरी है।

आशा भोसले जी की आवाज में फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर से ये सुंदर सा गीत आपके लिए और आज के वक्त में आज के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है।

50-50 क्या है इरादा? चलो बता दो ना क्या है इरादा।

देता

किशोरदा किशोरदा जी की आवाज में साथ दे रही आशा भोसले जी की प्यार का वादा 50-50 इसमें कलाकार सुपर सुपर हिट सुपर सुपर सुपर स्टार राजेश खन्ना तीना मोनिम के साथ अपना गीत यहाँ प्रदर्शन की है इस फिल्म में कि प्यार का वादा 50-50 और फिल्म का नाम भी 50-50 है, याद है ना ये फिल्म आपको। और कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं हम कि जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं हम जहाँ ये समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ से ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें जिंदगी में मजे ले रहे हम जिंदगी के मजे ले रहे हैं या जिंदगी हमारे से मजे ले रहे हैं। तो सोचो तो कि जिंदगी आपसे मजे ले रहे कि आप जिंदगी के मजे ले रहे, ये भी एक सोचने वाली बात है ना।

अब बस आप ही बता दो, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? मैं सुन रही हूँ, हाँ दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। जिंदगी में प्यार चाहिए और पैसा चाहिए। ये सुना दी हमको इस बार फिर, हाँ हाँ डबल, ये कपल किशोरदा और आशा भोसले जी। इस बार फिल्म छैला बाबू से निकाल दिया गया है आपके लिए। नेकन 3 सीफन सीफन तक में ये पिक्चराइज किया गया है। इस बार कलाकार इस फिल्म में रजिस्ट

जो हम खुशी से सीखते हैं ना, जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। जिंदगी एक रात की तरह है मेरे दोस्तों, कि जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब है। जिंदगी एक रात की तरह है कि जिसमें न जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है। हाँ, आपने ठीक बोला। हाँ, जो मिल गया वो अपना है, और जो खो गया और जो टूट गया वो सपना है। बिल्कुल आप सही है।

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-52-2747। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Hum to ruk jayenge, hum to ruk jayenge, par ye samay to nahi rukne wala hai, ye to chalte hi jayega mere dost. To yahan se humko sochna hai ki hame kya karna hai. ना गम से डर ना खुशी पे इतरा ना गम से डर और ना खुशी पे इतरा जिंदगी का यही है मंत्र जिंदगी का यही है मंत्र जो आया है उसी में जी ले तू जो आया है मेरे दोस्त उसी में जी ले तू कल का क्या है बस आज संभल जा तू आज संभल जाए और ये पल जो हमें मिला है इसी में हम इतरा ले मुस्कुरा ले साथ बिता ले तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी है ना

0: हम पहले कहीं मिले नहीं?
1: सॉरी, डोंट रिमेम्बर।
0: तुम? मेरा मतलब है आप रमा से नहीं?
1: शी इज डेड। माय नेम इज रोजी।

आशा भोसले जी भी कितने सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया गाना और गाकर यहाँ से हमारे खातिर तो छोड़ गया है, हम उसे सुनते हैं और पसंद करते हैं। मेरे दोस्त, इस बार फिर एक बार खूबसूरत गीत यहाँ से आपके लिए पेश हो रही है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, और क्या कहना चाहती हूँ वो ये है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है, हाँ ना? कुछ जाने पहचाने शब्द है ना, कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है तो कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही है दोस्त, कि जिंदगी का यही सच है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टैडफास्ट है, ना ना। स्टैडफास्ट एक फूल का नाम है, पर वो भी बदलते हैं। हम ऐसे सोचे, हमें दूर नहीं खोजना है, दूर हमें नहीं खोजना, हम अगर अपने आप को देखें ना, तो कभी हम शिशु थे, बच्चे थे, बेबी थे, और आज कितनी उम्र के हो गए हैं, और हमारा शरीर कैसा था और आज कैसा है। शरीर का अपना एक अंग आप देखे तो सोचो कि कैसा था और आज कैसे है। तो यहाँ कहती हूँ भी कि यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है।

दूर दूर से लोग ये रेडियो को फॉलो करते हैं मेरे दोस्त, आप भी फॉलो करते हो, आपकी भी बहुत सारी बधाइयां पेश किया जाता है। और हमने सुने हैं, देखे तो इस फिल्म का नाम है चरित्रहीन, फिल्म का नाम चरित्रहीन से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है। चरित्रहीन कहते हैं जो जिकर चाल चलन ठीक नहीं होता है, उसको कहते हैं चरित्रहीन। तो वही फिल्म से ये सुंदर सा गीत हमसे सुने हैं। इसमें कलाकार है संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। छैला बाबू से हम सुनेंगे, मैं छैला बाबू और आप क्या है, आई एम सॉरी।

0: देखो मीम साहब, ये तुम्हारा चिक्कू फ्रेंड है ना, बहुत देर से किट किट कर रहा है। ये कबाब में हड्डी है, ज्यादा किट किट करेगा तो हड्डी को हम अलग कर देगा।
1: हाँ, इसको अलग कर दीजिए।
2: कैसे अलग कर देगा? रीटा हमारा डार्लिंग है।
0: नो रीटा,
2: तमाशा।

ये दुनिया है एक नंबरी, तो आप है दस नंबरी, ऐसा ही होना चाहिए। कभी सर झुका के मत जियो, सर उठा के जियो, जैसा भी परिस्थिति होवे बस मुस्कुराते ही जियो। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये तो मैं मानती हूँ कि जिंदगी एक इम्तिहान है मेरे दोस्त, जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन एक नया सवाल है। हर दिन एक नया सवाल है, जो मुस्कुरा कर जी ले इसे, सुनिए जी, जो मुस्कुरा कर जी ले इसे, वही करते हैं असली कमाल। तो आप भी वही कमाल कीजिएगा। और कहते हैं कि जब

0: गाना सुना तुम्हारा, ये लो नोटा। अरे इस घर में बहुत कुछ है, बादाम, पिस्ता, काजू, गर्मा गर्म समोसे।
1: मैं इस घर का नमक नहीं खाऊंगा।
0: अरे नमक नहीं खाओगे तो मत खा, इस घर में बहुत कुछ है, केक भी है, हलवा, बादाम।

दोस्तों, आप भी 10 नंबरी बनो, एक नंबरी पे ना ठहरो। मुकेश जी और लता जी की आवाज में हमने श्रवण की है फिल्म का नाम 10 नंबरी। 1966 में ये पिक्चराइज किया गया है। इसमें कलाकार है मनोज कुमार और हेमा मालिनी जी।

यार वही वही करो मेरे दोस्त कि जो अच्छा हो। जो अच्छा कार्य है वही को आज पे अभी पर कल ढालो, और जो बुरा विचार है उसे बरसों नरसों पर छोड़ दो। बरसों नरसों पे आप छोड़ेगे ना तो आपको उसमें से अच्छाई दिखेगा। तो जो अच्छा है वो आज ही कल कर डालो, और जो थोड़ा से जो बुरा है, थोड़ा से बुरा है वो भी बुरा है, जो बुरा है उसे कल परसों पे छोड़ दो। सुनेंगे हम कि प्यार में, कि दुनिया में प्यार की सबको जरूरत है, आपको भी मुझे भी। जिस घर में हम रहते हैं उसको भी, क्योंकि प्यार से आप जिस घर में रहोगे तो वो प्यार से आपको अपने ही घर में रखेगा। अगर सहमत नहीं हो तो आजमा कर देख लेना।

प्यार की दुनिया में सबको जरूरत है। ये पिक्चराइज किया गया है नेखंतिन सीफन तख में। फिल्म का नाम समझौता, समझौता से निकाला गया है और इसमें कला मुमताज जी और रजेश खन्ना जी अपना कला दिखाई है और गीत का बोल आपने सुने कि दुनिया में प्यार की सबको जरूरत है। गाने वाली है गायकी आशा भोसले जी। जी हाँ, आशा भोसले जी की आवाज में हम सुने ये गीत। मेरे ख्याल से आज आप तक भी कभी नहीं सुने होंगे, तो सोचती हूँ आपके लिए ये भी चला देती हूँ। जान पहचान तो पहले से थी और अब पहचान रिश्ते में कैसे बदलते हैं।

ऐसे चुने गीत आज हम आपके लिए पेश किया, ये मुझे भी पता नहीं था। फिर भी किशोर दा जी के आवाज़ में और आशा भोसले जी के आवाज़ में ये कपल आज के प्रोग्राम में शामिल हो गई है। बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। जी हाँ मेरे दोस्त, कि बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे। सच में कि मिलने की खुशी दे या ना दे, जब कोई अनजाने मोड़ पर अपने बन जाते हैं, कुछ लोग जो अपने बन जाते हैं, तो उनसे मिलने की खुशी मिले या ना मिले, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। आप ये अपने जीवन में कभी देखे हैं? आपके जीवन में ऐसे भी कभी बीता हुआ है? स्पेशल स्पेशल आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

कौन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एंड नेटवर्क ऑफ द ब्लास्टर फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा found.fm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम हो आप जरूर तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 0702-1365-98। जो भी रेडियो का काम हो डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। दाम सिर्फ ग्रांटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, खास फरमाइश से हो, जरूरी खबरें, या तो आप अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर, या तो आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गा मैन हो ऑर्गा वुमन हो इवेंट ऑर्गेनाइजर, और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन रहे भी है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहरों द्वारा, द प्लस रेडियो के लहरों द्वारा। किफायत से नाम सर्विस ग्रांटी और क्वालिटी स्टार बैंस ऑफ द एस्ट प्लांट। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से यारों की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप जरा आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें और 0702-1365-98 पर आप तार करके इसके बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। जो भी रेडियो का काम हो देंगन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रेक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी जोर तोड़ से हम लोगों के बारे में बातें शातें करते रहते हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रिक्लाम भी बनाते रहते हैं। तह दिल से धन्यवाद। बेंचनों खिलत फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 0702-1365-98 पर। बेन फन हर्ट वेलकम। तो आप भी आए कि इस हसीन जो प्यारा सा हैप्पी हैप्पी फाहुन फैमिली है उसमें भी आप आकर शामिल हो जाए। 0702-1365-98 पर आप तार करें। वरके में तो आप भी एक ही दम लेकर बढ़ते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। और जैसे मैं आप सभी को आगामी में कह चुका था कि बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म आदमी तक, और इस मूवी जो रिलीज किया गया था 1968 में दिलीप साहब ने काम किया है। मलकाय हुस्न द ग्रेट एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी के साथ, और साथ भी दे रहा है इस मूवी में दिलीप कुमार जी के साथ महान अभिनेता द ग्रेट मनोज कुमार जी। शाकिल बारायूनी के अल्फाजे और संगीत है महान संगीतकार श्री नौशाद अली जी का। तो उसी फिल्म में से नगमे आप सुनेंगे, कुछ नगमे रह गया है सुनाने के लिए। अगला बयान, मैं टूटी हुई एक नैया हूं, क्या बात है, पद्मश्री सुरों का बादशाह रवि साहब जी के मधुर आवाज में मिलके सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

मैं टूटी हुई एक नैया हूं। अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला नगमा, एड फिल्म आदमी, कंपोज बाय मैस्ट्रो नौशाद अली, और सुनाया आप सभी को महान गायक सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, रवि साहब जी। फिल्म आदमी से कुछ जबरदस्त नगमे आप सुन रहे हैं, और जैसे आप लोग को मालूम है तो सिर्फ नगमे आप सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप साहब ने काम किए। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं, एक जबरदस्त द्वैत है रवि साहब और महेंद्र कपूर जी का, ये अति सुंदर द्वैत मिलके सुनते हैं, जबरदस्त कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो नौशाद अली। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, क्या बात, वाह।

है, व्हाट अ सॉन्ग, कैसी हसीन आज बहारों की रात है। दर्द भरी ये अति सुंदर बयान जिसे सुन के रोंटे भी खड़ा हो जाते हैं। एड फिल्म आदमी कंपोज बाय मैस्ट्रो नौशाद अली, और जिस खूबी से ये दो महान गायक, जैसे असल में तो ये गुरु और चेला थे, और दोनों ने इतनी खूबी से ये बयान को पेश किया, तारीफ़ काबिल, तारीफ़ काबिल। अगला बयान और साथ ही साथ ये भी आखिरी बयान है एड फिल्म आदमी, जबरदस्त सॉन्ग है रफ़ी साहब जी का, ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग भी है, कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज दे, क्या बात है। आगे सुनिए महान संगीतकार नौशाद अली के सांच पर, और अल्फाजे तो है लेखक बदायूं का, गला सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, रफी साहब जी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आदमी आज पुरानी राह से, ग्रेट कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो नौशाद अली, और सुनाया आप सभी को सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रवि साहब जी। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी नगमा आप सुन चुके हैं द फिल्म आदमी। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1956 तक में, सगीना माहातो। इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है अपने पूज्य अर्धांगनी सहरा बानो जी के साथ। संगीतकार है SD बर्मन साहब, और सुनाते हैं उसी फिल्म में से आप सभी को ये अति सुंदर बयान की गजब चमकी बिंदिया तोरी, और वो भी आधी रात को। क्या बात है, अर्षा भोसले जी और किशोरदा के आवाजों में।

0: अति सुंदर मजेदार सॉन्ग गजब चमकई बिंदिया तोरी आधी रात, हसीनों का पुजारी किशोरदा और अशा भोसले की आवाजें साथ, कोरस भी थे एस डी बर्मन के साथ। पर ये थी सुंदर बयान आप सभी ने सुना इन फिल्म गीना महातो 1970 तक। उसी फिल्म में से आप नगमे सुन रहे हैं। अगला बयान एड फिल्म गीना महातो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे। एक बार फिर हसीनों का पुजारी की शोरदा के मधुर आवाज में।
1: नहीं सुनता रे, सोता है बहुत जागा है ना ऊपर।

0: भोले वाले ललुआ, भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा

0: काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग, जा भग।
0: सजनी तू काहे आई

0: नंबर
1: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे आग लगी मेरी झोपड़िया में क्या बात है मजेदार सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सगीना महातो 1970 कंपोज बाय माएस्ट्रो एस डे बर्मन जी और सुनाया आप सभी को हसीनों का पुजारी किशोर दा तो हमारे प्रिय श्रोताओं वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर की चाहने वालों के लिए अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ शेर है जो दोस्ती यारी के बारे में जाता है दूर हो गए हमारे चाहने वाले दूर हो गए हमारे चाहने वाले याद बहुत आए हमें भूलने वाले मिट गए थे हम जिनकी चाहत में मिट गए थे हम जिनकी चाहत में वो कभी लौट के नहीं है आने वाले लोग पूछते हैं क्यों सुर्ख है तुम्हारी आंखें हंस के कह देती हूं रात को सो ना सकी लाख चाहूं भी मगर ये कह ना सकूं लाख चाहूं भी मगर ये कह ना सकूं रात को रोने की हसरत थी मगर रो ना सकी आज तेरी याद को सीने से लगाकर रोए अपने ख्वाबों में तुम्हें पास बुला के रोए हजार बार पुकारा तुम्हें तन्हाई में हजार बार पुकारा तुम्हें तन्हाई में और हर बार तुम्हें पास ना पाकर रोए यूं किसी की याद में रोना फिजूल है इतने अनमोल आंसू खोना भी फिजूल है रोना तो उनके लिए जो हम पर निजार है रोना तो उनके लिए जो हम पर निसार है उनके लिए क्या रोना उनके लिए क्या रोना जिनके आशिक हजार है क्या बात है वो सो जाते हैं अक्सर हमें याद किए बगैर हमें नींद आती नहीं उसने बात किए बगैर हमें नींद नहीं आती उनसे बात किए बगैर कसूर उनका नहीं कसूर तो हमारा है उन्हें चाहा भी तो हमने उनकी इजाजत के बगैर ये बात है शाम से आंख में नमी सी है शाम से आंख में नमी सी है आज फिर आपकी कमी सी है आगे मैं कुछ और कोशिश करूंगा सुनने के लिए अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो साला मैं तो साहब बन गया उसी फिल्म सगीना महातो में से अति सुंदर बयान आप सुनेंगे 1970 एस डी बर्मन के साक्ष पर एक बार फिर हसीनों का पुजारी किशोरदा बोले बाप रे बाप बोले साला मैं तो साहब बन गया तो बन जाओ ना
2: साला मैं तो

वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला धोता किस्मत हम साना बदलेगा, हम साना बदलेगा।

साला में तो सांप बन गया, क्या बात है। एड फिल्म से गीना महातो ने 1957 एस डे बर्मन के साथ हसीनों का पुजारी की शोरदा के मधुर आवाज में फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। नकमे आप सुन रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किया है। अगला बयान और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सबको तुमरे संग तो रंग बिताई साथ दे रहा है एक बार फिर किशोरदा एस डी

0: क्या हुआ?
1: अति सुंदर बयान तुम्हारे संग तो
2: Say hello to.
1: रैन बीताई, और ये भी आखिरी बयान था फिल्म जो अभी आप सगीना महातो रिलीज किया गया था इन 1970 तक, सभी गाने में सुना दिया। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था इन 1970 तक, और इतना चला कि क्या बताएं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म गोपी का, जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुए थे। तो उसी फिल्म में से अब आप नगमे सुनेंगे, और इस फिल्म गोपी में एक बार फिर दिलीप साहब ने अपनी लवली वाइफ सैरा बानो जी के साथ काम किया है, और साथ भी फरीदा जलाल भी इस फिल्म में काम किए हैं ओम प्रकाश जी के साथ, निरूपा रॉय जी भी। संगीतकार है महान संगीतकार जोरी द ब्रदर्स कल्याण जी, आनंद जी। तो उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग भजन है रफी साहब जी का, राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे की, सुख के सब साथी दुख में ना कोई।

जबरदस्त कंपोजिंग बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी फ्रॉम द मूवी गुआवोपी 1970 राजेंद्र कृष्ण के क्या अल्फाजे और सुना दिया आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रवि साहब जी। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं सुरों का देवी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे द फिल्म गोपी अकेले ही अकेले चला है कहां मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और क्या अल्फाज़े है राजेंद्र कृष्ण जी का मिलके सुनते हैं अ ग्रेट सॉन्ग स्पेशल

Le Chala Hai Kahan uit de film Gopi 1970, Rajinder Krishan Kalikhawayati Sundar Bayan, composed by the brothers Kalyanji Anandji. Aur suna hai aap logo ne Lata Mangeshkar ji ke madhur awaaz mein. समय पे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। गर्मी का मौसम है, आप भी जाइए कुछ ठंडाई पीजिए या जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, और ब्रेक के बाद जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत। तो जरूर प्रोग्राम को फॉलो करते ही रहना।

दोस्तों, रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व भी यानी परसोलक है बिखर जाए। और जिनकी कदर नहीं है, जब कोई आपका कदर नहीं करे तो उनसे दूर ही रहो, ये बेहतर है मित्रों, बहुत बेहतर रहेगा। और कुछ रिश्ते केवल सीख देने के आते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं और साथ निभाने नहीं। और जो बार बार तुम्हें चोट दें, उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है मित्रों, साथ रहने से बेहतर है दोस्तों कि उसे मुक्त कर देना। और कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। और इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ मित्रों, खुद को आत्मा इतना निर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या ना रहे, तुम्हारी गति ना रुके, तुम्हारी गति ना रुके मित्रों। इस तरह से अपने को निर्भर बनाओ।

0: मित्रों, कहे जाते हैं कि जीवन में सफलता केवल ध्यान करना, हम क्या बदला रहे हैं कि जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने यानी इच्छा करने से, इच्छाएं रखने से कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं होता है मित्रों। और जो त्याग करता है, जो गिर कर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है मित्रों, वही इतिहास रचता है। और माता पिता का संघर्ष, भाई बहनों ध्यान करना, हम आपसे क्या बतला रहे हैं। हम मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ बतला रहे हैं कि आप इसे याद करें, अपने जीवन में उतारें, तभी आपका बाकी जीवन सफल हो पाएंगे, अन्यथा पता नहीं मित्रों। तो माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग, दोस्तों हम उनकी त्याग को भूल जाएं, तो जीवन की सारी ऊंचाइयां, जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती है। मतलब खेन बतीकने अब जीवन में नहीं रहते, कुछ भी नहीं, सब खलास हो जाए मित्रों। ध्यान करते रहना।
1: जब हमारे पास बुढ़ापा आने लगता है, तो इस भजन के माध्यम से हम आपको बतलाने जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या होने लगता है। जब ये सब आप महसूस करेंगे कि आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ लेना कि बुढ़ापा

0: मेरे प्यारे साथियों, हर दर्द ध्यान करना, हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जब आप सोच रहे हो कि मैं बेकार हूँ, शक्तिहीन हूँ, एक मैं नीच, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्रों। अभी तक तुम में और शक्ति है, और जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक ना एक दिन छूट जाएगा, छूट जाएगा, सब कुछ एक ना एक दिन छूट जाएगा। लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे, जो सीख तुम मेहनत से लोगे मित्रों, वो तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी, हमेशा चलेगी। आपके ज्ञान हमेशा चलेगी, ज्ञान कोई छीन नहीं पाएगा आपके मित्रों। और कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ना सीखो, कुछ चीज़ को ना जिंदगी भर लेकर चलते रहो, चिंता करते रहो, बीमार हो जाओगे। छोड़ना सीखो है? क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता है, हर रिश्ता अमर नहीं होता है। कुछ बस अध्याय मित्रों, कुछ बस अध्याय होता है, थोड़े दिन के लिए जीवन में होते हैं, छुट्टा छुट्टी वगैरह वगैरह ये सब पता नहीं है, मगर कभी कर्म के अनुसार होता है ना। तो और कुछ केवल एक सबक है, जो कुछ मिले आपके जीवन में मेहनत से, या किसी ने आपको कुछ बुराई कर दिया, उससे जो सीख मिले हैं वो एक सबक है, वो एक लेस है मित्रों। डर उसे नहीं, डर नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, ताकि ताकि करते हैं, डर उनसे जो चुपचाप चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं, उन लोगों से डरना चाहिए जो तुम्हारे लिए एगो फालसेती करे है, वैसे लोग से डरना चाहिए मित्रों। और तुलना करना छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो, मतलब ओके ऐसे है तो हम के हो चाहिए, ओके मर्सिडीज भैंस हैं तो हम के मर्सिडीज भैंस चाहिए, ओके बीएमडब्ल्यू, ये सब बतिया छोड़, मेहनत करते रहो और जो मिले जीवन में उससे सुखी रहो, उसी में संतोष करना। तो तुलना करना छोड़ दो मित्रों, तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो भाई बहनों, उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं, उसे तोड़ दो है? तब आप उड़ना सीखोगे, तब आप फ्रे है पाओगे मित्रों।
1: पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना।

मित्रों, जो बात हम आपसे बतला रहे हैं और बतलाते हैं, इसे वैसा ही हवा में उड़ा देना नहीं है, जीवन में उतारो। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही, ध्यान करना इस पे हम क्या बोल रहे हैं। अगर माई बाप नहीं है तो फोतो है ना, खड़ा होके उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो भी। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ही मित्रों जीवन की असली पूंजी है, जीवन की असली पूंजी है। माँ के चरणों में, ध्यान करना, यमुनी दैंक सैनिक स्मरणी, उनका आशीर्वाद पावर उतने ही हैं। तो माँ के चरणों में वही शक्ति है, वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है। मित्रों, जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है, विश्वास करो तो गंगा मैया है और ना विश्वास करो तो गोत्रों के पानी है। मित्रों, खुश रहना, ध्यान करो, खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं है, यह एक कौशल है, यह कला उससे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी मित्रों, कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं है। तो जो कोई आपके बात ना सुने, समझाओ बतलाओ ना सुने, छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, अपन कर्म जाने, वो देखे का करे सके है। मित्रों, इसीलिए इसलिए

को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारे मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। जहां तुम चुप रहो वहां भर लोग समझ जाए कि करे आगे ना बतियाई, तो कुछ ना बोलते आंतु और ना ही देवत है। मित्रों, तो दोस्तों, हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है और उसे मुस्कुराकर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। मित्रों, और ये ना सोचना कि हम डरपोक है या दूसर कोई सोचे कि तू डरपोक है, नहीं, सो हाथ है निर्मित बस्त में से। और जो हम बतला रहे ना, ध्यान करके सुनते रहना, ध्यान करके सुनते रहना।

मित्रों, जो अंदर टूट कर भी, ध्यान करिए, जो अंदर टूट कर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा है। हाँ, वही सबसे मजबूत योद्धा है, इंसान है। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मा बल के आगे झुक जाए, झुक जाए मित्रों, क्योंकि आप में वो शक्ति है। और जब मनुष्य अपने आप की पहचानने की भूल कर बैठता है भाई बहनों, तब वो अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है, हट जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है, जैसे आपके साथ होवत है। हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते आपके साथ, तो आप सही रास्ता पे हो, चलते रहना मित्रों। क्योंकि, ध्यान करिए, क्योंकि वो स्वयं के आत्मा बल को भूलकर दूसरों की सोच धारणाओं और बातों में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि खुद की अहमियत को खो बैठता है। और जबकि वास्तविक शक्ति उसके अंदर ही होती है, तुम्हारे अंदर है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है मित्रों, आपके मन ही सबसे बड़ा साथी होता है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। शत्रु भी, तो दुश्मन बाहर ना खोजो, दुश्मन तुम्हारी कर्म से है, जैसा कर्म करियो वैसा ही मिले। प्रेम प्यार से रहिए तो प्रेम और प्यार मिलेंगे, और बिगी मांग खेलियो तो तुम्हारे सामने और बिगी मांग आ जाइए, तो टकराव हो ही, सुखी नहीं हो पाओगे मित्रों, सुखी नहीं हो पाओगे। इन सब बातों पे ध्यान रखते रहना मित्रों, हम सुमर बात नहीं बोलत हैं।

मित्रों, मैंने आपको भी बतलाया था कि मन ही आपका जो शत्रु है वो ही भी है। सबसे बड़ा शत्रु भी आपके मन ही है, मगर वो आपके हाथ में है। और यदि उसे मित्रों, यदि उसे दृढ़ न बनाया जाए मन को, तो यही मन तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा कर देगा। अनहैप्पी मन तीख व्यस्त में अनहैप्पी अन प्रॉब्लम। इसीलिए सबसे पहले अपने चित्त को स्थिर करो, अपने खोपड़िया को ठीक करो। पहले अपने चित्त को स्थिर करो मित्रों। दूसरों के कर्म और विचार क्या है, ध्यान करना। दूसरों के कर्म और विचार क्या है, इस पर समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनके कर्म उनका अपरिणाम तय करेगा, उनका अपरिणाम तय करेगा मित्रों। लेकिन तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों से ही बनेगा। तुम खुद अपने भविष्य का रचयिता हो और ना कोई दूसर कोई मित्रों। और यदि तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लो और फिर पूरी निष्ठा से इस ओर प्रयत्नशील रहो, तो कोई भी बाधा, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास करो हम क्या बोल रहे हैं मित्रों। ये सब बेकार की बात नहीं है, सोचनीय बात है।

मित्रों, आप देखिए कि कितनी उम्र के हैं आप, और फिर भी आप सोच रहे हैं सुधरने की बात कि हम अपने जीवन में और बेहतर करेंगे। और बेहतर क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो आप? सिर्फ ज्ञान से ही जीवन को सुधार आ सकती है मित्रों। तो इसीलिए आपको हम इस रूप में, इस तरीका से ज्ञान प्रदान करते हैं। इच्छा हो तो ले लेना, अगर ना इच्छा हो तो चलते रहना। जिस गाड़ी में आप चल रहे हो उससे चलते रहो, देखो कहाँ पहुँचते हैं। कितने लोग तो चले गए, कहाँ गए पता ना है। उसके बारे में क्या बोलते हैं आप, तो आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं लोग, ये आप तय करते हैं। हम यही कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उन लोगों से मिलवाते रहना जो आपको मिल चुके या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, धन्यवाद आपके ध्यान के लिए, और आगे बढ़ते रहना।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय, जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ। जो बीमार है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है, उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है, उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे, तो ये अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं, तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोशिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवा धाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। किस किस

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं,

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से रहे और दूसरा जो अटूट विश्वास

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एमफी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया तुमने दी आवाज लो मैं आ गया फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों एक बहुत सा सुंदर भजन हम आप सभी के वास्ते चलाने वाले हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी फ्रॉम द मूवी नया रास्ता।

फ्रॉम द मूवी नया रास्ता से हमने पेश किए हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा।

फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा, इसी फिल्म से हमने पेश किए है वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, किशोर आपको सुनाने वाले हैं।

चोर मचाए शोर है फिल्म का नाम। किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। घुंगरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, नुमाई थी मुकेश जी की आवाज में भी आप सुनेंगे। आंसू भरी है ये जीवन की राह, कोई उनसे कह रहे हमें भूल जाए।

अभी आप सुन रहे थे आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

फिल्म का नाम है दिल दिया दर्द लिया। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। दो दिल टूटे दो दिल हारे, हीर रांझा है फिल्म का नाम।

लता जी आपको सुनाने वाले थे दो दिल टूटे दो दिल हारे फ्रॉम द मूवी हीर रांझा से हमने पेश किए हैं। तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सबक से।

तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, हमें याद रखना। लता जी और मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत सुंदर सॉन्ग है ये, फ्रॉम द मूवी आराधना से हम पेश करते हैं

आराधना है फिल्म का नाम। आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी मिलकर सुनाने वाले थे। गुनगुना रहे हैं और खिल रही है कली कली। याद ऐसे करो कि हद ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतजार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसे कि कभी नफरत ना हो। यानी प्यार ऐसे करो कि कभी नफरत ना हो।

मैं किसी के प्यार में अभी आप सुन रहे थे। लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी रामपुर का लक्ष्मण। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं।

मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, लता जी आपको सुनाने वाले थे। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीत जाने पर समझ आती हैं।

पिपी पिपी पिया, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सौदागर है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं इलू इलू। कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सौदागर से हमने पेश किए हैं इलू इलू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास आपको सुनाने वाले थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गए, चांद का टुकड़ा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

आखिरी रास्ता है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किए है गोरी का साजन, साजन की गोरी अभी आप सुन रहे थे। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, फ्रॉम द मूवी अंजाम से हम पेश करते हैं सुनने वालों, अभिजीत आपको सुनाने वाले हैं।

बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अंजाम से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कुमार शानू पृथ्वी, यानी कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

0: रमा
1: हाँ
0: आज तुमने अरुण को गाते हुए सुना?
1: अरे सुना ही नहीं बल्कि देखा भी,
0: लोगों को उसका गाना।
2: दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।

कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दीवाना, से हमने पेश किया है। सुनने वालों, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं।

ऐसी दीवानगी अभी आप सुन रहे थे, फ्रॉम द मूवी दीवाना से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूँ, फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर।

जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी प्यार भरी राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड एंड यानी हैव अ नाइस एंड ब्लेस्ड संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।

0: सादर नमस्कार अदाबर। जैसे आप लोग के मालूम है तो ये हमारा देनहाक्षर का स्ट्रेंजर्स जो अपना फुल साज और संगीत लेकर इस महफिल में हाजिर है आप लोगों की सेवा करने के लिए आ रहा है पाकिस्तान से आपका मशहूर गायक बॉबी जेकर।
1: I will present the grandiose Bollywood live show सुनहरी मोमेंट्स। इस शो में भाग लेने वाले हैं पाकिस्तान और भारत का मशहूर गायक बॉबी जेकर, टू सिंगर्स नजम मुराद।
2: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।
3: जो लाखों लोगों के जीवन का दर्पण है,
4: एक महल हो

Babi Maklardai. घर खरीदने या बेचने के लिए एक ही अवल पता काबे मकलार दया काबे मकलार दया।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: पलई खान है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में सुरेश वाडकर जी आपको सुनाने वाले हैं मेरे सनम तेरा खत मिला.

मेरी सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत से पहले मैं आ गया। भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पाले खान से हमने पेश किए हैं मोहब्बत के दुश्मन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ जानू मेरी जान भी तू है, अलका याग्निक और सुरेश वर्कर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ओ जानू मेरी जान भी तू है, फ्रॉम द मूवी मोहब्बत के दुश्मन से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, एक बहुत सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम में। मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा।

अभी आप सुन रहे थे मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा, मोहब्बत से बढ़कर नहीं धर्म दूजा। सुनने वालों, ये तो सच है क्योंकि मोहब्बत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, नफ़रत से नहीं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, मधुबन खुशबू देता है। उषा खन्ना जी, क्षमा करना सुनने वालों, उषा खन्ना जी आपको सुनाने वाले हैं, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। चलिए मिलकर सुनते हैं।

क्षमा करना सुनने वालों, यशुदास और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुना रहे थे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, फ्रॉम द मूवी साजन बिना सुहागन से हमने पेश किए हैं। और इसी गीत में अभी आपने सुने हैं कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें ऐसे ही अपनी जिंदगी चलानी चाहिए ताकि कोई दुखी ना रहे। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं सुनने वालों, लेकिन अगर हम कोशिश करें सभी को खुश रखने को तो क्यों नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। फ्रॉम द मूवी सफ़र से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सफ़र, से हमने पेश किए हैं जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और ये सवाल तो होता ही रहेगा कि कभी ना कोई समझ पाया है और न कभी कोई जान पाया है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए।

अभी आप सुन रहे थे जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं और सुख दुख हमेशा जिंदगी में होते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप।

अभी आप सुन रहे थे ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम चलाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी शोर से। आप सुनेंगे जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ शाम। महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं।

फ्रॉम द मूवी श्योर से हमने पेश किए हैं जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं। पता नहीं कि कितने लोग ये फिल्म यानी ये फिल्म को देखे हैं, लेकिन इससे एक सीख मिलती है सुनने वालों कि हमेशा इस फिल्म में मनोज कुमार जी कहते थे कि जिंदगी में कितनी शोर है और एक हादसा हो जाता है उनके साथ तो फिर वो कभी सुन नहीं पाता है, और एक छोटा बच्चा है और बच्चा तरसते हैं अपने पापा के प्यार के लिए, क्योंकि उसका पापा सुन नहीं सकता तो वो लिख कर बताते हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है सुनने वालों कि अगर आप हमेशा कुछ कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है, तो ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, और जब वो सुनने लगते हैं तो बेटा बोल नहीं पाता है। यानी हमें कुछ ना कुछ फिल्मों से कुछ सीख मिलती है। तो ज़िंदगी में अगर आप हमेशा कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, तो ये गलत है सुनने वालों। चलिए ये गीत हम पेश करते हैं किशोर डा की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी दूर कराही, जीवन से ना हार उजीने वाले।

अभी आप सुन रहे थे जीवन से न हार ओ जीने वाले, और ये सही है सुनने वालों, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो जो आप अपने ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको कभी हासिल नहीं होगा। हार मानने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। आशा भोसले जी के साथ में बप्पीदा आपको सुनाने वाले हैं, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी खोना ना।

अभी आप सुन रहे थे जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। लेकिन कभी कभी तो रोना पड़ता है सुनने वालों। ऐसे हालात में लोग आ जाते हैं कि आंखें नम हो जाती है और आंसू थमता नहीं। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है।

अभी आप सुन रहे थे दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। सुनने वालों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और वो कहानी तीन दोस्तों की है। कहानी तीन दोस्तों की, ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त आया जब तीनों को अलग होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर, मस्जिद या स्कूल में मिलूंगा। धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

अभी आप सुन रहे थे फूलों से रंग दरिया से मौज ले ले फ्रॉम द मूवी ऑफर से यानी ऑफिसर से हमने पेश किए हैं। सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बॉर्डर से हम पेश करते हैं और ख़ास करके ये गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते जिनके परिवार विदेश में हैं।

अभी आप सुन रहे थे संदेश से आते हैं फ्रॉम द मूवी बॉर्डर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और ये गीत हमने पेश किए हैं उन सभी के वास्ते जिनके परिवार यानी जिन लोगों के परिवार विदेश में हैं। और कभी कभी ऐसा होता है भी सुनने वालों के माता पिता यहाँ पर रहते हैं और बच्चे विदेश में रहते हैं, और ये जो संबंध उन दोनों का होता है तो बहुत तकलीफ पड़ती है बच्चों को और माता पिता को भी। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है।

फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन से हमने पेश किए हैं ये सुंदर सा गीत, और ये गीत हमने पेश किए हैं ख़ास करके उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे विदेश में हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हैं और माँ बाप भी, लेकिन कुछ तो वजह होगी के बच्चे वहाँ पर है, माता पिता यहाँ है, या तो फिर माता पिता वहाँ है और बच्चे यहाँ पर है। सुनने वालों, ये गीत हम पेश करते हैं, ज़रा सा हम देखें। जी हाँ, गीत का बोल है, कुछ कर ले कुछ भी कह ले, एक हिंदुस्तानी से पंगा ना ले।

कह ले कुछ भी कर ले, एक हिंदुस्तानी से पंगा ना ले। सुनने वालों, एक और ऐसा ही गीत हम चलाने वाले हैं, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। और ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस देश में भी हैं, दिल तो हिंदुस्तानी होता है ना।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उदित नारायण जी के साथ में अलका यानी उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, कहाँ जा रहा था मुझे तो पता नहीं, लेकिन कहीं जा रही थी और किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

फ्रॉम द मूवी कुली नंबर वन से अभी आप सुन रहे थे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, कहाँ जा रहा था ये मुझको नहीं पता नहीं मालूम। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक।

फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। शान और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, आजकल तो यानी कई आजकल नहीं लेकिन कितने दिनों से सेल्फी का ज़माना है भाई, लेकिन हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि लोग भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो चलिए हो जाए तो खींच मेरी फ़ोटो।

अभी आप सुन रहे थे तू खींच मेरी फोटो, और फोटो खींचने के बाद सालिमा मेरा तो गला सूख गया है, कोका कोला पिला दे।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोग को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice Sunday and take care of yourself. Till next time.

0: कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता जी दे हमको अपनी आशीर्वाद दे।
1: मैं तेरी शायरी।
0: तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी आदाब, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

किस चून से आम की तो जरूर पता चल चुका होगा, पता चल चुका होगा कि हम स्टूडियो में आ चुके हैं। एक ही दम हम चलते हैं अपनी समाचार की ओर। तो दोस्तों हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर, हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर कि सूरीनाम में क्या हुआ है, क्या होता है वहां के सिचुएशन आपको बड़ी मीठी जुबान से कोशिश करेंगे बताने को। अब देखो भैया दृक्सुआ के चिजुआ सनमुआ में एकदम उफलाई गए भाई, उफलाई गए नानी कानी कितना कितना मिले भैया ना एगो दुगो बोले चस वाला भैया, 7 किलो के हिसाब से पूरी मिले है सूरीनाम में भैया, पूरी मिले है ना भौजी लोग जो गलवाम लगावे है ना कुनुआ से जो सूंघल जा दोस्तों, और ये वही पूरिया है जो निया से हुआ जाए भैया समकाल होवे है। तो ऐसे भैया कैसे स्ट्रांड के सिपाही एगो अख्तन फेफ तक यारख आरे स्टंट इज ऑन फ्लक भाई भगल है हाँ सेलन है कैसे स्ट्रांड से एगो अख्तन फेफ तक यार के आरे स्टंट भाग्य भैया, और ये है के ई अदमिया भैया अख्तन फेफ तक यार के एकर पैदाइश भैले कोलंबिया में, एक बोले कोलंबिया कोलंबिया जॉर्ज एलिजेर आरिसा ओर्टेगा हाँ इतना लंबा नाम है मौसी। तो एक बोले ई रहा एगो बड़का क्रिमिनल और खानी साक्षी के अड़ में रहा जो ना तरी मनी बोल चस वाला भैया खरूच खालख दृक्ष हंदल्ला, और एकर पास वापन फिर वापन रहा भाए और एक समन बन कर ले रहा निकर के भाग्य कैसे स्त्राते। अब सोचो भाग्य है नानी कि कोनो भगाई से ये बतिया हो सके तू वंद्रिक्सोन वाला अरमियन के पैसा भैया हिया से हुआ रहे है, और तू जाने हमारे सिपाही के नाम सूरीनाम में बड़ी ऊंचा है नानी, इतना ऊंचा है कि का बोली भाई बहुत ऊंचा है, और खूब पकड़ाए पकड़ाए बन हुए तो विश्वास तू कैसे करियो कि कैसे स्तरात के सिपाही एक भगाई से कि अपने से भगल है बड़का और खानिस्तान सीखी कोलंबिया रहा और इन करके कैसे स्तरात से भग्य है। बोले कोलंबियान बोले जो जेके फिनिश वे लांस नचोनाली तैत रहा, और बोले बड़का दिल नाम राफान क्रिमिनाली तैत के और खानी सासी, और बोले है एकर पास सवन के मिलल रहा कोकाइन मिलल भैया असीसी पेल मिलल रहा मीटा फिटा मीना मिलल और मरवाना हाज सब एक लगे पाए रहा ऊपर से बंदूक पिस्तौल सब पाए रहा एक लगे। सोचो तो ऐसा आदमी के सिपाही बन करी चौके चाहे भगे के बाकी भगे के भगा दे इसे कई शस्त्रात के सिपाही नानी। बोले दे साख वारे ने फरतरख्त बत्रों के नहीं इस ऑन द सूक बहजी स्टील अन फिर वापस वेत में। तो बोले है कोलंबियान ओम स्टीकर मारो अंदर है ए द सेलन हाउस इज ऑन स्नैप मेंस, तू जाने भाई सिपाही सनाम के विश्वास करे लाइक ना है नैनी रघुनो नंदन मोहबीर फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए, आपको हम स्वागत करते हैं नैली जी। तो सिपाही लोग के नाम बड़ा ऊंचा हमारे सरनाम देश में भैया, और हमारा मथुरा का वो ना मथुरा मनोरथ का बोले कौन मनोरथ है अरे हरीश मनोरथ भैया मिनिस्टर फान यूसीसीएन पॉलिसी के बात करी हम ते मनोरथ बोले तू खांग फॉर फ्रिंग दलिंग नीत इन फौदख
taal van gebieden in binnenland nog niet één beeld. Want Chinoa ke jijke Brunswijk apres ego grip Chinoa ke pakrise. John Chinoa barka barka banduk leke. Op binnenland met ze bewaak karatra apen sona ke. Brunswijk geile sapke. Aur skoutu surjati sapke pakarke. Aur laike bankarise. Te ekan mare me Hanis Manoraj bole jutsisi. Bole de toegang van vreemdelingen tot Suriname in de huidige situatie relatief willen eenvoudigen, willen bijdragen aan de situatie die zich dinsdag in het binnenland had voorgegaan, willen dat een chinoake, willen je zwaar bewapend gaan, willen ze pakken, willen liggen, lekker abbe tak, John Kwe kwamilallah, chori bhele skoutu ke mumma se bhaiya. स्कोटू के मुंह में स्कोटू में मुंह में भैया होकर परासी में बड़का कंटेनर रहा और ओमा क्वेक भरला भाई सब क्वेक चोरी हुई गए कोई जान न पाए से कि स्कोटू के मुंह में से चीज कैसे चोरी हुई गए तो ओकर बारे में मनोरथ ना बोले बोले अंदर सुख हो भैया वो अंदर सुख होते रहेगा बोले हु कॉम्प्ट दैट सो फील फ्रेम द लिंग सोशल फॉर हुनिंग क्राइकन आज वे हैड हेल प्रोसेस बकाइकन बताइए dat ergens corruptie plaatsvindt. Ik hoor in de wandelgangen dat mensen voor $2,000 gewoon een vergunning kunnen krijgen. In die en, is al jaren gedaan, dat doe je jaar euro, je toeke hè, dat toeke zijn naam ke vergunning wil ja, met le verblijf ke bhaiya, ja, betawe, dat hamar des me Suriname me ka corruptie hè. बराम मलिजवासी हमें सोम्स हंसे के परे भैया कौन बिकाऊ ना है बहुत कमती भैया 2000 एरो जे तू धरिए तो जाई के फरखिन किन लियो और चिनवा धर के बंदूक भी पा जाओ जाई के बेनलांत में सब फैल कर हे तेकर बारे में भैया मलाई रायमोन सपून का बोले हे यो ही सपून है भैया जो उनका बोले हैगा निकर के पीएल में से जाई के एनडीपी में घुस के और आज फिर बैठल हैगा काबुल दीना में अब यही रायमोन सपून का बोले बोले सोरा चिनुआ जो सारा क्रेक कमिट में बोले पकड़ान है बोले सिम टोन बस्ट्राइडिंग के बोले मैं दत रखेरिंग शाम में द पार्लियामेंट मु सिटन ऑन द गफासिजेट नेशनल प्लान फॉर आनपक आउट द स्ट्रिपलन तो भैया फे यहां पे के पार्लियामेंटारिए सिद्रिक सैमसन बोले है बोले मेदर बद्रैफन इन द बेलालाम सेइंग द एकन फेलेकाइट डिस्टन हेवन एंड दैरफॉर ओक वापस द बस्की हैपन गसीन द अफदेलिंगन बोले चिनुआ के खाली ना बोले औरो ढेर है बेनलांत में जो सबन एक बफेल के हुआ धरे हैं ओम दत सुनवा जे खोदे भैया वो बहुत जबर रूफ हुए है ऐसे बतिया है तो बोले एक के खाली चिन हुए थोरो बोले औरो है बोले जो हुआ बफेल करे थे एक कर बारे में शंगरुई वंग का बोले हैगा फ्राक्सी खनूद बोले है बोले चिनुआ बवाकस एन आनखोदन अफफूर्त हेड बद्रेफ ऑन बवाक्त इस अख्तर खलातन बोले जोन बद्रेफ वो अब सुनवा खोदत रहा बोले अपु बवाक रहा ook het heb je zelf roof gelegd. Hierdoor zijn ook spullen van die bedrijf ook derden weggenomen. Hij vraagt zich af wie de ondernemer hiervoor zal vergoeden. Dat je nou een keer beveiligingen kunt pakken liggen levante. Of je kan bedrijf voor hij op hun onbewaakt hoe op hun op hun ze chichuri hoe ik het zure ik hoe ik het op lantie ze poetje ki u aramien u bedrijf voor ke ke ab jaiga dekkere de kaila to bato ki utra chino pakar ke lega ilo bato jone ko bedrijf bewaak karat raha ma ab pakar ke lega ilo bato ta tu apan admi hua dharu sab ke bewaak kare ki to wan jato ke koi na tu sab ka kare dit in tien talen ja niet op het dergelijke manier gebeurt met ondersteuning van DNA zullen in komende tijd wetgevend producten worden ingediend zodat wij kunnen nagaan wat wij als land willen. Volgens minister kunnen buitenlanders nu als toerist het land binnenkomen. Orbole Hega, waarna de militaire politie slechts één zoomier onderzoek verricht voordat de toegang wordt verleend. De IC, want ja, hij ja. Toen hij hamar Hanis Manoraj John heen, bole 2000 verio, dan bole corruptie het raar he, ki jai ke tu, bole go vergunning tu paaje. Yo IC, want ja, hij hamar je nani loon.
और हम प्रोग्राम में आ गया है हर हफ्ता की तरह धर्मेंद्र श्री आपको स्वागत करते हैं। राज रामनगर भी आ गया है, आप सबको हम प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। अब देखो सुर जाती भैया तो लोन जानो है, सुर जाती लोन देश के खात लड़े है, देश बचावे खात लड़े है। देखो ईरान में का हुए, अमेरिका में का हुए है, फेनी रूसलैंड में का हुए है और उक्रेन में का हुए है, सब सुर जाती लड़ाई वाला है भैया। आ हमारा सरनाम के सुर जाती पिस्तौल लेके अपन घोड़वे में ताक लेवे है राज। हमार सुरजतियन के ना हसीला भैया मडे किया बतावे मिली तेर नहीं खनन तवेन तक यार के इन बेन खसकोतन ना ऋषि मेतन मान दी बकें साथ आसोम्बी कोनो सोम्बी से भैया गैला लड़े ते सुर जाती जो देश के रक्षा करे वाला भैया सुर जाती गल दाग दी जरे अख्तर बोफर बेन में हीर वेर द ओम स्टैंडर्ड बोले लेगे अकादमी सिकन हाइस में मिलिटेर राखते है फरविकल इन वोर्द वेस्टिंग मेट एन मान दी बकेल स्टार्ट आल जुम्बी से सुर जाती लड़त रहा मुंह से और बोले तेजे द हन खमीन सा सोम्बी अ रिवॉल्वर उक वेल अ लोलो बाल खनोम हेवन खतरोकन एंड फीर तर फेस कोट इन द रिक्टिंग है स्लाफ्ट ओवर हेवन कस लॉस एन फन द कोफकल द सुर जाती इन द रेक्टर बीन ते लोलो वाला भाई नहीं लोलो वाला पिस्तौल कैसे हुए जैसे फिल्म में डकावे जाने मुड़िया देखे खड़खर खड़खर ड्राई करे अमिताभ बच्चन वाला राका यार ये खड़खड़ खड़खड़ ड्राई करे बोले गोली कहाँ है बोले गोली कहाँ है बोले गोली नहीं है तो बोले आप गोली खा। तो ये वही बोला वाला को है कि भैया तो ई का बोले सुर जाती के दाग दी से गुड़ में और का बोले रमिया का नाम बा जोम्बी भैया जोम्बी लड़त रहा। तो ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा प्यारे प्यारे। अब देखो भाई एगो बाप का करिश मिंदर यारख सोन ओतो के कॉफर में भर के और भैया मर्चा लगा दे इसे हुआ पे जान ना चाहे लगावे के भैया खसला दे लोय में लगा दे इसे लंडवा के और लंडवा के बारे में सांदल करी से बपुआ यहाँ बतावे है अने अने हेव ते स्कर्प पेपर ओप

काकरी से इसके ही बोले बोले अजूमा भाई से बोले अजूमा भैया अजूमा चमरचा ओकर खफूलक दीलन फन लेखाम फन मेंदर यारक ओके लगा दी से भाई ओमा लुंडवा के लगाए दी से गा सोचो भैया इमे सांदलिंग है कि ना ये बातचीत हुए है गा ये बातचीत हुए है गा मार्च में तब मैवा काकरी से भैया मैवा काकरी से गैल है अब बोले मैवा भी बतरोक हैगा द फरदाक द हरफिया द मुदर फन द मेंदर यारक फनोमन द सेन सोन मोखलक बतरोकन वास कवेस बे ऑन खपास सेक्सुअल खतरा दिस इलंडवा तेरा बरिस के भैया ऑन खपास सेक्सुअल खतरा रहा और एक लगा दी से मर्चा बापुआ के बोले रहा मैवा और बोले तेनेस द रिट प्लास्टर द फरार्ते द मिंदरियारखे ओटो के कॉफर में भर के ले गए हैं और बोले हैं कि ऑम्स्टानर्स जिस दानख अलामेर्डन और बोले स्कोटु बेल के तो स्कोटु बापुआ के पकड़ के ले गए हैं और ओएम काकरी से भैया ouder de wettelijk en morele plicht heeft zijn kind te beschermen, opbollen op te voeden en een veilig omgeving te bieden, ongeacht de aanleiding vorm vermeen, ouderke baap maaike te verplicht raakke kreeg maar patana hai, ook er asli baap hai, bhaiya ki nakali baap hai, tu jane is die vader bhi hoi hai, to bolle de ouders van de minderjarige waren reis uit elkaar, volgens de verklaring van de minderjarige liet de verdachte zich tegenover hem herhaaldelijk negatief uit over zijn moeder. Het OM stelde in dat een kind op deze wijze wordt betrokken bij de strijd tussen ouders en dat is schadelijke gevolgen. Dus je bapua mewa. Isab kabole hega skeide hoochukal ha. To ikar bane me ab ikke 12 mahina ke. OM jahal mangi sega. Veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden. Waarvan 6 maanden vroegtijdig zijn. Te ilondwa. अब का करे बाप माई ना है भैया संगे तो इफर वालो सोइए सेक्सुअल हंडल करत रहा अब अपुआ जाए के मर्चा नहीं लगा दी से तो अब मरबो करी सेगा तो 12 महीने बरिस अरे 12 महीना अब जाओ फ्रुईती करो भैया अब तोर साथ कहाँ मर्चा लगी कहाँ मर्चा ना लगी तुलो जानो है जहल में मर्चा लगावे कि और कुछ लगावे भाई सेक्सुअल मिसब्रेक के बारे में तो हमारा प्रोग्राम में चित्रा उतार भिया गया है स्वागत करते साथ साथ शारात सारदेशा आ गया है मीला जी हाँ अब समझ गए हैं तो थैंक यू वेल थैंक यू वेल थैंक यू वेल फॉर सो फिर हार्चेस अब हम जाई है देखो हम जाई है फिर यहाँ पे सरमक्का के और महेंद्र जोगी लगे भैया जोगी जोगी के निकार के जोगी जोगी के अधीन फोर्स इतर रहा ओके निकार के बोले बहरे तू भाग जा ओम जाए जोगी बोले रहा अधीन के बोले इतना सलेक फोर्स इतर दया रहा हम लोग के कहीं ना मिले बोले तू सलेखता बाटे बस अधीन उधियाईगा दुनिया बोले अब सो उधर भीतर बोले तू सलवा मचे निकर बोले तू क्लोइतर बाटे तो जोगी जाए के बोले बोले क्लोइतर बाटे तो क्लोइतर लाइस्टर बाटे भैया का हुए दे ना में लड़े है जैसे कोई कुत्ता बिलार भैया झौंझियाई तो यहाँ अब जोगी रफीन से गई है तो अब वो बोले है जोगी बोले हम मांगे लान जोन तुलन इतना ढेर बैठा लान से रईस बनावे है जब देखो तो सिमोन चल जा है तो गगरी रिस लान चल जा देव देखो तो बैठा लान में रहे है तो अब बोले हम मांगे लाए जाने कि बैठा लान से रईसन दी मिनिस्टर इन अफखलों पर रखेस यार hebben gemaakt. Daarin moet volgens hem staan welke ministers zijn afgereisd, waar ze naartoe gingen, wat het doel en rendement van de reizen was en hoeveel geld daarmee gemoeid was. तो जोगी बोले असेंबली में बोले हम अंगले सब जाने कि तो लोग गैले है कौन ची कल्ले कौन ची नकल बाज भैया परमेश्वर का बोले है अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंसी ओवर दिस रीजन मार बोले है परमेश्वर बोले हाँ बोले हम भी मांगेला जाने तो एनडीपी के पार्लियामेंटेरियर रवीन परमेश्वर बोले है रिराक्सी में दार ऑफ दैट इट फॉरसुक ऑफ ओपन है रिएक्सी फॉरदीन है से फॉरहुक्त सेन दैट ओपोसी nu eveneens het belang inziet van een transparante werkwijze. Al dus permisser, bole hambilo mangeljane, bole apkeise, bole akia koele oppositieke.
ऐसे बोली से हमारी जनता हमना बोले लाइया जो लिखल है वो तो बतावे के तो हमारा काम है नयारो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता हमारी प्यारी प्यारी जनता श्री नाम में बड़ी आ रही देख हुए भैया बड़ी ब्रो फिक्सर मरे देखो यहाँ का भैल है जब देखो इतना अरेडिंग हुए है फरकेर में अब एको ब्रोफिसर भैया जात रहा मखेंता कनाल वेख में मखेंता कनाल वेख में को ब्रोफिसर जात रहा भैया और ओके मारिस ओतो मारिस ये नमिया का भैया जहां वो मास्टर की फुटबॉल फैलतुआ है हुआ तो हरदम रुकीला भाई तब वो मास्टर के फुटबॉल फैलतुआ लगे हुए पे मारिस ओतो 10 बजे एंड थिंग फॉर 11 सिपाही पाई से ब्रेक केगो ब्रोफिस के मारी से दिस दानक अरेस्ट खवोन दत है तेर प्लाट से ओवरलीड कि मर गए भैया द बस्ट्यूडर फन अ पर्सन इज ऑटो रेड ना आरेडिंग डोर सोंदर से ओम हे स्लाक्टोफर ते बकोमरन और ओतुआ मार के भैया भग गए ई बहुत दुख के बात है होई से कैसे जे जा स्लाक्टोफर वा लगे लेके दतरा अतरा जाइते साइड ऊ बच जा बकी ऊ पेल भागले भैया द बस्ट्यूडर इज ओवर खबरा फॉर फर्दर ऑन onderzoek en verklaring de aan kan hij parren rijden bestuurwakker hebben we iets weer naar haar maar abbe hem ook erbaren met al fini fini aanplukken hem betabe to beta snij bij aangeja hem beta jee aanpko hem swagge karte sat is sat aangeja hem gita bij aangeja hem to gita jee aapko bij hem bahut pjaar se apna program me swagger karte hem तो अब तो जाने हैं विलम हॉलीडर के बारे में नीदरलैंड की न्यूज है और ओके सेवन पकड़े रह जाए कि दुबई में भैया बहुत आदमी के मरवाई से तुलो जाने पीटर दफरिस के मरवाई से एके सेवन दुबई में जाए में पकड़ के नीदरलैंड आयल है और एक स्ट्राफ सेख में एडवोकेट एक खात ना मांगे लड़े एडवोकेट ना मांगे लड़े वन एडवोकेट के भी पकड़ के सिपाही बंद कर ले रहा वन ये रमिया इतना ढेर पैसा है वेलम हो ले इधर के कि सब कुछ मांगे कीने तो हो ले इधर वोट ना एलफ यार 11 बरिस बन रहा अब उगे ले एक्स्ट्रा बफेल दे रेटिंग में और वो है फिक्त में जे नहीं।

jarig holider ab oke milal hega levens lang sel u kabina nikriga ya batai gai se nani bole jinigi bhar ab tu nani kariye bole hega force and bertrokken hai seri morden me mer dan 11 11 jaar sat bij hij in een extra beveiligde inrichting EBI me in Veur, de strengste beveiligde gevangenis van Nederland. Orbetai gai dus to imagina me Raad van Stadsrechtstoevassing, Jeugdbescherming, Staatssecretaris van Bruggen, Nauw Besluitskeritske Holleder, Gevangenisregime Jijga, Arno Rutte, had Holleder verblijf in de EBU ondanks de Epipaisega. Levens, Janneke, levenslang keer je halpaise dus toe. Orhan Batjelle Willem Holleder, kebari mee. हमारे जनता और आगे हम अपना प्रोग्राम के लेकर चलते भैया चलो जानो फेनेसुएला में आज बेफिंग जबड़ा आयले बहुत आदमी मरल है फेनेसुएला में सूरीनाम लेकर ना पहुंचले भैया वहां सूरीनाम तो फेनेसुएला से दूर ना है लेकिन अब मेक्सिको में भैया के सुवारा आज बेफिंग फॉर द साउथ वेस्ट कोस्ट में मेक्सिको में और मोखलक हैगा कि एगो सुनामी आ सके हैगा मेक्सिको में दिस एक हो में हार्ड फास्ट कि सूरीनाम में ना चल जाए भैया वन दिस सोर्ट आर्थबेविकेन खा दोर मेंसेस जी खा कौन दोर और यहाँ पे बताए गए हैं साउथ वेस्ट कोस्ट मेक्सिको में स्वारा आर्थबेविकेन आइले जहाँ का बोले है आर्थबे क्राफ्ट रा 7.4 इस हील ग्रोट मेंसे अमेरिकांसे गोलोगीसे दिस बताए इसे कर बारे में बोले है अन 10 किलोमीटर डिप्टर हाँ Porto Madeira में फ्लैग बाय द ग्रेंज फ्रॉम ग्वाटामाला के ग्रेंज पे मेक्सिको के अब बोलेगा वार्स्क्यूइंग करिसिएगा कि मुखल के को सुनामी आने वाला है दोस्तों मार लातवे खुद फॉलो कर कि चीजवा ओइसे है कि अबे दोरो ना आवे भैया वन वो वेट अलमाल द ग्रोट सुनामी दी वे हट नामलक दी इज फॉरबाय मा हुफ स्कादा हाती गदान एक होप इट नी दैट इज सो इज गेबर्ड मा इन फिनजुएला हैवे वे नामलक द आर्टबेविंग गार वार हंड्रेड मेंसे ओवरलीडे सेन डकलोस सेन हम लो जाने ला फिनजुएला में का भाई ले तो ये बातचीत हो रहा है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता अब देखो चकल्लस भैया अबे अमेरिका ईरान के तुरिया हम बता का भैले पहले हम जाएं और सलंतवा में घुसी या उक्रेनवा में घुसी सेलेंस्की भैया अब देख का करी से सेलेंस्की का करे भैया रुसलान के बोट जितना समुंदर में है सब के ड्रोन से दागे है ई तो जैसे स्ट्रात हॉर्मुज के चियुआ तुलुन जाने ईरान है और अमेरिका हुआ पे लड़े है हॉर्मुज के जहां से तेलवा के बोटियन पास हुए है अब ई का करी से सेलेंस्की अब रुसलान के पहले सब राफी नादर रहेवन बहुत ढेर दागी से अब रुसलान के बोटियन दागे के शुरू करी से रुसलान के पुतिन सोचे अब का होई कहां शुरू करी और कहां एंड करी जाने चाहिए कैसे तो यूक्रेन से प्रेसिडेंट जो नहींगा वो है सेलेंस्की अब वो का करी से भैया अपन आनखवीचा सेक्रेटरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के डिफेंसी के बोली से यहां पे भैया कि वो सब डिफेंसी के आउट मिनिस्टर क्लिमेंको आन फॉर सिक्योरिटी रात के धरी से को पुराना मिनिस्टर रहा डिफेंसी मिनिस्टर जो रहा लेडर टू प्रोटेस्टन इन अंडर में कीव एवं क्लोंग द सेलेंस्की विल अनवेजन फॉर अमतनार तो अबे एकरबा बारे में तुरक के और फीनी फीनी हम बतावे कि का भैल है और का ना भैल है भैया लेकिन लड़ैया जोन है बहुत जबर हुए भाई बहुत जबर हुए है उधर ईरान अमेरिका शुरू करी से दागे के मेरी तेरे दूल बहुत ढेर के दागी से एगो बुड़की भी दाग दी से जहां बुड़की पचे सामान जात रहा ईरान के
ओके डाक के तूर दे इसे। और इधर ईरान का करे हेगा मेरा उस

ह्यूस्टन में जहाँ जहाँ पे अमेरिकन से बासस हैगा, जैसे हैगा का बोले हैगा योर्दानिया में, वो सबके खूब दागे है। देश की लड़ैया कब दोन हुई भाई, बहुत आफत है, बहुत आफत है। और तेल हुआ लड़े भैया, और हम लोग तेल हिया महंगा में महंगा में चलो, और हम लोग का बोले है किनो नीदरलैंड में तेल हुई है अनलोडेड 2 यूरो 30 सेंट हुई है दोस्तों पर लीटर हैगा, 2 यूरो 30 सेंट हैगा प्लस मिनस, कहीं पे एक चीज ज्यादा है और एक चीज कमती है, बड़का दाम पे और महंगा हो गया है, बेना में और सस्ता है, तो सस्ता का 2 यूरो 30 है भैया। और एक हफ्तो हम भले रह ली तो हम भले रही 2 यूरो 24 सेंट पे लीटर, और ये हफ्ता में हुई है ये अब तो हम 2 यूरो 30 सेंट हो गया है। तो दोस्तों हम और जाए भैया एसएलएम की ओर। हाँ, तो एसएलएम में हमारा टोनी स्त्री भी आई गई है। टोनी जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं, अलमेर शहर से आकर हमारे प्रोग्राम में जुट गया है। अब देख का भले एसएलएम वहां के तोरिया SLM heeft een persbericht verduidelijkt die bole hega luchtvaartmaatschappij geen officiële audit pijs van een internationale civiel toe jane ze hebben vliegtuig van keur kere het hoe SLM ze hebben keur kere zega ki u veilig he buitenland me ure kina te ze hebben go bericht paira dat die veilig he maar hier pe aplika lega bole officieel audit na bhai lega van de internationale bole organisation heeft ondergaan het ging om een vrijwillige veiligheid uitgevoerd door Duitse bedrijven, ook vrijwillige Duitse bedrijven. Ook er hebben we binnen officieel naam hele de correctie volgt nadat eerder berichtgeving volgens de maatschappij mogelijk de indruk heeft gewekt dat SLM rechtstreeks was doorgeleerd. SLM benadrukt dat dit niet het geval is en zegt onduidelijk te betreuren. De Isabolera aangekeken SLM ke mag in buitenland met bolle goedkeurige veiligheid hoegen he, maar blijkbaar hega ke Duitse egomaatschappij vrijwillig keur kalera al SLM ke admi huwa pe bhaiya pagla ka dage lagala bombal dage lagala khaba kaate lagala gana gawe lagala ki hum lon pel deli baati aur na jamu is onderzoek kere, te ab later heb je jou bijlega, te bole hega, bole en bole hega, bole ijsje na he, bole dit audit werd uitgevoerd, bole een geaccrediteerde een auditieorganisatie binnen het internationale programma. Hoewel de normen waaruit de controle was gebaseerd afkomstig te zijn van ICAO, betekent dit volgens de maatschappij niet de sprake zijn van officiële audit. De onderscheid acht SLM belangrijk voor correctie en transparantie informatie. Nee, er mijn gana gawe he, ako fariari he jena he, ako bak katai lega le, maar nani, aise batia to, to reshma nibar sandhiniya bhi a gaya he, aapko hum bhi swagat karte he, apna न्यूज बरिख्त के अपना प्यारा प्यारा प्रोग्राम में तो रेशमा नीबर भी आ गया है। तो और आगे हम अपना प्रोग्राम भैया सुरीनाम के स्कौतु का भैया हम लोग तीन पेन दे सकेला भाला रेशमा स्कौतु ने इतना जबर बदमाशी करे भैया देखो कैसे स्ट्रासुट बड़का क्रिमिनल भगे 6 गो 7 गो को कहीं न पकड़ा रहा तो अब देख एगो स्कौतु फिर पकड़ाएंगे भाई सेरगियो भैया सेरगियो पकड़ा है पोलिसी मान सेरगियो भैया ब्रासिलिया में चले गए रहा ब्रासिलिया से आए लोग के सेंदर ये पे पकड़ ले से भैया एको 40 बरिस के सिपाही से नाम के सेरगियो से ही वो चल गया रहा ब्राजीलिया जैसे लौटल हैगा ओके सेंदर ये पे पकड़ ले से पो ने प्रोक्यूर जनरल जो ने हफ्ते से सीखे donderdag gemeld kreisega ki oke sanrai pe pakri sega ayeremia ka hai word verdag van diefstal voor de duistering en medepleging dan wel medeplichtigheid van diefstal en verduistering zo chot bhaiya ya likale gesocht de politieman sergio tu sipahi bate bhai o itra cheez hai tu muriya pe ba
Ik er maar in me boele een Brazilië naar Suriname is teruggekeerd op instructie van zijn advocaat. Vera meldde hij zich vervolgens bij de militaire politie. Vanwege geconstateerde onregelheden zal de advocaat op ik er maar in kahoei to irmaji ap kobi hem behoed piaarse op een programma mee zwagat karte he. Je wo hier is ma Irma Irma Ramte Helsing. To Irma ji, अब देख भैया निकेरी में का भई लेगो पिया कर नशेड़ी में का करी से तोनिया देख नशेड़ी का करी से बोलिए जोनी ढकोले हो अरे ढकोले महाराज है ई दारू पी पी भैया और जब बीर कोई डाम पे जात रहा तो ओके गरियावत रहा लड़त रहा झगड़ा करत रहा उपय कड़वन के तो हम भी जानी रे कोई जमाना में हम सरनाम में छोटा रही तो दुई गो तीन गो हमार रहा बीरवन नाम ना ले भैया जो डाम पे पास हुए जे ही देखे वही के नानी माई उल्टत रहा गाड़ी दे उत रहा आदमी डर के मारे कुछ ना बोलत रहा ओके एरमा सोचे का जाए नशेड़ी के मुंह लगे का जाए नशेड़ी मुंह टेररिजेर करत रहा पर्सोनल कैनिक मेंस इन मेन ब्यूट En ऐसे निकेरी भी एगो 58 यार के निकेरिया ने भैया दारू पी के बीर लोग के भैया गाड़ी देवत रहा सब कुछ कर ऐसे में एक रोज इतना ढकोली से कि 7 बजे रात के ई बात हुए पीसांग का पकवे ते पीसान भैया ना बारा बनावे वाला पीसान रस्तवा के नाम बा अने रस्तवा के नाम बा पीसांग का पक वेख में ते एगो औरत के भैया फिरन देर तक यार के औरत के का बोले है गा और ओकर दुई गो बेटुआ एगो 14 एगो 15 और ओकर बेटुआ के गो संगतिया 19 बरिस के ओके सब के ई अदमिया पे कड़वा एम्हा एर अनफाल करी से भैया औरत के तीन गो लड़कन के 14 बरिस के लड़कुआ के काटी से भैया काटी से ओकर हाथ में गहरा घाव होई गे है राज गहरा घाव होई गे है 14 बरिस के लड़कवा के काठी से और ओकर माई के भैया ओकर माई के भी काठी से कितना देही में कपुआई से ओकर देही में और बतावे हैगा ओफर फॉर वार्निंग बाय द अंदर अनवेज केस निच्छ गमेल्ड और बोले द पुलिसी स्टार फरदाख्त बकेंड आंस अल्कोहल फरस्लाव एंड सो बुर्टबोनर फाकर हैबे uitgestelden uitgeschelden op bolle ik er waren sipahi paradijs ke aramia ke pakad ke lege hai korte tijd later aur okar ghar se aur bolega jo che katera uh pai sega bas lakh le se ab I jayega jahal mein bhaiya natürlich ab ek jahliya mein daruya kaise paega kaise pai nani to ye baat hai hamare pyare pyare जनता हम सुचित लुके को गनवा सुना दे ता अबे हम तुरंत आ जाएंगे विनीता गौरा पूजा भैया कोनो गाना चटनी है

और मोरे जग पुरमनिता विदी और ये था एक चटनी जो जो आपके हम सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं और आगे तो हमारा दिल बुद्धू भी आ गया है, आपके स्वागत करते साथ साथ रानी समुझ भी आ गया है। तो रानी समुझ मारा बहन होगा लेकिन बहुत सा ज्यादा समुझ है, तो आपको भी हम स्वागत करता है रानी से बुझी साथ साथ दिल बुद्ध भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में सब पे जुड़ गया है। तो अब हम जाई भैया ई हम जाई है जोन अनमी बड़ा जबर चूसे है कुको ही नानी। हाँ जानो हमारे काम है जैसे ही सुनुआ कुकुया के बन हो जाए तो हम अब तैर बताएला कि कुकुई नहीं दलांत ना लियो हुआ कटिया में ना पकड़ियो बन है बकी सही सुनुआ खुल गए है सही सुनुआ खुल गए भैया। हाँ अब कुकही तुलोन का बोले पकड़ सके है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल ले कुकुया बंद रहा। हाँ अब कुकुही खुल गए है, अब जे जे सरनाम में है तुलन जाए के चोपू कर सके कुकुही मसाला में बनाइयो खूब भिंडी डाल के। हम तो ना खाइए लेकिन जे खाए भैया बड़ी स्वागत से खा है। अब सबको हम बोले ला भैये से एस माकले कुकुही अब हो गए है खुल गए है और बोले हैगा सही सुनुआ खुल गए है जिस आप लोग अब सगरो जाकर पकड़ सके है बेच सके है तिस इन द खसलोतन सही सुन फरबोडन। हम देश और अंडा जोन है भी बंद रहा दरनाथ इस एट ओक फरबोडन ओम त आलन तेरे एयरन कैट ऑफ एयरन नेस्टेड फरदीलन। तो हम बोली कुकुहिया के बारे में बोले वन कितने आदमी भैया जोन सुरीनाम में बाल उस सब के लावे मांगे हैं लेकिन उस सब के नालाई सके भैया। हाँ भाई जैसे बोली ला इकोरता तेरे पे फेव तक यंगरा सुरीनाम में अरेनिंग से मरा ले भाई दैट इज हील फील है बुद्धू Verkeers doden taal loopt snel op al 50 slachtoffers die ja en dit jaar meer een deel jongeren zijn overleden bij. Ja, wat we hebben, bolle 2025 bar me 61 go admi maralla verkeers se. Bolle terwijl abbe hamlo julim bati aur 50 go bhaiye mar gaye bhaiya abbe hamlo ke deisha malak paral hai ka hoega bhala Harish Maroje jisne police bolle meran del fara slachtoffers sein alamal jongeren mensen apan betwon ke bitiyan ke khud aprel unje tulun jayyo to amplon का बोले अपन लड़कन के खुमोई से देखियो यहाँ पर रानी बोले फौचे फान क्वी क्वी ओ या मैं यहाँ तो लिखल है कुकुही इस ओपा तब हम अब का बोली जो ने लिखल है वही हम बोलत है क्वी क्वी सकी सुन इस ओपा सीजन फॉर क्विक क्वी वेर ओपन स्टार्ट हियर। मैं खुद मैं से एक आई फॉर दूर मैं मैं न्यूज़ तो लोन जानो है एगो एगो काम बोले है केरकी के आदमी है अरे भैया पास्टोर है हम ना बोले ला मीसी कब्बा के हाँ हम बोले ला एगो मैया के भैया मैया के बोले ला एगो पास्टोर रहा तो एक के मांगे बनावे इसराइल के अंबासादर मांगे बनावे सब भैया तो एकर बारे में आदमी लोग बड़ा बसवार करी से बड़ा बसवार करी से मिनिस्टर मेल्फिन बोफा बैठने साकन के कहा बोले हैगा बोले लेख नीड वाकर फॉर अ क्रेडिट ऑफ द मोनुमेंट फॉर द बिशप स्टीव मेयर als niet residerend ambassadeur van Suriname voor de staat Israël volgens de bewustwand in de overige kritiek op mij veel persoonlijk gericht en niet zakelijk op zijn werk. तो एक बारे में अरमी लोन बहुत बहुत क्रिटिक लेवर कर रहा मैं एक बारे में एनपीएस के फ्रैक्सी लीडर रहा जेब जेरल पावीरे जो फोन द बसलेटन फॉर द हैंडलिंग फॉर इजराइल टेकन ओवर द पैलेस्टाइनियन फुलकॉमन इन स्ट्राइस है मेड ए नॉर्मल फॉर वार्डन तुलन जानो है और मलाई लोन मुस्लिम हुए भैया और तुलन जानो है इजराइल जो रहा अब है अब पैलेस्टाइनियन के संगे का करी से
तो हमारा सूर्य नाम के जो मुस्लिम से गा मतलब की दे नाम है तो इस सब नाम मांगे है का कि इसराइल में जाए के और एगो अम्बासादर बैठे en daarom hebben ze deze kritiek, mensen. En dan mogen jullie zeker weten hoe en wat het is. To hum chalte hain aur aage bhaiya hiyan varon to tujhane bara moye moye vorda hai to punam avtar bhi leading se aa gaya hai punam ji beti aapko bhi hum swagat karte hain sathe sath sunil sunil dat gajari gajari ji आपको हम प्यार से महा स्वागत करते हैं तो तुलन जानो सोमो हार्जो पॉल सोमो हार्जे का बेटा हुआ बरोन तो हाँ इतना लंबा लंबा कहानी बतिया भैया किलो मीटर के फैया पे के फन आ तो सेट गरियाए के धर दे से और एक तोक्स तास मुश्किल लिखिंग मिलल है लेकिन एक कोई पकड़ के बनवे ना करे है हाँ तो अब एकर बारे में भइल है कि oud minister van Binnenlandse Zaken, de Bissake, Oro ex-minister Klimor Hoofdraad ke Financiën ke Riyad Nur Mohammed Oweke in staat van beschuldiging sab kal raha voor strafbare feiten. En hier bataye gaye hai Bronto Somohard als verdachte verhoord door OM ab oke saban verhoor kari se Bronto ke ma kaise bhail kaise na bhail hai aur naya news se bhaiya Iran melt 30 doden na Amerikaanse aanvallen. Chauk satro chuige ladaiya bhaiya. Aur 30 army maral hai Iran ke. Amerikaanse aanvallen jo bhaile Iran me. Bole hai ga raakten meer dan 260 gewonden. Ekar bare Iran ke woordvoerder bole hai. Aanvallen over en weer. De afgelopen dagen bahut aanval ke is Amerika Iran ke upar. Aur bole Iran भी दागी सेगा लुक्स अनफाल कैसे कुवैत में और बहराम में जहां पे अमेरिकान के बस अमेरिकान से वहां पे उसके बासस भी हैगा फोल्कस ईरान से अने खारदा बोले अमेरिकान से वापन ऑब्स्ट्रक्ट प्लाचन के दागी से जमन द फेसमेल अनफाल ने हमर आउटकफोर की दसन को मिलिटेरे दुलन इन द बूर फन द स्ट्रेट फन हॉर्मूज एंड इन द गबीडे फन ईरानसे कस्ट दारबे वार फोल्कस अमेरिकानसे लेकर अंडर मीर रक installatie, drones en marineschepen. Het doel van mensen, ik volg de oorlog. Namelijk niet alleen van Amerika en Oekraïne en Rusland, maar toch wel heel veel mensen. Je baat hey, hamari piari जनता कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा तो दोस्तों हम और आगे चलते हैं

Ja, to, hum phir wapas aa gaye hain. Dus mensen, yahan pe bataye gaye hain मास्कर सुरीनाम में भैया मास्कर जाने का बोलो तो ना जो हमार मौसी लोन में के पुआ लगावे मास्कर वो के ना बोले ला चोरों और मास्कर वाक बोले ला सुनील जो मुड़िया में पहले कोई ना देख पावे औ मास्कर वाक बतिया ला ना हमार भौजी जो लगाए लगाए चमकावे वो मास्कर वाना है तो भैया ई वो मास्कर वा है अब भैया जो समझ जाए कि ऊपर फाल करे है यहाँ बताए गए है करिया करिया मास्कर पहले स्वार वापस परीख ओफरफाल खौज सुकर्स काम पर और दुकान में भैया वही माने तो चिनवालो हुआ जाए जाए खौज सुकर्स जो ने अपन बफाई लिखिंग धरे हैं यहां पर बताए गए हैं कि 12,000 एसआरडी 15 ग्राम सोना मारी से जहां पे सोनवन खुदा है क्रिमिनेलन खौज में एक एक्टिविटी टू कैन फोर्स दैट एंड से फ्रीस एंड दैट द क्रिमिनेल कैन टर्केरन ओम दैट द बर्ड फोकस हैं खरिंग वास में से तो ई रूफवा के चिजुआ हम तो लोग के बड़ा ढेर बताई चुकली है हम सोची तो लोग के और मोई मोई न्यूज हम बताई भैया और मीठा मीठा न्यूज हम तो लोग के बताई क्या होता है देखो भैया हम जाए तेरी अफ्रीका के ओर हाँ बोलिए जॉनी अफ्रीका में का भरी सूदान के बातचीत हो रहा है बुद्धू सूदान में भैया तू जाने है का बड़ा बीमारी है हुआ हाँ तो कभी गोरेला तो कभी मोरेला कि कौन ची ना मोरेला तमाकू ना गोरेला है भैया खोली रा बोलीला बीमारी है जेमा 114 आदमी मर गए हैं 1300 वो बस मैटिंग भइल है सूदान में खोरेला एगो बीमारी भैया बस बेटल का ड्रम इन्फेक्शन हैगा दी वर्ड फॉर ओट्स आर बैक्टीरिया फिब्रियो कोलेरिया द सिक द फर्स्ट प्राइस इज फॉर ऑल फियर फॉर फेल वाटर एंड फूड सेल एंड कांस इज स्नेल अलब्रेनर खबीद फॉर स्कोन ड्रिंक वाटर एंड गुड सैनिटेयर फोर्सिंग के बारे में तो इतना जबर बीमारी हुआ है दोस्तों दिस जनता लोन के अने अने का बोले अफ्रीका में वहां पर बड़ी दुख है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाई है भैया और आगे को अपना प्रोग्राम लेके काल पुलक वेत हाँ हम लोग के नीदरलैंड में काल पुलक वेत है मतलब जब तू चो का बोले अपन पैसा अपन धन दौलत जोन बा नीत ऑफ द यस्ट मनीर है फरदीन तो के ये फ्योत यहाँ पकड़ेगा ब्लास्टिंग दीन पकड़ेगा तो के एनम निकिया जाए तो बोले काल प्लेक वेद मतलब कि जैसे मुर्गी के सब नो चले हुए पखनवन है ना राज तो के बोले काल प्लेक वेद तो अरमियन के पास कुछ ना है तो बोले हैगा वात खाइए प्लेक फान काल के दूसरा चीज हो जाए मकाल प्लुक वेद जो नहीं गा तो के इनम निकिया ढाड़ी अब सबन मांगे भैया काल प्लुक वेद सुरीनाम में बनावे तब तो बिना कपड़ा के दया नोन जाए दया नाम में भाई बैठ सोचो तो काल प्लुक वेद मांगे दया नाम में सबन बनावे भैया फराख आंदा फॉर रेक बस्कर में इन एट फूरे कभी ना हो पाए भैया एगो इंग्रिड कार्ता बैंक है का फोर्थ सेटर फॉर कमिशी फॉर रिपोर्टर्स ई बोले बहंदलिंग मांगे करे बोले हैगा वेदर रेखलक फॉर क्रीकन फॉर फोर डील बीटर बकेंट अल द काल प्लुक वेद डोनरडक नेशनल असेंबली में सबन ब्रीदर स्टेन फॉर द फॉर द डूलस्टेलिंग फॉर द क्रिमिनल en hun illegale verkregen vermogen te ontnemen. Maar de John illegaal sekini ze bij jou 10 go 4 go helikopter. तो लोन समझ गए तो जेके जेके भैया देखियो और पुरी से और दृक्ष से और उ सब चीजवन से सब बनाए बनाए धरी से ना अब ओके काल्पनिक वेतवा जे हो जाए तो सब बन जाए ओके काल करे बाकी उ वेतवा जाए तक मुंह तो देख के काल करियो वन उमा तो कितना असेंबली ये में बैठल है तो सीमा विष्णु दत्त भी आ गया तो सीमा जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं तो यहां बताए गए हैं बोले हैगा आसाम बले बोले ब्रेदर्स टेन करी से फॉर क्रिमिनल हने लिखाल फॉर क्रिक फॉर फॉर मोखन तेदन से इस्टर रोंदा फॉर कमिटी फॉर रिपोर्टर्स
onderschreven. De woordvoerders het belang van de wet in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, corruptie en witwassen, maar vroegen zij tegelijkertijd een verduidelijking over onder meer de rechtbescherming, de bewijslast, de uitvoerende capaciteit en de aansluitende begaande wetgeving. To karta brengen jon he imang e kalpluk wetwa abitalawi ekar bare me Krishna Motra VHP ke bole hega ki bestrijding van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk is, maar dat de rechtsstaat daarmee steeds centraal moet blijven staan. Zij vroeg de een uiteen te zetten hoe de nieuwe wet zich voorhoudt. De ikker waarin toch een paar bari jabar volg krap. Die kaalpluk wet wat kabhitter ja he. Corruptie wet ke bari san lagge bhaiya baki abbe corruptie karmiye na pakraan he. Hoef de laat kani kahan kahan baithe lebe itra corrupt lenge jo hiswa me he. Oke koi pakad ben karisega. Dus ik vraag me af, regering, gaat deze wet wel werken of niet? De corruptie wet is al in. Toch zijn er zoveel corruptie in het land. En gaat deze wet wel werken, de kaalplukwet, of niet, mensen? Ik heb het grote twijfels eraan. Ik heb er grote twijfels eraan, maar ik zal dat op de voet volgen, mensen. Ki is heb koontje kare, koontje nakkere, he. Dus die kaalplukwet is goed, maar gaan ze dat wel doen of niet? Dus daar gaat het om, mensen. Jantake de kawe kato sabkoi eensba. Ki kalpluk wetwa in jai. Baki kaise jai, kaise na jai. Ab deko terem ka karis, bhaiya. Terem bolie orlok karis na na na na. First care up karis e visum regeling na Amerika. Tu mensen, voor studenten, voor buitenlandse studenten en journalisten. John jai ke hua pe visum aanvraag karis Amerika ke. Deze maatregel in de nieuwste stap Trump begeleid om legale immigraties te verkennen. Orubole heka verblijf die 240 dagen heka le Amerika met toeristen kehe. Studieprogramma's als journalisten krijgen maximaal verblijf van 240 dagen. Ongeveer 8 maanden naartoe kehe. Chinese journalisten, John Chinoake journalisten, ook mag 90 dagen hoa per heke. To eise ukerde zega die journalisten kebi moeilijker immigratie aanpak van Trump, die zich kern merk zo streng la handhaven in de grote steden. Toe je baat he, maar je Amerika ke bare me. Ja, betawe Amerika 2023-2024 1,1 miljoen internationale studenten, meer dan enig andere land. Deze studenten droegen 2023 50 miljard dollar bij de Amerikaanse economie ke bare me. Toe je baat हमको लिए तुरके बताए नहीं तुरिया कैसे है अमेरिका के तुलन सुरीनाम में जितना लोग है उस सबके कैसे फिसम है मां हम बताए अलखमीन कि वेतवा स्कर्प करी से काबुले है अन ट्रंप अन वेतवा इनम स्ट्रेंग कर दी से तो जनता हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर बड़ा बड़ा न्यूज आते लोग हम दिल्ली नया नया न्यूज दिल्ली है और काबल बड़ा जोर से नाम में चोरी हुए भैया तेल सिर के काबल जब घरवा तरवा ना कमाएगा ना तो बोलिए का भाई लमा हुआ चोरन भैया कबलवा काटे हुए है तेल सिर के चीज काटे हुए है तो कुमार सामी समझ भी आ गया है बारह देर में ले राकेश नमस्कार हो राकेश जी आपको हम भी स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में तो हमारे जनता इन ब्रेक क्रैश में फ्लू तब चोर लेके वो तो भागे भैया पांचे सिपाही दौड़ावे अब चोर काकरी से चोर भागे वो तो लेके बस जाए के घुस गए गोथरो में नानी बकी खोल के बड़का गोथरो नाना ने चोरवा बुड़ के मर जात वो तो हुआ ना उल्टन बकी ते होता फिर जाए के गोथरुआ में लगाई से चोर निकल के भगल सिपाही ना पकड़ पाई से बारा अफसोस के बांधे भैया बड़ी अफसोस के बांधे कि सिपाही ओके ना पकड़ पाई से और हमारे देखे में एक घंटा हो गया है हमारे यारों।

0: तो हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे जनता, घड़ी की ओर देखा जाए तो ये घंटा तो हमारा हो चुका है, तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा ना।
1: मिका दो मैं सिंहवा सिंह की आला दे मासरा दिन सब दराई बेदी दिन सब रोकना ग्रोंग जैसा लेरा हरफार फोर रोकना ग्रोंग पामुस रोको ओके ठीक है बॉय।

और कमरिया करे लप्पा लोप और लोली पोप लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक्स सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पाई अलग के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बामी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

प्यार है कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा हमारे दोस्तों, मैं भी कल चल के देखा, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो, चमका न करो जुगनी की जुगनू की तरह रात को, चमका न करो जुगनू की तरह रात को, ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और जब अगर झलक दिखलाएगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि ऐ फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

दोस्तों, तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ, तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम, जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा, ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम। और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटा है, वो परमाश्री मोहम्मद रफी लपेटा है, शामी कपूर से आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम डॉट जॉनी नंबर 1।

और बदन पे सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रेक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्ट्रांस, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमिक्स सॉन्ग कहते हैं, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिट इज अ टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स। एक नोग रिमिक्स ड्राइए मेंसे, एक नोग रिमिक्स ड्राइए, तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

और दोस्तों, डम डम डम डम, और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा, डम मारो दम था। हाँ, कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे, कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं, और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों, ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता जी दे हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी आदाब, सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

इस चून से आम के तो जरूर पता चल चुका होगा, पता चल चुका होगा कि हम स्टूडियो में आ चुके हैं। तो एक ही दम हम चलते हैं अपनी समाचार की ओर। दोस्तों हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर, हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर कि सूरीनाम में क्या हुआ है, क्या होता है वहां के सिचुएशन आपको बड़ी मीठी जुबान से कोशिश करेंगे बताने को। अब देखो भैया दृक्सुआ के चिजुआ सनमुआ में एकदम उफलाई गए भाई, उफलाई गए नानी कानी कितना कितना मिले भैया ना एगो दुगो बोले चस वाला भैया सवन किलो के हिसाब से पूरी मिले है सूरीनाम में भैया, पूरी मिले है ना भौजी लोग जो गलवाम लगावे है ना कुनुआ से जो सूंघल जा दोस्तों, और ये वही पूरिया है जो निया से हुआ जाए भैया समकाल होवे है। तो ऐसे भैया कैसे स्ट्रांड के सिपाही एगो अख्तन फेफ तक यारख आरे स्टंट इज ऑन फ्लग भाई भगल है हाँ सेलन है कैसे स्ट्रांड से एगो अख्तन फेफ तक यार के आरे स्टंट भाग्य भैया, और ये है के ई अदमिया भैया अख्तन फेफ तक यार के एकर पैदाइश भैले कोलंबिया में, एक बोले कोलंबिया कोलंबिया जॉर्ज एलिजेर आरिसा ओर्टेगा हाँ इतना लंबा नाम है मौसी। तो एक बोले ई रहा एगो बड़का क्रिमिनल और खानी साक्षी के अर में रहा जो नरी मनी बोल चस वाला भैया खरूच खालक दृक्ष हंदल्ला, और एक कर पास वापन फिर वापन रहा भाए और एक के समन बन कर ले रहा निकर के भाग्य कैसे स्त्राते। अब सोचो भाग्य है नानी कि कोनो भगाई से ये बतिया हो सके तू वन दृक्षों वाला अरमियन के पैसा भैया हिया से हुआ रहे हैं, और तू जाने हमारे सिपाही के नाम सूरीनाम में बड़ी ऊंचा है नानी, इतना ऊंचा है कि का बोली भाई बहुत ऊंचा है, और खूब पकड़ाए पकड़ाए बन हुए तो विश्वास तू कैसे करियो कि कैसे स्त्रात के सिपाही एक भगाई से कि अपने से भगल है बड़का और खानिस्तान सीखी कोलंबिया रहा और इन करके कैसे स्त्रात से भग्य है। बोले कोलंबियान बोले जो जेके फिनिश वे लांस नचोनाली तैत रहा, और बोले बड़का दिल नाम राफान क्रिमिनाली तैत के और खानी सासी, और बोले है एक कर पास सवन के मिलल रहा कोका इना मिलल रहा भैया असीसी पेल मिलल रहा मीटा फिता मीना मिलल रहा और मरवाना हाज सब एक लगे पाए रहा ऊपर से बंदूक पिस्तौल सब पाए रहा एक लगे। सोचो तो ऐसा आदमी के सिपाही बन करी चौके चाही भगे के बाकी भगे के भगा दे इसे कई शस्त्रात के सिपाही नानी। बोले दे साख वारे ने फरतराख्त बत्रो के नहीं इस ऑन द सूक बहजी स्टील अन फिर वापस वेत में। तो बोले है कोलंबियान ओम स्टीकन वारोंदर है ऐ द सेलन हाउस इज ऑन स्नप मेंस, तू जाने भाई सिपाही सन्नाम के विश्वास करे लायक ना है नैनी रघुनो नंदन मोहबीर फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए आपको हम स्वागत करते हैं नैली जी। तो सिपाही लोग के नाम बड़ा ऊंचा हमारे सरनाम देश में भैया, और हमारा मथुरा का वो ना मथुरा मनोरथ का बोले कौन मनोरथ है अरे हरीश मनोरथ भैया मिनिस्टर फान यूसीसीएन पॉलिसी के बात करी हम ते मनोरथ बोले तू खांग फॉर फ्रिंग दिलिंग नीत इन फौदख
tal van gebieden in binnenland nog niet één beeld. Want Chinoa ke jijke Brunswijk, apres ego grip Chinoa ke pakrise. John Chinoa, barka barka banduk leke. Op binnenland me se bawak karatra apan sona ke. Brunswijk geile sapke. Aur skoutu surjati sapke pakarke aur laike bankarise. Te ekan mare me Hanis Manoraj bole UCC. Bole de toegang van vreemdelingen tot Suriname in de huidige situatie relatief willen eenvoudigen, willen bijdragen aan de situatie die zich dinsdag in het binnenland had voorgegaan, willen dat een chinoake, willen je zwaar bewapend gaan, willen ze pakkerke willen liggen, lekker abbe tak John Kwe kwamilala chori bhele skoutu ke moema se bhaiya. स्कोटू के मुंह में स्कोटू में मुंह में भैया होकर परासी में बड़का कंटेनर रहा और ओमा क्वेक भरला भाई सब क्वेक चोरी हुई गए कोई जान न पाए से कि स्कोटू के मुंह में से चीज कैसे चोरी हुई गए तो ओकर बारे में मनोरथ ना बोले बोले अंदर सुख हुए भैया वो अंदर सुख होते रहेगा बोले हु कॉम्ट दैट सो फील फ्रेम द लिंग सोशल फॉरहुनिंग क्राइकन आज वे हैट हेल प्रोसेस बकाइकन बताइए dat ergens corruptie plaatsvindt. Ik hoor in de wandelgangen dat mensen voor $2,000 gewoon een vergunning kunnen krijgen. In die en, is al jaren gedaan, dat doe je jaar euro, je toch hey, dat ook is een naam ke vergunning wil je, met le verblijf ke bhaiya, ja, betawe dat hamar des mein Suriname mein ka corruptie hai. बरा मलिजवासी हमें सोम्स हंसे के परे भैया कौन बिकाऊ ना है बहुत कमती भैया 2000 एरो जे तू धरिए तो जाए के फरखेनु किन लियो और चिनवा धर के बंदूक भी पाए जाओ जाए के बेनलांत में सब फैलक करे है तेकर बारे में भैया मलाई रायमोन सपून का बोले है यो ही सपून है भैया जो उनका बोले हैगा निकर के पीएल में से जाए के एनडीपी में घुस के और आज फिर बैठल हैगा काबल दीना में अब यही रायमोन सपून का बोले बोले सोरा चिनुआ जो सारा क्रेक कमिट में बोले पकड़ान है बोले सिम टोन बस्ट्राइडिंग के बोले मैं दत रखेरिंग शाम में द पार्लियामेंट मुझ सितन ओम द गफासिजेर नेशनल प्लान फॉर आनपाक आउट द स्ट्रिपलन तो भैया फिर यहाँ पे के पार्लियामेंटारिये सीधे सैमसून बोले है बोले मेजर बद्रेफन इन द बेलालाम सेंड द आइकन फेलकाई डिस्टन हेवन एंड दैरफॉर ओक वापस द बस्की हेवन खसीन द अफदेलिगन बोले चिनुआ के खाली ना बोले औरो ढेर है बेनलांत में जो सबन एक बफेल किंग हुआ धरे हैं ओमदात सुनुआ जे खोदे भैया वो बहुत जबर रूफ हुए हैं ऐसे बतिया है तो बोले एक के खाली चिन हुए थोरो बोले औरो है बोले जो हुआ बफेल करे थे एक कर बारे में शंगरुई वंग का बोले हैगा फ्राक्सी खनूद बोले है बोले चिनुआ बवाकस एन आनखोदन अफफूर्त हेड बदरे on bewaakt is achtergelaten bole John bedrijf voor op zo'n wak kodet raam bole apu bewaakt raad ook het abhies hebben roofkele hierdoor zijn ook spullen van die bedrijf ook derden weggenomen hij vraagt zich af wie de ondernemer hiervoor zal vergoeden dat je nou een keer beveiligingen kunt u pakken leggen levante en je kan bedrijf voor hij gaat op uw onbewaakt hoe abba op hoe ze chichuri hoe ze surik hoe ze अब लांटी से पूछे कि ऊ अरमियन ऊ बद्रेफो के अब जाएगा देख करे दिखाईले तो बाटो की तरह चिनुआ पकड़ के ले गए लो बाटो जोने को बद्रेफ बवाक करत रहा मैं अब पकड़ के ले गए बाटो तो तू अपन आदमी हुआ धरू सबके बवाक करे कि तो वहां जे तो के कोई ना तू सब का करे दिट इन तीन ताले या नीत ऑफ ए डायरेक्टली के मनीर गebeurd met ondersteuning van DNA zullen in komende tijd wetgevend producten worden ingediend zodat wij kunnen nagaan wat wij als land willen. Volgens minister kunnen buitenlanders nu als toerist het land binnenkomen. Orbole Hega, waarna de militaire politie slechts één zoomier onderzoek verricht voordat de toegang wordt verleend. De IC, want ja, hij ja. Toen hij hamar Hanis Manoraj doen, he, bole 2000 verio, dan bole corruptie het raar he, ki jai ke tu, bole go vergunning tu paaje. Yo IC, want ja, he, hamari ye nani loan. और हमारे प्रोग्राम में आ गया है हर हफ्ता की तरह
धर्मेंद्र श्री आपको स्वागत करते हैं। राज रामनगर भी आ गया है, आप सबको हम प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। अब देखो सुर जाति भैया तो लोन जानो है, सुर जाति लोन देश के खात लड़े हैं, देश बचावे खात लड़े हैं। देखो ईरान में का हुए, अमेरिका में का हुए है, फेनी अनेस रूसलैंड में का हुए है और उक्रेन में का हुए है, सब सुर जाति लड़ाई वाला है भैया। आ हमार सा नाम के सुर जाति पिस्तौल लेके अपन घोड़वे में ताक लेवे है राज। हमार सुरजतियन के ना हसीला भैया मडे किया बतावे मिली तेर नहीं खनन तवेन तक यार के इन बेन खसकोतन ना ऋषि मेतन मान दी बकें साथ आसोम्बी कोनो सोम्बी से भैया गैला लड़े ते सुर जाति जो देश के रक्षा करे वाला भैया सुर जाति गल दाग दी जरे अख्तर बोफर बेन में हीर वेर द ओम स्टैंडर्ड बोले लेगे अकादमी सिकन हाइस में मिलिटेर राखते है फरविकल इन वोर्दे वेस्टिंग में तन मान दी बकेल स्टार्ट आल जुम्बी से सुर जाति लड़त रहा मुंह से और बोले तेजे ता हन खमीन सा सोम्बी अ रिवॉल्वर उक वेल अ लोलो बाल खनोम हेवर खतरोकन एंड फीर तर फेस कोट इन द रिक्टिंग है स्लाफ्ट ऑफर हेवन कस लॉस एन फन द कोफकल द सुर जाती इन द रेक्टर बीन ते लोलो वाला भाई नहीं लोलो वाला पिस्तौल कैसे हुए जैसे फिल्म में डकावे जाने मुड़िया देखे खड़खर खड़खर ड्राई करे अमिताभ बच्चन वाला राका यार ये खड़खड़ खड़खड़ ड्राई करे बोले गोली कहाँ है बोले गोली कहाँ है बोले गोली नहीं है तो बोले आप गोली खा। तो ये वही बोला वाला को है कि भैया तो ई का बोले सुर जाति के दाग दी से गुड़ में और का बोले रमिया का नाम बा जोम्बी भैया जोम्बी लड़त रहा। तो ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा प्यारे प्यारे। अब देखो भाई एगो बाप का करिश मिंदर यारख सोन ओतो के कॉफर में भर के और भैया मर्चा लगा दे इसे हुआ पे जान ना चाहे लगावे के भैया खसला दे लोई में लगा दे इसे लंडवा के और लंडवा के बारा में सांदल करी से बपुआ यहाँ बतावे है अने अने हेव ते स्कैर्प पेपर ओप

ई का करी से इसके ही बोले बोले अजूमा भाई से बोले अजूमा भैया अजूमा चमरचा ओकर खसला खफूल खदीलन फन लेखाम फन मेंदर यार के ओके लगा दी से भाई ओ मार लंडवा के लगाए दी से गा सोचो भैया ई में सांदलिंग है कि ना ई बांचित हुए है गा ई बांचित हुए है गा मार्त में तब मैवा का करी से भैया मैवा का करी से गैल है अब बोले मैवा भी बतरो कहेगा द फरदाक द हरफिया द मुदर फन द मेंदर यार का फनोमन द सेन सोन मोखलक बतरोकन वास कवेस बे ऑन खपास्ट सेक्सुअल खतरा दिस इलंडवा तेरा बरिस के भैया ऑन खपास्ट सेक्सुअल खतरा रहा और एक लगा दी से मर्चा बपुआ के बोले रहा मैवा और बोले तेनेस द रिट प्लास द फरदाक द मेंदरियारख ओतो के कॉफर में भर के ले गए हैं और बोले है ओमस्टानर्स जस दानख आला मेरदन और बोले स्को टू बेल के ते स्को टू बपो के पकड़ के ले गए हैं और ओ एम का करी से भैया ouder de wettelijk en morele plicht heeft zijn kind te beschermen en willen op te voeden en een veilig omgeving te bieden, ongeacht de aanleiding vorm vermeend, ouder ook baap maaike te verplicht raak ik er maar patana hai, ook er asli baap hai bhaiya ki nakali baap hai tu jane sti vader bhi hoi hai to bole de ouders van de minderjarige waren reis uit elkaar. Volgens de verklaring van de meerderjarige liet de verdachte zich tegenover hem herhaaldelijk negatief uit over zijn moeder. Het OM stelde in dat een kind op deze wijze wordt betrokken bij de strijd tussen ouders en dat is schadelijk gevolgen. Dus je bapua mewa. Isab ka bole hega skeide ho chukal ha. To ikar bare mein ab ikke 12 mahina ke. OM Jahal Mangi Sega veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden vroegtijdig te Ilondwa op kakere bab mij na hij bij jasenge te iverwaloos wege seksuele handel karatra abapua jijke marcha nehim lagadische te apu marbo karisega te 12 maanden baris are 12 maanden abjao fruiti karo bija ab toor saat kaha marcha lagi kaha marcha na lagi tulun jano hai Jahal me marcha लगावे कि और कुछ लगावे भाई सेक्सुअल मिसब्रेक के बारे में तो हमारा प्रोग्राम में चित्रा उतार भी आ गया है स्वागत करते साथ साथ शरात सारदेशा आ गया है मीला जी हाँ अब समझ गए हैं तो थैंक यू वेल फॉर सो फिर हार्चेस अब हम जाई है देखो हम जाई है फिर यहाँ पे ही सरमक्का के और महेंद्र जोगी लगे भैया जोगी के अधीन फोर्स इतर रहा ओके निकार के बोले बहरे तू भाग जा ओम जाए जोगी बोले रहा अधीन के बोले इतना सलेक्ट फोर्स इतर दे रहा हम लोग के कहीं ना मिले बोले तू सलेक्ट बाटे बस अधीन उधियाईगा दुनिया बोले अब से उधर भीतर बोले तू सलवा मत निकल बोले तू क्लोइतर बाटे तो जोगी जाए के बोले क्लोइतर बाटे तो तू क्लोइतर लाइस्टर बाटे भैया का होवे देना में लड़े है जैसे कोई कुत्ता बिलार भैया झौंझियाई तो यहाँ अब जोगी रफीन से गैल है तो अब वो बोले है जोगी बोले हम मांगे लान जोन तुलन इतना ढेर बैतल आंसर रईस बनावे है जब देखो तो सिमोन चल जा है तो गैगरी रिस्ट लान चल जा देव देखो तो बैतल आंत में रहे है तो अब बोले हम मांगे लाए जाने कि बैतल आंसर रईसन दी मिनिस्टर इन अफखलों पर रखेर यार hebben gemaakt. Daarin moet volgens hem staan welke ministers zijn afgereisd, waar ze naartoe gingen, wat het doel en rendement van de reizen was en hoeveel geld daarmee gemoeid was. तो जोगी बोले असेंबली में बोले हम अंगले सब जाने कि तो लोग गैले है कोंची कल्ले कोंची नकल बार भैया परमेश्वर का बोले है अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंसी ओवर दिस रीजन बार बोले है परमेश्वर बोले हाँ बोले हम भी मांगेले जाने तो एनडीपी के पार्लियामेंटेरियर रवीन परमेश्वर बोले है रिडाक्सी में daar op dat het verzoek op openheid een reactie verdient. Hij zei verheugd te zijn dat de oppositie nu eveneens het belang inziet van een transparante werkwijze. Al dus permisser, bole hambilo mangeljane, bole apkeise, bole akia koele oppositieke.
ऐसे बोली से हमारी जनता हमना बोली लाइया जो लिखल है वो तो बतावे के तो हमारा काम है नया रो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता हमारी प्यारी प्यारी जनता श्री नाम में बड़ी अरेडिंग हुए भैया बड़ी प्रोफेसर मरे देखो यहाँ का भैले जब देखो इतना अरेडिंग हुए है फरकेर में अबे को प्रोफेसर भैया जात रहा मखेंता कनाल वेख में को प्रोफेसर जात रहा भैया और ओके मारिश ओतो मारिश ये रमिया का भैया जहाँ वो मास्टर की फुटबॉल फैलतुआ है हुआ तो हरदम रुकीला भाई तब वो मास्टर के फुटबॉल फैलतुआ लगे हुए पे मारी से ओ तो 10 बजे एंड थिंग फॉर 11 सिपाही पाई से ब्रेक के को ब्रोंफिस के मारी से दिस दानक अरेस्ट खवों दत है तेर प्लाट से ओवरलीड कि मर गए भैया द बस्ट्यूडर फन अ पर्सन इज ऑटो रेड ना आरेडिंग दूर सोंदर से ओम है स्लाक्टोफर ते वो कमरन और ओतुआ मार के भैया भग गए ये बहुत दुख के बात है होई से के साइज जब जा स्लाक्टोफर वाले गए लीक दतरा अतरा जाते साइज ओ बच जा बाकी ओ पेल भागले भैया द बस्ट्यूडर दिस ओवर खबरा फॉर फर्दर ऑन सुक एंड फरक्लारिंग द अंत कहीं पढ़े रहली बस्ती रुवा करे बेविचवे न रहा म अबे हम ओकर बारे में और फीनी फीनी आप लोग के हम बतावे तो बेटा सनई भी आ गया है बेटा जी आपको हम स्वागत करते हैं साथ साथ आ गया है गीता भी आ गया है तो गीता जी आपको भी हम बहुत प्यार से अपना प्रोग्राम में स्वागत करते हैं तो अब तो जाने हैं विलियम होलीडर के बारे में नीदरलैंड की न्यूज है और ओके सबन पकड़े रह जाए कि दुबई में भैया बहुत आदमी के मरवाई से तो जाने पीटर दफरिस के मरवाई से एक के सबन दुबई में जाए में पकड़ के नीदरलैंड आयल है और एक स्ट्राफ शेख में एडवोकेट एक खात ना मांगे लड़े एडवोकेट ना मांगे लड़े वन एडवोकेट के भी पकड़ के सिपाही बंद कर ले रहा वन ये रमिया इतना ढेर पैसा है विलियम होलीडर के कि सब कुछ मांगे कीने तो होलीडर वर्थ ना 11 यार 11 बरिस बन रहा अब उ गए लेगो एक्स्ट्रा बफेल दे रेटिंग में और हैगा फिक्त में जो नीदरलैंड में हैगा बहुत लोग के पता है फिक्त में को बहुत बड़का खफांगने से जैसे सांतो बोमा भैया बाकी ये और जबर चीज है फिक्त में यहाँ के बफेल लिखिंग बहुत स्वार है तो सबसे स्वार्द्र अने बफेल लिखिंग अने का बोले हैगा खफांगने से मिले जाए के धरी से और बोले हैगा स्टासिक सारी क्लोडिया फन ब्रुकन जिसी सी एन फेल खाइट के बोसलेस करी से कि से होले इधर एडवोकेट सुख के पेश ब्यूरो में बताई से कि 68 यारक होली इधर अब ओके मिलल हैगा लीफंस लंग सेल उ कभी ना निकलेगा यहां बताई गई से नानी बोले जिंदगी भर अब तू ना निकलिए बोले हैगा फोर्स एंड ब्रोकन है सीरी मोर्दन में मेरदान 11 यार साथ बे है इन एक्स्ट्रा बफेल द इरेक्टिंग एबी में इन फिर द स्ट्रेंथ बफेलिगे गेवंगनिस फन नीदरलैंड और बताइए दोस्तों ई महीना में रात फास्ट रेस्ट टू फासी

आगे हम अपना प्रोग्राम के लेकर चलते भैया। चलो जानो फेनेसुएला में अर्थबेफिंग चबड़ा आयले बहुत आदमी मरल है फेनेसुएला में। सूरीनाम लेकर ना पहुँचल भैया, वहाँ सूरीनाम तो फेनेसुएला से दूर ना है, लेकिन अब मेक्सिको में भैया के सुवारा अर्थबेफिंग फॉर द साउथ वेस्ट कोस्ट में मेक्सिको में, और मोखलक हैगा कि एगो सुनामी आ सके हैगा मेक्सिको में। देश एक हो में हार्ड फास कि सूरीनाम में न चल जाए भैया, वन वन दिट सोर्ट अर्थ बेफिकेन खा दौर में से दिखा कौन दौर। और यहाँ पे बताए गए हैं साइट वेस्ट कोस्ट मेक्सिको में स्वर अर्थ बेफिकेन आइले जहाँ का बोले है अर्थ बे क्राख्तरा से 4.4 इस हील ग्रोत में से अमेरिकांसे गोलोगीसे दिस बताए से कर बारे में बोले है 10 किलोमीटर दीप्तर हाँ पोर्टो मादेरा में फ्लग बाय द ग्रेंस फ्रॉम ग्वाटामाला के ग्रेंस पे मेक्सिको के। अब बोले हैगा वार्स्क्यूमेंट कर सकेगा कि मुखल के को सुनामी आने वाला है दोस्तों, मार लातवे खुद फॉलक की चीजवा उसे है कि अब दोरो ना आवे भैया, वन वो वही तो अलमाल खरोच सुनामी दी अब हात नाम लग दी इस फोर बै महूफ इस खादा हाथी खदान एक हो पटनी दत सो इस खबर वहाँ इन फिर ज्वेला हैब वे नाम लग आठ बी फिर खार वार honderden mensen overleden zijn, daklozen zijn, हम लोग जाने ला फिर ज्वेला में का भाई ले तो ये बातचीत हो रहा है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता। अब देखो चकल्लस भैया, अब अमेरिका ईरान के तोरिया हम बता का भैले, पहले हम जाए और सलंतवा में घुसी या उक्रेनवा में घुसी सेलेंस्की भैया, अब देख का करी से सेलेंस्की का करे भैया। रुसलान के बोट जितना समुंदर में है सब के ड्रोन से दागे है, ई तो जैसे स्ट्रात हॉर्मुज के चीजवा तुल जाने ईरान है और अमेरिका हुआ पे लड़े है हॉर्मुज के जहां से तेलवा के बोटियन पास हुए है। अब ई का करी से सेलेंस्की अब रुसलान के पहले सब राफी नादर एवन बहुत ढेर दागी से अब रुसलान के बोटियन दागे के शुरू करी से रुसलान के पुतिन सोचे अब का होई कहां शुरू करी और कहां एंड करी जाने चीजवा कैसे। तो यूक्रेन से प्रेसिडेंट जो नहींगा वो है सेलेंस्की, अब वो का करी से भैया अपन आन खवीचा से करे तारत फन नचोनाल फेल हाइट के डिफेंसी के बोली से यहां पे भैया कि वो सब डिफेंसी के आउट मिनिस्टर क्लिमेंको आन फॉर फेल है इस रात के धरी से को पुराना मिनिस्टर रहा डिफेंसी मिनिस्टर जो रहा लेटर तो प्रोटेस्टन इन अंडर में कीफ even klong de Zelensky wilde aanwijzen voor ambtenaar to abbe ikerba bare mein to ke aur fini fini hum batabe ki ka bhail hai aur ka na bhail hai bhaiya, lekin ladaiya jo hai bahut jabar hue bhai bahut jabar hue hai udhar iran अमेरिका शुरू करी से दागे के मेरी तेरे दूले बहुत ढेर के दागी से एगो बड़ुक्की भी दाग दी से जहाँ बड़ुक्की पचे सामान जात रहा ईरान के ओके दाग के तोड़ दी से। और इधर ईरान का करे हैगा मेरे ऊस्टन में जहाँ जहाँ पे अमेरिकान से बासस हैगा जैसे हैगा का बोले हैगा योरदानिया में ऊ सब के खूब दागे है। देश ई लड़ैया कब दोन हुई भाई बहुत आफत है बहुत आफत है। और तेल हुआ लड़े भैया हम लोग तेल हिया महंगा में चलो और हम लोग का बोले है किनो नीदरलैंड में तेल हुई गए है ऑन लॉदत 2 यूरो 30 सेंट हुई गए है दोस्तों पर लीटर हैगा 2 यूरो 30 सेंट हैगा प्लस मिनस कहीं पे एक चीज ज्यादा है और एक चीज कमती है। बड़का दाम पे और महंगा हो गया है बेना में और सस्ता है तो सस्ता का 2 यूरो 30 है भैया। और एक हफ्तों हम भले रही तब भले रही 2 यूरो 4

20 सेंट पे लीटर और ये हफ्ता में हुई है ये हफ्ता में 2 यूरो 30 सेंट हुई गएगा। तो दोस्तों हम और जाए भैया एसएलएम की ओर। हाँ तो एसएलएम में हमारा टोनी स्त्री भी आई है। टोनी जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं, अलमेरा शहर से आकर हमारे प्रोग्राम में जुट गया है। अब देख का भले एसएलएम वहां के तुरिया एसएलएम हीफ्ट एंड पेर्स ब्रेक फॉर दैलक की बोले हैगा लुक फार्मास कैफे खेर ऑफिशियल ऑडिट पाइस फॉर ने इंटरनेशनल सिविल तो जाने सबन फ्लिक तो इकोन क्योर करे है तो एसएलएम सबन क्योर करे सेगा कि उ फेल है बैतलांत में उड़े कि ना तो सबन को ब्रेक पायरा लदी फेल है मैं यहां पे अप्लाई कर लेगा बोले ऑफिशियल ऑडिट ना भाई लेगा फॉर द इंटरनेशनल बोले ऑर्गेनाइजेशन हिफ ऑनर खान है। Het ging om een vrijwillige veiligheid uitgevoerd door Duitse bedrijven. Ik heb vrijwillige Duitse bedrijven. Oekraïne hebben een keer officieel nabij. De correctie volgt nadat eerder berichtgeving volgens de maatschappij mogelijk de indruk heeft gewekt dat SLM rechtstreeks was doorgelegd. SLM benadrukt dat dit niet het geval is en zegt onduidelijk te betreuren. De Isabolera AGK SLM ke mag in buitenland met bolle goedkeurige veiligheid. Maar blijkbaar is dat de Duitse maatschappij vrijwillig keurkelera en SLM ke admi hua pe bhaiya pagla ka dage lagala bombal dage lagala khaba kaate lagala gana gawe lagala ki hum lon pel deli bati aur na jamu is onderzoek करें तो अब later जब ची युवा भाई लेगा तब बोले हैगा बोले न न बोले हैगा बोले ऐसे ना है बोले dit audit werd uitgevoerd बोले न geaccrediteerde een auditieorganisatie binnen het internationale programma. Hoewel de normen waaruit de controle was gebaseerd afkomt te zijn van ICAO, betekent dit volgens de maatschappij niet de strake zijn van officiële audit. De onderscheid was als de onderscheid ach SL belangrijk voor correctie en transparantie informatie. Nee, er mijn gana gawe he, akufariari he jena he, akabak katai legale ma nani, aise batia to reshma nibar sandinia bhi a gaya he, aapko hum bhi swagat karte he, apna न्यूज़बरिक्त के अपना प्यारा प्यारा प्रोग्राम में तो रेशमा नीबर भी आ गया है। तो और आगे हम अपना प्रोग्राम भैया सुरिनाम के स्कौतु के भैया हम लोग टिंग पेन दे सकेला भाला रेशमा स्कौतु ने इतना जबर बदमाशी करे भैया देखो कैसे स्ट्रासुटो बड़का क्रिमिनल भगे छह गो सात गो को कहीं न पकड़ा रहा तो अब देख एगो स्कौतु फिर पकड़ाएंगे भाई सेरगियो भैया सेरगियो पकड़ा है पोलिसी मान सेरगियो भैया ब्राजीलिया में चल गए रहा ब्राजीलिया से आए लोग के अंदर ये पे पकड़ ले से भैया एक 40 बरिस के सिपाही से नाम के सेरगियो से ही ऊ चल गए रहा ब्राजीलिया जैसे लौटल हैगा ओ के अंदर ये पे पकड़ ले से पो ने प्रोक्यूर जनरल जो ने हॉफ जी सी के donderdag gemeld kreisega ki oke sanrei pe pakrisega ayeremia ka hey word for dag van diefstal for de streng en mede pleging dan wel mede plichtigheid van diefstal en for de streng so chuto bhaiya ya likale gesochte politieman sergio tu sipahi bate bhai o itra chiz to muriya pe ba ekar bare mein bolega En een Brazilië naar Suriname is teruggekeerd op instructie van zijn advocaat. Vieira meldde hij zich vervolgens bij de militaire politie. Vanwege geconstateerde onregelheden zal de advocaat Apikerwarem Kahoy to Irmaji Apko Biham Bahut Piarse op een programma met Swagat Karte. Je hoort Esma Irma Irma Ramtahal Singh. To Irmaji. अब देख भैया निकेरी में का भैले गो पियकड़ नशेड़ी में का करी से तोनिया
देख न सेड़ी का करी से बोलिए जोनी ढकोले हो या रे ढकोले महाराज है ई दारू पी पी भैया और जब बीर कोई डाम पे जात रहा तो ओके गरियावत रहा लड़त रहा झगड़ा करत रहा उपये कड़वन के तो हम भी जानी रे कोई जमाना में हम सरनाम में छोटा रही तो दुई गो तीन गो हमार रहा बीरवन नाम ना ले भैया जो डाम पे पास हुए जे ही देखे वही के नानी माई उलटत रहा गाड़ी देवत रहा आदमी डर के मारे कुछ ना बोलत रहा ओके एरमा सोचे का जाए न सेड़ी के मुंह लगे का जाए न सेड़ी मुंह टेररिजर करत रहा पर सोलत कैनिक मेन से इन मेन भीड़ एन ऐसे निकेरी भी एगो अख्तम फेक तक यार के निकेरियाने भैया दारू पी के बीर लोग के भैया गाड़ी देवत रहा सब कुछ कर ऐसे में एक रोज इतना ढकोली से कि 7 बजे रात के ई बात हुए पीसांग का पकवे ते पीसान भैया ना बारा बनावे वाला पीसान रस्तवा के नाम बा रस्तवा के नाम बा पीसांग का पकवे में ते एगो औरत के भैया फिरन देर तक यार के औरत के का बोले है गा और ओकर दुई गो बेटुआ एगो 14 एगो 15 और ओकर बेटुआ के गो संगतिया 19 बरिस के ओके सब के ई अदमिया पे कड़वा एम हा एर अनफाल करी से भैया औरत के 3 गो लड़कन के 14 बरिस के लड़कुआ के काटी से भैया काटी से ओकर हाथ में गहरा घाव हो गए है राज गहरा घाव हो गए है 14 बरिस के लड़कवा के काठी से और ओकर माई के भैया ओकर माई के भी काठी से कितना देही में कपुआई से ओकर देही में और बतावे हेगा ओफर फॉर वार्निंग बाय द अंदर अनवेज के इस निच कमेल्ड और बोले द पुलिस स्टार फरदाख्त बकेन आंस अल्कोहल फरस्लाव एंड सो बुर्टबोनर फाकर हैवे uitgestelden uitgeschelden और बोले एक बार में सिपाही पारादेश के रमिया के पकड़ के ले गए हैं कोर्ट तेज लातर और ओकर घर से और बोलेगा जो चे काटे रहा ओहु पाई सेगा बस लाखली से अब ई जाएगा जहल में भैया नतीलक अब एक जहलिया में दरुया कैसे पाएगा कैसे पाई नानी तो ये बात है हमारी प्यारे प्यारे जनता हम सोची तो लुके को गनवा सुना दे ता अबे हम तुरंत आ जाएंगे विनीता गौरा पूजा भैया कोनो गाना चटनी है

और मोरे जग पुर मनिता फिरी और ये था एक चटनी जों जो आपके हम सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं और आगे तो हमारा दिलीप बुद्धू भी आ गया है, आपका स्वागत करते साथ साथ रानी समुझ भी आ गया है। तो रानी समुझ हमारा बहन होगा लेकिन बहुत ज्यादा समुझ है, तो आपको भी हम स्वागत करता है रानी समुझ जी। साथ ही साथ दिलीप बुद्धू भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, सब जुड़ गया है। तो अब हम जाई भैया ई हम जाई है जोन अनमी बरा जबर चूसे है कुको ही नानी। हाँ जानो हमारे काम है जैसे ही सुनुआ कुकुया के बन हो जाए तो हम अब तैर बताएला कि कुकुई नहीं दलांत ना लियो हुआ कटिया में न पकड़ियो बन है बकी सही सुनुआ खुल गए है सही सुनुआ खुल गए भैया। हाँ अब कुकही तुलोन का बोले पकड़ सके है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल ले कुकुया बंद रहा। हाँ अब कुकुही खुल गए हैं, अब जे जे सरनाम में है तुलन जाए के चोपू कर सके कुकुही मसाला में बनाइयो खूब भिंडी डाल के। हम तो ना खाइए लेकिन जे खाए भैया बड़ी स्वागत से खा है। अब सबको हम बोले ला भैये से एस माकले कुकुही अब हो गए है खुल गए है और बोले हैगा सही सुनो वहाँ खुल गए है जिस आप लोग अब सगरो जाकर पकड़ सके है बेच सके है तिस इन द खसलोतन सही सुन फरबोडन। हम दिस और अंडा जोन है भी बंद रहा दरनाथ इस है ओक फरबोडन ओम त आलन तेरे एरन कैट ऑफ एरन नेस्टेड फरदीलन। तो हम बोली कुकुहिया के बारे में बोले वन कितने आदमी भैया जोन सुरीनाम में बाल उस सब के लावे मांगे हैं लेकिन उस सब के नलाई सके भैया। हाँ भाई जैसे बोली ला इकोरता टाइट पे फेव तक यंगर सुरीनाम में अरेनिंग से मरल है भाई दैट इज हील फील है बुद्धू फरकेस दौड़न ता लोब स्नेल ऑफ आल फेव तक स्लाफ ऑफर्स दी या ए दित यार मेरन देल यंगरन से इन ओफर ले रहे भाई। यहां बतावे हैगा बोले तू ही दैसन फेवन तुवें तक भर में एनन सस्तक को अदमी मरल ला फरकेस से बोले अतरवेल अबे हम लोग यूलिम बाटी और 50 गो भैया मर गए भैया अबे हम लोग के देशा मलक परल है का होइगा भला। हरीश मरोजे जिसने पुलिस को बोले मेरन देल फनसला फोर्स एंड अलमान यंगरन में से अपन बेटवन के बिटियन के खुद अपरे लोन जे तुलोन जइयो तो आप लोन का बोले अपन लड़कन के खुमोई से देखियो। यहां पर रानी बोले फौचे फान क्वी क्वी ओ या मैं यहां तो लिखले कुकु ही इस ओपा तब हम अब का बोली जो ने लिखले वही हम बोलत हैं क्वी क्वी सेक्शन इज ओपन सेक्शन फॉर क्वी क्वी वेर गेओपन स्टाट हियर। मा गुड मेंसे ich ga even door met mijn nieuws te lun jano he ego ego kaam bole he kirki ke admi he अरे भैया पास्टोर है हम ना बोले ला मीसी कब्बा के। हाँ हम बोले ला एगो मैया के भैया मैया के बोले ला एगो पास्टोर रहा था एके मांगे बनावे इसराइल के अम्बासादा मांगे बनावे सब भैया थे एकर बारे में आदमी लोग बड़ा बसवार करी से बड़ा बसवार करी से मिनिस्टर मेल्फिन बोफा बैठलो साकन के का बोले हैगा बोले लेख नीड वाकर फॉर अ क्रेडिट ऑफ द मोनुमेंट फॉर द बिशप स्टीव मेयर अस नीट रेसिडेंट एंबेसडर फॉर सुरीनाम फॉर द स्टेट इजराइल फॉलोइंग द बेवेस वांट इन द ओवरकस क्रिटिक ऑफ मेयर फील अ पर्सनली गरेग एन नी साकलक ऑफ सेन वर्क। तो एकर बारे में अदमी लोन बहुत बहुत क्रिटिक ले फरकल रहा मैं एकर बारे में एनपीएस के फ्रैक्सी फोर्स फ्रैक्सी लीडर रहा जेब जेरल पावीरे जो फोन द बसलेटन फॉर द हैंडलिंग फॉर इजराइल टेकन ओवर द पैलेस्टाइनियन फुलकोमन इन स्ट्रेस है मेड द नॉर्मल फॉर वार्डन तुलन जानो है और मलाई लोन मुस्लिम हुए भैया और तुलन जानो है इजराइल जो रहा अब है अब पैलेस्टाइनियन के संगे का करी से
तो हमारा सूर्य नाम के जो मुस्लिम से गा मतलब की दे नाम है तो इस अपना मांगे है का कि इसराइल में जाए के और एगो अम्बासादर बैठे एन दारम हैव से दे से क्रिटिक मेन से एन मोख यूली जेगर वेट हु एन व्हाट इट इज हम चलते हैं और आगे भैया हिया बरोन तो तू जाने बारा मोये मोये वोड़ता है तो पूनम अवतार भी लाइनिंग से आ गया है। पूनम जी बेटी आपको भी हम स्वागत करते हैं साथ साथ सुनील सुनील दत्त गजरी गजरी जी आपको हम प्यार से स्वागत करते हैं। तो तुलन जानो सोमो हार जो पॉल सोमो हार दे का बेटा हुआ बरोन तो हाँ इतना लंबा लंबा कहानी बतिया भैया किलो मीटर के फैया पे के फन आतो सेट गरियाई के धर दे से और एक टॉक्स ताज मुश्किल लुकिंग मिलल है लेकिन एक कोई पकड़ के बनवे ना करे है। हाँ तो अब एकर बारे में भइल है कि आउट मिनिस्टर फॉर बिलन लांस साके के बिस्सा के और एक्स मिनिस्टर क्लिमर हुफ ड्रांट के फिनेंशियन के रियाद नूर मोहम्मद ओवे के स्टार फंड मुश्किल लुकिंग सब कर ले रहा फोर स्ट्राफ बार फैटन और यह बताए गए हैं ब्रोंटो सुमहार द अल फॉर दख्त फॉर होर दोर ओएम अब ओके सबन फॉर होर करी से ब्रोंटो के म कैसे भइल कैसे ना भइल है। और नया न्यूज़ से भैया ईरान मेल्ट देर तक दो दिन न अमेरिकान से अनफालन छौक सात रो छुई के लड़िया भैया और देर तक आदमी मरल है ईरान के अमेरिकान से अनफालन जो भले ईरान में बोले हैगा राक्तन मेरन त्वी हुंद सस्त खवंदन एकर बारे ईरान के वोर फूर्दर बोले है अनफालन ओवर एंड वेयर द अफगलोपन दागन बहुत अनफाल कैस अमेरिका ईरान के ऊपर और बोले ईरान भी दागी सेगा लुक्स अनफाल कैस कुवैत में और बहराम में जहां पे अमेरिकान के बस अमेरिकान से वहां पे उसके बासस भी हैगा फोकस ईरान से अने खारदा बोले अमेरिका से वापन ऑब्सक प्लाचन के दागी से जमन द फेयर स्मेल अनफाल ते हमर एट को फूड की दसन को मिलिटेर दुलन इन द ब्यूर फन द स्ट्रेट फन हॉर्मूज एंड इन द गबीडे फन ईरानसे कुस्त दारबे वार फोकस अमेरिकानसे लेकर ऑन द मीर रकेटन इंस्टॉलेशन ड्रोन्स एंड मरीन स्किपन है दुलन मेंसे ik volg de oorlog namelijk niet alleen van Amerika en Amerika en Oekraïne en Rusland maar toch wel heel veel mensen to ye baat hai hamari pyari pyari janta कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो दोस्तों हम और आगे चलते हैं।

Ja, de handpin was aangegeven. Hey. Dus mensen, यहाँ पे बताए गए है मास्कर सुरीनाम है भैया मास्कर जाने का बोलो तो ना जो हमार मौसी लोन में के पुआ लगावे मास्कर वो के ना बोले ला चोरों और मास्कर वाक बोले ला सुनील जोर मुड़िया में पहले कोई ना देख पावे ओ मास्कर वाक बतिया ला ना हमार भौजी जो लगाए लगाए चमकावे वो मास्कर वाना है तो भैया इम ओ मास्कर वा है अब भैया जोन समझ जाए कि ऊपर फाल करे है यहाँ बताए गए है करिया करिया मास्कर पहले स्वार वापस परीक्षण ओफरफाल खौज सुकर्स काम पर और दुकान में भैया वही मारे तो चिन्ह वालों हुआ जाए जाए खौज सुकर्स जो ने अपन बफाई लिखिंग धरे हैं यहां पर बताए गए हैं कि 12,000 एसआरडी 15 ग्राम सोना मारी से जहां पे सोनवन खुदा है क्रिमिनेलन खौज में एक एक्टिविटी के फोर सेटन से फ्रीस एंड द क्रिमिनेलन कुन टुरकेरन ओम दैट बर्ड फॉल्स हिम खरिंग वास मेंसे तो ई रूफवा के चीजवा हम तो लोग के बड़ा ढेर बताई चुकली है हम सोची तो लोग के और मोई मोई न्यूज हम बताई भैया और मीठा मीठा न्यूज हम तो लोग के बताई क्या होता है देखो भैया हम जाए तेरी अफ्रीका के ओर हाँ बोलिए जॉनी अफ्रीका में का भरी सूदान के बातचीत हो रहा है बुद्धू सूदान में भैया तो तू जाने है का बड़ा बीमारी है हुआ हाँ तो कभी गोरेला तो कभी मोरेला कि कौन चीज ना मोरेला तमाकू ना गोरेला है भैया खोली रा बोलीला बीमारी है जेमा 114 आदमी मर गए हैं 1300 वो बस मैटिंग भइल है सूदान में खोरेला एगो बीमारी भैया बस बेटल का ड्रम इन्फेक्शन हैगा दी वर्ड फॉर ओट्स आर बैक्टीरिया फिब्रियो कोलेरिया द सिक्ट फॉर स्प्रेड सिक फॉर ऑल फियर फॉर फेल वाटर एंड फूड सेल एंड कान सिक स्नेल अलबरेन गबीड फॉर अ स्कोन ड्रिंक वाटर एंड गुड सैनिटेयर फोर्सिंग के बारे में तो इतना जबर बीमारी हुआ है दोस्तों दिस जनता लोन के ने, ने, का बोले अफ्रीका में वहां पर बड़ी दुख है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाई है भैया और आगे को अपना प्रोग्राम लेके काल पुलक वेत हाँ हम लोग के नीदरलैंड में काल फ्लिक वेथ है मतलब जब तू चो का बोले अपन पैसा अपन धन दौलत जोन बा नीत ऑफ द यस्ट मनीर है फरदीन तो के ये फियोत यहां पकड़ेगा ब्लास्टिंग दिन पकड़ेगा तो के एनम निकिया जाए तो बोले काल फ्लिक वेत मतलब कि जैसे मुर्गी के सब नो चले हुए पखनवन है ना राज तो के बोले काल फ्लिक वेत तो अरमियन के पास कुछ ना है तो बोले हैगा वात खाइए फ्लिक फन काल के दूसरा चीज हो जाए मकाल प्लुक वेद जो नहीं गा तो के इन्नम निकिया ढाड़ी अब सबन मांगे भैया काल प्लुक वेद सुरीनाम में बनावे तब तो बिना कपड़ा के दया नोन जाए दया नाम में भाई बैठ सोचो तो काल प्लुक वेद मांगे दया नाम में सबन बनावे भैया फराख आंदा फॉर रेकबस्कर में इन एट फोर कभी ना हो पाई भैया एगो इंग्रिड कार्ता बैंक है का फोर्थ सेटर फॉर कमिशन फॉर रिपोर्टर्स ये बोले बहंदलिंग मांगे करे बोले हैगा वेदर रखलक फॉर क्रीकम फॉर फोर डील बेटर बकेंट अल द काल प्लुक वेद डोनरडक नेशनल असेंबली में सबन ब्रीदर्स टून फॉर द फॉर द डूलस्टेलिंग फॉर द क्रिमिनल en hun illegale verkregen vermogen te ontnemen. Maar John illegaal ze kini ze bijna 10 go 4 go helikopter. तो लो समझ गए तो जेके जेके भैया देखियो और पुरी से और दृक्ष से और उ सब चीजवन से सब बनाए बनाए धरी से ना अब ओके काल्पनिक वेतवा जे हो जाए तो सब बन जाए ओके काल करे बाकी उ वेतवा जाए तक मुंह तो देख के काल करियो वन उमा तो कितना आशा मले ये में बैठल है तो सीमा विष्णु दत्त भी आ गया तो सीमा जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं तो यहां बताए गए हैं बोले हैगा आसाम ब्ले बोले ब्रेदर्स टेन करिसे का फॉर क्रिमिनल उन्होंने लिखा लो फकरी का फॉर मोहन तेदन से इस्टर रोंडा फॉर कमिटी फॉर रिपोर्टर्स
onderschreven. De woordvoerders het belang van de wet in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, corruptie en witwassen. Maar vroegen zij tegelijkertijd een verduidelijking over onder meer de rechtbescherming, de bewijslast, de uitvoerende capaciteit en de aansluitende begaande wetgeving. To karta brink jun he imang ekal pluk vetwa abitalaw ekar bare me krishna motra fe yahan pe ke bole hega ki bestrijding van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk is, maar dat de rechtsstaat daarmee steeds centraal moet blijven staan. Zij vroeg de een uiteen te zetten hoe de nieuwe wet zich voorhoudt. De ikker barim toch een paar jaar bari jabar volg karab. Ki kaalpluk wet wat kabhitter ja he. Corruptie wet ke bari san lag gaya bhaiya baki abbe corruptie karmiye na pakran hai hufdalat kani kahan kahan baithe le itna corrupt lengen jo hisso mein hai oke koi pakde ben kari sega. Dus ik vraag me af, regering, gaat deze wet wel werken of niet? De corruptiewet is al in. Toch zijn er zoveel corruptie in het land. En gaat deze wet wel werken, de kaalplukwet, of niet, mensen? Ik heb het grote twijfels eraan. Ik heb er grote twijfels eraan, maar ik zal dat op de voet volgen, mensen. Ki is heb koontje kare, koontje nakare, he. Dus die kaalplukwet is goed, maar gaan ze dat wel doen of niet? Dus daar gaat het om, mensen. Jantake de kawe kato sabkoi eens ba. Ki kaalpluk wet wa in jai. Baki kaise jai, kaise na jai. Ab deko trem ka karis bhaiya. Trem bolie orlok karis na na na na. First care up karis se visum regeling na Amerika. Toe mensen, voor studenten, voor buitenlandse studenten en journalisten. John jai ke hua pe visum aanvraag kari Amerika ke. Deze maatregel in de nieuwste stap Trump begeleid kunnen legale immigraties te verkennen. Arubole heeft verblijf die 240 dagen gekal in Amerika met toeristische studieprogramma's. Als journalisten krijgen maximaal verblijf van 240 dagen. Ongeveer 8 maanden toeristische Chinese journalisten, de Chinese journalisten, ook mag 90 dagen gaan per heke. Toen IJsje, ook kardijs heeft die journalisten hebben moeilijker immigratie aanpak van Trump, die zich kennen merk zo streng la handhaaf in de grote steden. Toe je baat he, maar je janta Amerika ke bare me. Ja, betawe Amerika 2023-2024 1,1 miljoen internationale studenten, meer dan enig andere land. Deze studenten droegen 2023 50 miljard dollar bij de Amerikaanse economie ke bare me. Toe janta Hambolitro, wat hij die Toria Kaise he, Amerika ketulon Suriname me, jitra lok he, usapke Kaise visum he, mahambatele algemeen, ki wetwa scherp kerise, kabule he, en Trump en wetwa in de strenger deze. To, janta, hem chalte he, aur aange ko apna, प्रोग्राम को लेकर बड़ा बड़ा न्यूज आंतलो को हम दे ली नया नया न्यूज दे ली है और काबल बड़ा जोर सिरी नाम में चोरी हुए भैया तेल सिर के काबल जब घरवा तरवा ना कमाएगा ना तो बोलिए का भाई लमा हुआ चोरन भैया कबलवा काटे हुए है गा तेल सिर के चीज काटे हुए है तो कुमार सामी समझ भी आ गया है बारह देर में ले रखे नमस्कार हो राकेश जी आपको हम भी स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में तो हमारे जनता इन ब्रेकन क्रैश में फ्लुक अब चोर लेके हो तो भागे भैया पांच सिपाही दौड़ावे अब चोर काकरी से चोर भागे हो तो लेके बस जाए के घुस गए गोथरो में नानी बकी खोल बड़का गोथरो नाना ने चोरवा बुड़ के मर जात ओ तो हुआ ना उल्टन बकी ते होता फिर जाए के गोथरुआ में लगाई से चोर निकल के भगल सिपाही ना पकड़ पाई से बारा अफसोस के बात है भैया बड़ी अफसोस के बात है कि सिपाही ओके ना पकड़ पाई से और हमारे देखे में एक घंटा हो गया है हमारे यारो।

0: हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे जनता, घड़ी की ओर देखा जाए तो ये घंटा तो हमारा हो चुका है, तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा ना।
1: मिका दो मैं सिंगवा सिंह की आला दे मासरा दिन सब दराई बेदी दिन सब रुकना ग्रोंग जैसा लेरा हरफार फुर रुकना ग्रोंग फामुस रुको ओके ठीक है बोल।

नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रेलो आप लोग साथियों, पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णा दत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम 19 जुली 2020 का ये हसीन शाम का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में हो या तो काम कर रहे हो, मोटर कार में सफ़र कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ शाम शुभ रात्रि पेश है। मैं ढेर फील लश्तर प्लेजीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो या इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना चाहते हो यार, तो ज़रूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फन मांडा तो Vrijdag op de volgende telefoonnummers: kantoor 070-365-2247 of Studio Qatar kan nummer 070-362-2077. Quality grant your service ke saath Faun Hindustani Radio ye kaam aap log liye bechaini se karne ke liye intezaar mein rehte hai yaro. En niet te vergeten hè, onze kwaliteit is altijd uw garantie. En natuurlijk voelt u zich altijd lekkerder bij Faun Hindustani Radio. Hem se pehle aap sunao ek teesandar program suna jo khas karke hum logo ka saathi aur the one and only maestro Roy Surujbali, meer bekend als Johnny Number One, जी के जरिए एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे। ये आशा उम्मीद है हमारे फुल टीम की तरफ से कि जिस तौर तरीक से भाई रॉय आप सभी को हमेशा की तरह सेवा करते आ रहे हैं, उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई रॉय जी, और आपको भी हमारे फुल टीम की तरफ से एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो। विवाह संस्कार तो बीत चुका है ना, कंगन भी छूट चुका होगा ना, या तो दिने दिन भी शायद से उम्र में इतवार के भी ब्याह हुए। बधाइयाँ ही बधाइयाँ हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को, और ऊपर वाले से हम लोग सब यही विनती और निवेदन करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपनी फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिर फिर तैरकते में थे उसी दुआ से जो बीमार लाचार है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए, ना तिलक जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और थोड़ा बहुत तुम लोगों के बारे में जरूर बातें शातें करते रहना, क्योंकि हतलीफ दीर्थ औसो कौर्थ है फनहार्थ बीट अशाप मुन्ना। लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम लोग मिलकर विनती करते हैं ना, और अगर आपके घर पे दुख है मातम है, तो हम आपके दुख में अपने फूल टीम के साथ हम लोग शरीक है, और
विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को ऊपर वाले शक्ति और सहन शक्ति प्रदान करते रहे ना। हिल फिल टेरिटरी में आलमा। बहुत दुख की बात है कि आज शाम के प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप जरूर सुनिए, और वो भी 5:30 बजे आज शाम में मृत्यु समाचार आप जरूर सुनते रहना। आप कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और अगर हो सकता है कि आज या कल आप कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मोर्ख इस वीर दख है। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ थ्रोवत और आउट जोर जोर से बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी, यार नोई तो खीफ है वो तो खलेट है दैस ऑफ स्कूल ओवरऑल ऑफ योर वेरिक नेफर गिव अ ब्रदर नंग असीसा सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड एट योर लक बनांट फॉर इट लुइस्ट्रन। इस परवेश हुए हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम, फेन फकांसी ब्लेव लुइस्ट्रन आर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो यू गोना लाइक इट एंड दैट मीन इट ओ। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा, फेन फकांसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहरों द्वारा ओपन फकांसी एड्रेस, तो आप भी सुनिए हम लोगों को ऑफ यू टैबलेट लैपटॉप ऑफ स्मार्टफोन सो बेंट यू एंड ब्लेव टू फनालस ऑफ द होस्ट ऑफ यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाग शहर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुडू। तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार 1927 तक कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के आज गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना, इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदा ही कहते रहेंगे यारो कि हैप्टी नास्त आलते लीफ हैं, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, और हमारे तीसरा अध्याय में आप सुनेंगे सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा। 5:30 बजे शाम को ज़रूर आप मृत्यु समाचार सुनने के लिए मैत्री कृपा करें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हमेशा की तरह, प्रोग्राम का शुरुआत रवि साहब जी के मधुर आवाज़ में।

मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, आज का इस हसीन शाम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक जबरदस्त कलाकार के मधुर आवाज के साथ। स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 20 और 21 डिग्री के दरमियान था, कुछ धूप भी निकला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए साप्ताहिक प्रोग्राम सुनने के लिए हमारे सरनामी संगीत। और जैसे मैं कह रहा हूँ, एक जबरदस्त कलाकार, इंटरनेशनल कलाकार, हमारे सुरीनाम देश का वन एंड ओनली मास्टरो रॉबी उटित राम जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और उन्हीं के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये जबरदस्त सॉन्ग। उस्तादो का उस्ताद द वन एंड ओनली, एक जबरदस्त कलाकार जिस पे में नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए। द वन एंड ओनली श्री रॉबी उदित राम जी की प्रीत के रीत ना जान सकी।

Cabas. Ustad ook al staat over Amari Surinamdiska. Internet, national. Our Jabberjest Kalakare. The great. Robbie Udit Ramji ke beautiful awaaz mein ye tisundra bayan aap sun rahe the. अगला बयान की तरफ बढ़ते एक और नौजवान कलाकार है हमारे सूरीनाम देश का. इनका दादा जी एक बहुत ही जबरदस्त नाटक कलाकार था और एक बैठक गाना का महा महा गुरु. डिग्रेट छेदी भान जी का नवाजा है. कृष्णम छेदी जी का ये बिल्कुल न्यू सॉन्ग.

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का बहुत ही जबरदस्त खानदान।

कहानी संगीत परिवार से ये वहाँ पर जन्म लिया है। मैंने तो कह चुका हूँ ना, इनका दादाजी एक जबरदस्त बैठक गाना का महागुरु था, डगड़े छेदी भांजी। पवन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 6 मिनट रह गया है 5:30 बजे।

साथियों, जैसे मैं आपसे भी इसे कह चुका था, प्रोग्राम में कुछ देर के लिए यहाँ से रोक देता हूँ, क्योंकि 5:30 बजे आप मृत्यु समाचार सुनने के लिए मेहती कृपया कीजिए।

वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। सूरीनाम और नीदरलैंड से, सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन, परिवार बिरजा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई को सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में बेटा जीवन अधीन की माँ, पतो इंदिरा की सास, पोतिन अनवीती की आजी, बेटी उषा की माँ, दामाद अमर बिरजा के सास, नाती और नातिन युवराज और वर्षा बिरजा के नानी, नद्दमाद और नदपतो प्रशान और संगीता की ननिया सास, दो लड़के की परनानी, बेटी मालती की माँ, नाती शायर की नानी, देनहाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली बहन, स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी, सूरीनाम परमारिबो के रहने वाली मोहिनी महाराज जी अधीन कल्लू के स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर, जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस के नाम से भी जानते थे। सूरीनाम में अपने दिनों में वो खरीफीर थी। सूरीनाम में अर्थी आने वाला दिन 21 जुलाई शाम 2 बजे सूरीनाम में सूरीनाम से तहत वेखनर से ही उदय राज सिंह वर्मा क्रिमासी ओर्त में दाह क्रिया किया जाएगा।

सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन और परिवार वीरजा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में इंदलीफ एक्फन त्वीन निकन तक यार बेटा जीवन अधीन की माँ पतो इंद्रा की सास पोतिन अनवीती की आजी बेटी उषा की माँ दामाद अमर बिरजा की सास नाती और नातिन युवराज और वर्षा के नानी नतदमाद और नतपतो प्रशांत और संगीता के ननिया सास दो लड़के की परनानी बेटी मालती की माँ नाती शायर के नानी देनहाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली बहन स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी सूरीनाम परमारिवो के रहने वाली मोहिनी महाराजी अधीन कल्लू का स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस के नाम से जानते थे। अपने दिनों में वो सूरीनाम में ख्रिफीर थी। अर्थी आने वाला दिन दख एन तुवेंदक यूली को शाम 2 बजे सूरीनाम से तहत वखनर से ही समुद्र के किनारे उदय राज सिंह फर्मा क्रिमासी ओर्त में दाह क्रिया किया जाएगा।

यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। सुनने वालों से निवेदन है कि ये खबर को और लोगों तक पहुँचा देने को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार गंगा, सभी परिवार अधीन और सभी परिवार गिरजा और बाकी परिवार को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का शाम का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। अभी आप श्रोताओं ने प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुन रहे थे। श्रोताओं से गुजारिश, निवेदन और विनती किया जा रहा है कि ये खबर को और लोगों तक पहुंचा देने को। घड़ी की तरफ देखता हूँ यार, तो 19 मिनट रह गया है 6 बजने में। तो सरनामी संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे थे, तो मैं बढ़ाता हूँ। अगला बयान लेकर आ रहा है नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का, फ्रॉम द हीरा फैमिली, टेलखिया आइट दैस बरूम्ड म्यूजिकल फैमिली, द वन एंड ओनली विशाल हीरा जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग हमारे रनिया। एंजॉय द म्यूजिक मान।

शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार हमारे ऑन इंडीज का द ग्रेट मैस्ट्रो विशाल हीरा जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग प्रोडक्ट फ्रॉम द हीरा ब्रदर्स। 12 मिनट बाकी है साथियों, 6 बजने में और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार और एक बैठक गाना चटनी का क्वीन द ग्रेट मोतीमाला भोला सिंह जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को एक बिल्कुल नया सॉन्ग जो कुछ दिन हुए है रिलीज किया गया है। मिलके सुनते हैं खुशियां मनाओ मोतीमाला भोला सिंह जी।

Natuurlijk, natuurlijk. Bedanya hier, bedanya voor degene die jarig is. Natuurlijk, meneer Surinamdishka, de chutney en de Baitagana Queen, the one and only Baitaganaka, ik Guru Ma, Sri Mati Moti Mala Bhola Zinji. आज कई हसीन शाम जो आप सभी के नाम है यारो, पहला अध्याय का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनान के जा रहे हैं आप सभी को हमारे ओरिएंटिस का एक जबरदस्त महान कलाकार, नौजवान कलाकार फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी रिश्ता माएस्ट्रो दीपक कन्हाई जी का ये बिल्कुल नया चटनी सॉन्ग।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ यारो तो 3 मिनट गुजर चुका है, 6:19 जुलाई 2020 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, तो हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटोलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो सो लुबी लुबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाटोलिक बदंत फॉर हेट लिस्टन। जो भी रेडियो का काम हो यार खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो ऑर्गामान हो या तो ऑर्गा वुमन, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यार हो तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। आपका जो भी कमर्शियल हो ना तमाम लोग भी सुनेंगे लंबलिक एंड वर्ल्ड वाइड। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, कमर्शियल हो या तो इश्तिहारे हो या तो खास फरमाइशें हो, अपमान पर हम लोग बनना करो और आप जितने बार चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ सदियों से कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑन एंड देश भर में नहीं मिलेगा यार, आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी आप तार करें ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 9 7 3 5 6 2 7 40 और स्टूडियो का तार का नंबर है 9 7 3 2 6 2 7 7। जो भी रेडियो का काम होना थैंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए। और आप सभी को हमारे फूल टीम की तरफ से तह दिल से धन्यवाद क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड या तेज़ खरीदे हैं वो ओक ऑन से एक करा ओक टीम क्लब फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वार हेल फिर ओमरूपर्स ओमरूपस्टर्स ओक लाइव सिंग एंड ओक een paar keer al live hebben opgetreden, zoals vanmiddag waren we samen met heel veel zangers en zangeressen, waaronder ook een paar van Faun Hindustani Radio bij Anil Sergio, die doet elke zondagavond karaoke middag organiseert hij. En natuurlijk zijn we allemaal daar welkom, dus volg onze social media, dan gaat u zeer zeker binnenkort horen waar wij met ons team van Faun Hindustani Radio live voor u gaan zingen. तो आप भी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहे हैं आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें op 07 3 5 6 2 7 40 en vragen naar onze team leader the one and the only maestro Johnny number 1. तो आप भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, यू बैन ओक फन हार्ट वेलकम। वर के मुताबिक एक ही दम हमारे दूसरा अध्याय की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को सरनामी संगीत का, जो हर रविवार शाम 5 बजे शुरू होता है, तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलते रहते हैं। तो एक जबरदस्त कलाकार हमारे ऑल इंडीज का आप सुनेंगे जो काफी तजुर्बेदार है,
द वन एंड द ओनली, यस यस यस मैस्ट्रो अनिल पराग जी का बिल्कुल नया सॉन्ग, 2 weken geleden op YouTube gezet natuurlijk, en nu aap sibi kelje aap sunie aur maza lijie. Kolkata, music by Selecta Beats, Anil Parag.

Kalkatwa, nieuw van maestro Anil Paraag, music by Selecta Beat. Van Hindustani, radio pe aap chun hai yaro, रविवार रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 12 मिनट गुजर चुका है 6:00। अगला बयान एक और जबरदस्त मैशिप है, उमरिया मैशिप फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेशन द स्टार्स। गाने वाले है जबरदस्त गायक सुरीनाम देश का द ग्रेट रोहित छेदी।

वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त म्यूजिक फरमाइशी हमारे सूरीनाम देश का द स्टार्स का ये जबरदस्त सॉन्ग खुशोंग डोर माएस्ट्रो रोहित छेरी उमरिया मैश फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, और रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 19 जुलाई 2026 का हसीन रविवार का रात्रि का प्रोग्राम दूसरा अध्याय हमारे साप्ताहिक सरनामी संगीत का प्रोग्राम। अगला बयान दो जबरदस्त गाने वाले, एक है हॉलैंड देश का और दूसरी ट्रिनिदाद। दो सिंह जब मिल जाए तब सिंह ही सिंह होता है ना। प्रोग्राम में मैं ला रहा हूँ हमारे हॉलैंड देश का उस्तादों का उस्ताद द ग्रेट सिंगर इंटरनेशनल कला

ब्यूटीफुल सॉन्ग शाबाश शाबाश दो साथी जीवन के, क्यों नहीं अ लवली कपल देवेंद्र सिंह शिवनाथ एंड सविता सिंह के ब्यूटीफुल आवाजों में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। साथियों साढ़े छह बजने में और आप जोर तोर से सरनामी संगीत सुन रहे हैं, चुन है आप अफवाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप लोगों ने सुना, गाने वाले माइक जेट, जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का, म्यूजिक बाय सेलेक्टा बीट्स। तो साथियों प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं।

घड़ी की तरफ देखता हूँ तो पूरे 6:30 बजने वाला है, तो वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने कुछ बातें लिखे हैं, कुछ पोपी लेर सितात लिखे हैं जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि ये ज्ञान से भरी हुई बातें हैं। ये शामिल लेकर के इन बातों से सुन सुन कर हम लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे। तो जरा गौर फरमाए, बहुत ही पुराने जमाने का और महाज्ञानी श्री अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेचरकुंडिगे एंड ओक द आइटफिंडर फॉन हेल फील साकस वॉज de atoombom, een van zijn belangrijkste uitvindingen. Aur Albert Einstein ne kaha hai zindagi ke bare mein saathiyon ki iedereen is een genie, maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen. कहे श्री हरमन फिंकर्स जी ने जिंदगी के बारे में यारो अंदोर देंकर जो वनेर एक ड्रंक है रेट आल्टेट मेन फ्रो एंड वनेर खबर द मेस्ट ओंगलुकन वनेर ये ड्रंक है नोबेंटी फन अल्बर्ट आइंस्टाइन महाज्ञानी ट्वी डिंग्स सेन अनएंडिग हेट universum en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker. Winston Churchill, een van de leiders van Engeland, een appel per dag houdt de dokters weg. Vooral als je goed mikt. Shelley Pradhom, kaha hai yaruki, de geboorte van een recht betekent bijna altijd de dood van een vrijheid. Les Pascal, kaha hai yaruki, ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte. Hum log ka apna Bapu Sri Mahatma Gandhi ji ne dher citat padhe likhe hai aur kahe hain, aur unhi ka een van zijn citat ye keh raha hai yaar ki de intuïtie van een vrouw is vaak nuttiger gebleken dan de arrogante aanmatiging van de man die beweert alles te weten. Herman Vinkers en ik haal hier ook de cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. Maestro, de groot voetballer aller tijden van Nederland, Johan Cruijff, die ik haal hij ook een hele goeie hoor. Winnen doe je niet alleen hoor, winnen doe je met z'n allen. Dus zo veel mogelijk samen. Herman Vinkersneek, Aurka Hai, Satyoki, ik word wakker. Doe een plasje, sta op en denk, verrek, dat had anders omgemoeten. En zo hoort dat. आप अभी कुछ ज्ञान के बातें सुना जो कुछ ज्ञानियों ने लिखा है, या शामिल लेकर इन बातों को मैं आप सभी को सुनाया कि कुछ ना कुछ इन बातों से हमेशा की तरह हम लोग तो सीखते ही रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, घड़ी की तरफ देखते हुए तो देखा जाए कि 4 मिनट गुजर चुका है 6:30 बजने में। एक और जबरदस्त सॉन्ग आप सुनिए From the music formatie The Stars, लेकिन इस बार गायक है The great, great, great singer from Suriname, Maestro Faris Barsati, भुला दिया।

जी जॉर्जेस गायक हमारे सुरिनाम देश का फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी द स्टार्स फ्रॉम सुरिनाम आप सुन रहे हैं जबरदस्त गायक फारिस बरसाती जी के ब्यूटीफुल आवाज। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। जोर जोर से सरनामी संगीत चल रहा है और ये भी कुछ इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम हॉलैंड एंड सुरिनाम। हमारी रे क्या बात है, एक जबरदस्त चटनी सॉन्ग रिलीज किया गया है और लक्ष्मी नगर म्यूजिक इंटरनेशनल चटनी म्यूजिक फ्रॉम द हेल कराइविस खबीत। क्या बात है, ऑल अराउंड चटनी म्यूजिक हमारी रे, थैंक यू वेल लक्ष्मी नगर म्यूजिक, जबरदस्त है, सुनिए।

ऐसी जबरदस्त चटनी और फाइफल सॉन्ग हमारी रे प्रेजेंटिंग बाय लक्ष्मी नगर म्यूजिक. थैंक यू मान. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और एक महान गायक जो 1980 से हमारे इस संगीत के दुनिया में उतरा है, देन हाग शहर से लेकर रोटरडैम शहर तक, और एक जबरदस्त खानदानी संगीत परिवार से जुड़ा हुआ है ये महान उस्ताद. उस्तादों का उस्ताद खुद लिखता है, खुद कंपोज करता है, खुद गाता है. उस्ताद सुरेश हीरा जी को लाते हैं प्रोग्राम में और उनका ये बिल्कुल नया सॉन्ग जो 4 दिन हुए है रिलीज हुआ है यूट्यूब पे, तो मिल के सुनते प्रीमियर ओक बैराडियो फाउन फॉर अलमा मैस्ट्रो सुरेश हीरा का बिल्कुल नया सॉन्ग तू है गुलशन बहार कंपोनेट एंड अरेंजेड बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या तमिल प्रोडक्शन.

शाबाश उस्ताद का उस्ताद मैस्ट्रो सुरेश हीरा जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग तो है गुलशन बहार, अरेंज एंड कंपोज बाय मैस्ट्रो अशोक अयोध्या। नौ मिनट बाकी है साथियों, 7 बजने में, और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे दिनाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, और जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। वेस्ट इंडीज और सूरीनाम हॉलैंड का कुछ कलाकार। अगला बयान एक जबरदस्त न्यू सॉन्ग है जो 2 हफ्ते हुए रिलीज किया गया है, म्यूजिक फॉर मासी बै, देखा जाए तो गाने वाला है श्री अरुण शिवदत्त, म्यूजिक बाय RMS एंड मिक्स्ड बाय विकास लक्ष्मण। बड़ी दुख दीना सरनामी चटनी ट्वेंटक सेशन ट्वेंटक बाया, एंजॉय द म्यूजिक।

0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 19 जुलाई 2020 का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अभी आप 2 घंटे तक सरनामी संगीत सुने, कुछ बैठक गाना, कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक। अब आ गया है तीसरा अध्याय में सिर्फ कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एन तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एन तिलक बदंत फॉर एट लाइस्टरन। 2 मिनट गुजर चुका है 7:00 और आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी हैप्पी रेडियो स्टेशन डायरेक्ट फ्रॉम दी हेग सिटी देन हाग शहर। तापमान तो तकरीबन 19 डिग्री नीचे चला गया है और धूप भी अब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम हसीन है, मधुर है। नतीलिक स्ट्रक्स ऑफ नेक न्यूर वीका 2026 का फिनाले। वी गाट इट वर्ड मेसी ऑफ यामा। ik wens allemaal succes en mogen de beste winnen, hè. Heb je toch aap kuch 5 ya 6 hafte tak bijna hone wala hai ki ye football mundial worldwide khela ja raha hai, America, Mexico aur Canada, aur aaj finale hai। Kal yahan to aap log dekh rahe 3 doelpunt hai om te smullen en te genieten। We zijn blij voor Engeland natuurlijk. En natuurlijk vanavond mogen de beste winnen. Jo bhi radio ka kaam ho saathiyo, denk aan Fahun Hindustani Radio Cast. Voor mij zo zaruri khabre is tihare. Denk aan Fahun Hindustani Radio. Fight se sedam service grant your quality ke saath aapka jo bhi radio ka sandesh ho, kaam ho, upmaat par hum log bana kar bandhu hai। और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग का ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से ये कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी के ऑनलाइन डेज भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेल फमांडा टॉट फ्राइडाग ऑफ द फोल्ड टेलीफोन नंबर्स van 9:00 AM tot 5:00 PM natuurlijk, tijdens kantooruren. Kantoor 070-365-2247 of Studio Qatar kan nummer heen 070-362-2077. Job hier radio ka kaam hona, denk aan Fahun Hindustani Radio. U bent van harte welkom hoor. इसी तरह हम लोगों के बारे में रेक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो बिनती गुजारिश निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए यारो। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सेंट है वो कौन से एक कराओके टीम कराओके संक्रुप्य उपगृहित में हेल फिर ओमरूपर्स एंड ओमरूपस्टर्स die ook meedoen met onze karaoke team. We hebben een paar keer al opgetreden hoor. En volg onze social media's. Dan gaat u zeker zien en horen waar we binnenkort voor u gaan optreden. En er wordt achter de gordijnen veel gewerkt hier omtrent. Dus binnenkort gaat u zeer zeker wat van ons horen. तो अभी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। आपको लेट होना है सिर्फ एनत बहुत ही सस्ते दाम में आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बन सकते हैं और आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें op 07-365-2246 tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag, dan wordt u automatisch verbonden naar onze teamleider, maestro, the one and the only, Johnny number one, Bhai Roy Suruj Bali se aap iske bare mein aage baatcheet kar sakte ho. आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए इवेंट फ्रॉम हार्ट वेलकम। फर के मुताबिक कुछ नए नए नगमे हमारे प्रोग्राम में आप सुनिए। डायरेक्ट फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक जबरदस्त सॉन्ग है जो कुछ दिन बाद महान गायक जुबिन नौटियाल जी ने गाया था। महान लेखक मनोज मुंतशिर जी का लिखा हुआ यह अति सुंदर बयान और ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर रॉकी शिव जी का बनाया हुआ ये ब्यूटीफुल धुन। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ये गाना तो हलचल हंगामा मचा दिया हमारे दुनिया भर पे। अगर मैं ये क्लिप को देखूं फ्यू अपना स्क्रीन पे जब मैं देखता हूं तो 1,3 miljard keer bekeken en geluisterd. En dat is bijzonder veel voor een India's Bollywood artiest. Aap kalpana kijiye ki na ki 1,4 miljoen hai bhai ki 1,3 miljard. Dus meer dan 1,000 miljoen keer bekeken. Ja, dat is zeker een applausje waard voor maestro Jubin Nautial. En je nog maar mij aan het zemiko sunane wala hou. Aap lukt dus jante hai. Je jabarjist nog maar ko ki. Hem nawa mere na een tijdje geleden. Special aap sabhi priye priye shrotaon ke naam. En remember hai. Remember saathiyo 1,3 miljard is veel.
1: बरसों हो गए बिछड़े अब साथ नहीं हो तुम फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे।

जबरदस्त नगमा है हम नवा मेरे, महान गायक इस जमाने का द ग्रेट जुबीन नौटियाल जी के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में 30 बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो रॉकी और अल्फाजे था इस जमाने का महान लेखक द ग्रेट मनोज मुंतशिर जी का। 15 मिनट गुजर चुका है साथियों, 7:07 और आप मनोरंजन ले रहे हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। अगला बयान इस जमाने का जबरदस्त गायक नंबर वन सिंगर जो अपना आवाज 1 लाख पे चप धर दिया है बीच अनंत स्लैमर माराफेंटो स्टूट है वेलन लुक न्यूमर, वो सुनाएंगे मैं बाद में। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी का गाया हुआ है अति सुंदर बयान एड फिल्म सायारा रिप्राइज। म्यूजिक अरेंज अंत कंपोज बाय तानिक बख्शी फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी, अल्फाज है इरशाद कमील का और आवाज है द ग्रेट ग्रेट ग्रेट श्रेया जी का।

0: साप्ताहिक प्रोग्राम। अगला बयान, जरा दिल को थाम लीजिए, काफी दिनों बाद ये महान फनकार कुछ सुनाने वाला है और कुछ आप सभी से भी कहने वाला है, तो सुनिए और उसके बाद ये अति सुंदर बयान से आप मजा लीजिए। खास करके अल्फाजे पर आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये नगमा बीटलेस है।
1: You're not taking on any projects. For some time you want to take a break. Or you want to not sing for Hindi films. ऐसे मत करिए। हम लोग का क्या होगा भाई?
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं।

0: थैंक यू सो मच फॉर सच अ मेमोरेबल ट्रिप.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू. सी यू.
1: अरे अरे दूर दूर.
2: बाय.
1: अरे नो नो.
0: बाय गाइस. सी यू. टेक केयर. सेफ जर्नी.

आप सभी को इस जमाने का एक फन द बेस्ट सिंगर्स अलर टाइड मैस्ट्रो अरिजीत सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में और कुछ अल्फाज आप सुन रहे थे महान एक्टर द ग्रेट अभी नेता जाने की एक्टर द ग्रेट ग्रेट ग्रेट आमिर खान जी के आवाज़ें आप सुन रहे थे। क्या अभिनेता है वो भी और क्या कला अपना दिखाए हैं कुछ फिल्मों में द ग्रेट आमिर खान। क्या संगीत दिया हैगा भी इस गाने पर द ग्रेट अरिजीत सिंह जी ने। 4 मिनट बाकी है साथियों 7:30 बजने में और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर और अब मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ सुंच के आवाज में कुछ नए सुपरहिट सॉन्ग जो रिलीज किया गया था कुछ दिन पहले। गाने का बोल है आंख लीड फोकस बाय सुनिधि चौहान म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय प्रतीक्षा श्रीवास्तव और अरमान खरे। पौरुष कुमार भी कुछ काम किया है संगीत में और लिखा है अति सुंदर बयान को प्रतीक्षा श्रीवास्तव जी। द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सुनिधि चौहान सुंच जी के आवाज में सुनिए ये अति सुंदर बयान और एंजॉय कीजिए बिकॉज इट्स Happy, happy Sunday, weekend time.

कूल सॉन्ग अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना अभी। और गाने का बोल है आंख, तो देखते रहना आंखों से। सुनाने वाली थी द ग्रेट सुंच सुनिधि चौहान जी, और क्या संगीत दिया है भाई, क्या बात है। मिलाए के एंडम एमे से ओमे करके, और देख कैसे जोर दी से ना। महान संगीतकार कंपोजर प्रतीक्षा श्रीवास्तव, अरमान खरे और पौरुष कुमार। साथियों एक मिनट गुजरने वाला है, 7:30 बजने में तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज किया है डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सेती भैया भूपेंद्र जी ने कि एक दिन जब मेरी सांस बंद हो जाएगी, एक दिन जब मेरी सांस बंद हो जाएगी, मत सोचना कि चाहत कम हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, आज हम आपको याद करते हैं, कल मेरी याद आपको रुलाएगी। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ। प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह के भी आपको भुला ना सकेंगे। आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़े तो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हो, मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हो, इन हाथों में मैं मेरे बस हाथ उसका हो, इन हाथों में मेरे बस हाथ उसका ही हो। चाहत मुझे इतनी है, चाहत मुझे इतनी है उससे के दिल मानता नहीं कोई मेरे बात उसका हो जाए। पलकों से आंखों की हिफाजत होती है जनाब, पलकों से तो आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल की अमानत होती है। हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, हमारा रिश्ता तो भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। पानी से तस्वीर कहां बनती है साथियों, पानी से तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है, ख्वाबों से भी तकदीर कहां बनती है। किसी को चाहो, किसी को चाहो तो सच्चे दिल से, क्योंकि ये जिंदगी फिर कहां मिलती है। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। 5 मिनट गुजरने वाला है साथियों, 7:30 बजकर और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये जबरदस्त सॉन्ग इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी को लाते हैं प्रोग्राम में, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सोनू निगम जी, और उसका साथ दे रहा है इस जमाने का जबरदस्त गायक और संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दादलानी। ये दोनों मिलके ये अति सुंदर बयान आप सभी को सुनाने वाला है। एडू फिल्म भूमि, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय जबरदस्त संगीतकार जोड़ी द ब्रदर्स सलीम सुलेमान के संगीत है और श्रद्धा पंडित जी के अल्फाजे, और क्या गाया है दोनों मिलके सोनू निगम और विशाल ददलानी। फायर

जान ले गई। जबरदस्त सॉन्ग फ्रॉम द मूवी भूमि, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो, क्या संगीत जोड़ी है दो भाई द ग्रेट सलीम सुलेमान, और लिखा है अति सुंदर बयान को श्रद्धा पंडित, आवाज़ था द ग्रेट इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी सोनू निगम, और महान फनकार गायक म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दादलानी जी का। तो साथियों प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, और देखा जाए तो एक और जबरदस्त गाने वाली इस जमाने के मैं चुन चुका हूं सुनाने के लिए आप सभी को, और प्लेयर में रख चुका हूं सावरिया, क्या बात है, गाने वाली द ग्रेट नीति मोहन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए, कंपोज एंड अरेंज बाय विक्रम मोंट्रोस, और फाजे है शेखर अस्तित्व जी का ग्रेट सॉन्ग सावरिया, रिमेंबर।

सांवरिया सुनाया आप सभी को इस जमाने का द ग्रेट गाने वाली फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नीति मोहन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुन रहे थे कंपोजर विक्रम मोंट्रोस के साज और अल्फाज़े था शेखर अस्तवा का। 15 मिनट रह गया है साथियों 8 बजने में एक और जबरदस्त सॉन्ग मैं सेट कर चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए। पागलपन सॉन्ग अल्फाजे है क्या बात है यारो, और जरूर उस पर आप ध्यान दें क्योंकि गाने वाला है इस जमाने का जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर और लायरिक्स भी कुछ गानों में दे चुका है मैस्टर विशाल शर्मा जी को लाते हैं और म्यूजिक टीम अभिनव मिश्रा का टीम से निकाला हुआ ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय द मैन हिमसेल्फ लेकिन कुछ लोगों ने भी साथ दिया है जैसे वैभव पानी। अ ग्रेट सॉन्ग आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम क्या बताऊं तुझे सिर्फ पागलपन ही है।

अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो, अगर मैं कहूं कि मैं बस खुश रहना चाहता हूं, मैं बीपी खुश नहीं हूं, मुझे अंदर से कुछ

क्या बात है, दिल को एकदम चीर के रख दिया, सुनसान कर दी। महान गायक इस जमाने का मैस्ट्रो विशाल शर्मा का गाया हुआ और कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर बयान है, और आल्सो ये गाना को खुद लिखा है वो, म्यूजिक में साथ दिया है वैभव पानी जी। तो साथियों धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनिए। जबरदस्त सॉन्ग है, काफी दिनों पहले निकाला गया था ये सॉन्ग, और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ये सॉन्ग भी 1.4 मिलियार्ड से ज्यादा, खात रिखिंग 1.5 मिलियार्ड केर हकीक एंड बलुस्टर्ड। मिले हो तुम भाई बहन नेहा और टोनी कक्कड़ का ये सुपरहिट सॉन्ग आप सुनिए। लिखा है टोनी कक्कड़, कंपोज किया है भी टोनी कक्कड़, और मिलके ये दोनों भाई बहन ने ये अति सुंदर बयान को गाए हैं। क्या बात है, देख भाई 1.5 मिलियार्ड केर बलुस्टर्ड वर्ल्ड वाइड विल ओक वट सेगर साथियों।

दिल को छू लेने वाला नगमा सुनाया आप सभी को भाई बहन नेहा कक्कर और टोनी कक्कर, रिटन बाय टोनी कक्कर एंड कंपोज एंड अरेंज बाय आल्सो ब्रदर टोनी कक्कर। दोनों ने मिलकर इतना जबरदस्त सॉन्ग बनाया और सुनाया कि दुनिया हिल गया। अंदर हाफ मिलियर्ड बैना, क्या बात है। खासो दो और नतीलिक ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। तो साथियों यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जो जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ संगीतकार का दास्तान नामक कार्यक्रम लेकर खलिंग में ओल्डिस गोद गीत और गजल। आप लोग हमें इजाजत दे, हमारे बाद आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है बड़का भैया धवन डोली मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा मेदसेन। Echt heel bekende programma, mag ik het vanavond alleen zitten, want de bal hena, Ajwika, dus bij Jozef gaat lekker voor de buis zitten. Ik ook hoor, want ik ga ook richting naar huis. Hopen dat de beste mag winnen natuurlijk. Geldt voor Messi en Jamal. En moet een mooie sportieve wedstrijd worden. En natuurlijk wens ik jullie allemaal een hele fijne WK-wedstrijd en hou je koest. जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ आदत से जो मजबूर।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों को सेवा में साथ सप्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फोन हिंदुस्तानी रेडियो है www.fawnfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीब 11 मिनट व्यतीत हो चला है, 8:11 ऊपर अख्त। ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देन हाग शहर से। जो बीमार है लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है। जिनके घर में कोई शादी या कोई भी उत्सव हो, फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। पहले आप अभी कार्यक्रम सुन रहे थे भैया सूर्य भगवान दीन जी के। भैया सूर्य भगवान दीन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए। और आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और मैं अपने तरफ से भी। और मेरे सामने बैठा हुआ है भैया मीनू भगवान दीन। आज भैया यूसुफ नहीं है, भैया मीनू भगवान दीन मेरा थोड़ा बहुत अवश्य साथ देगा। तो भैया मीनू, आपका हृदय से स्वागत है। फन हार्ट वेलकम मीनू। तो यहाँ सोंदख नई खन 3 जुली है। जी हाँ, सोंदख नई खन 3 जुली है। और जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह हो गया या शाम होगा या रात्रि होगी, आपका हृदय से स्वागत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और मैं अपने तरफ से। और भैया मीनू भगवान दीन जो मेरे सामने बैठा हुआ, जिसे मैंने कहा, उनकी तरफ से भी। रविवार है जैसे कि आपको पता है, और आज फुटबॉल भी है। मैं समझता हूँ आप तैयारी कर रहे होंगे फुटबॉल देखने को, लेकिन अभी तो 9 बजे शुरू होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है। तो तार्क आप कर सकते हैं, गीत गज़ल के कार्यक्रम तो यहाँ से ऊपर हम शुरू कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ आप हमारा भी साथ देंगे। आंखें रहेंगे टेलीविज़न पर और कान रहेगा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, है ना यही बात। तो तार का नंबर है 0 7 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
पुनर्मिलन। फिल्म पुनर्मिलन में से निकाल रहे हैं नेकती फिर से गीत इस तरह से।

0: पूछो मेरे दिल से, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए फिल्म अनीता में से निकालकर लक्ष्मीकांत प्यारी लाल के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने से पहले देखता हूँ कोई लाइन पर है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदाना आफंत। हेलो
1: Ja, maar
0: dat is weer. Dag mevrouw, nu bent u live in de uitzending. Ik ga u even in de wacht zetten. Oh, zo, mevrouw Ursula uit Rotterdam, kan je ze bij?

जानू मेरी जानू, बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद फिल्म सत्यमेव जयते में से निकाले हैं। आओ ये शानदार गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज सोनदखनी खयूली है, गीत गजल के कार्यक्रम है और आप तार कर सकते हैं, दोनों तार इस वक्त फ्री है। नल से इवन तक द्री फाइव से तक ट्वेंट ट्वेंट तक सेवन फेयर तक, या तो नल से इवन तक द्री ट्वेंट से तक ट्वेंट तक सेवन एंड सेवन तक। तो जिस समय आप तार ढूंढ रहे होंगे और नंबर शायद लिख रहे होंगे या याद कर रहे होंगे और दबाने के या घुमा, आजकल घुमाया नहीं जाता सिर्फ दबाया जाता है, तो जिस समय आप दबाना चाहते हैं तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है उत्तराखंड शहर उत्तराखंड के रहने वाली आशा गौरी सिंह जी, शहर उत्तराखंड के रहने वाली आशा गौरी सिंह जी के लिए, और वो ये गीत मांग रही है अपने प्यारा पति करण सिंह के लिए। जी हाँ भैया करण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आशा जी आपको भी। फिल्म जिया में से निकाल, जी नहीं, फिल्म गुंडे में से निकाल रहे हैं और गाना क्या बोले जिया, तो लीजिए आशा गौरी सिंह की तरफ से उनके प्यारा पति करण सिंह के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और धन्यवाद पेश करते हुए, उषा जी आपको भी, आशा जी आपको भी और करण सिंह जो की आशा जी।

फिल्म गुंडे में से निकाले हैं जिया, और पेश हुआ ये गीत ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रानी, और पेश करवाने वाली थी इतरा के रहने वाली आशा गौरी सिंह जी। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने चलाए हैं, और ये गीत चला आपकी तरफ से आपकी पतिदेव श्रीमान करण सिंह के लिए। भैया करण सिंह, उम्मीद गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कहानी में से भैया करण सिंह जी आपको भी धन्यवाद, और आशा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ, आपने ये गीत मांगे हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले, और वो है रोतरदाम, रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी, रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए अर्शीला जी के लिए फिल्म नदिया के पार का ये गीत, और रफ़ी साहेब और ललिता दिवलकर गा रहे हैं मिलके। निगतिन अख्तन फिर तक बहुत पुराना फिल्म है, निगतिन अख्तन फिर तक का है, अख्तन सैफ तखियार खलीद सवों को फिर चितल का रामचंद्र के साज पर, सही रामचंद्र के साज पर चलो। अर्शीला जी के लिए जो रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी, ये रकम तथा

फिल्म नदिया के पार में से निकाला गया निकली आखिरी फिर तक का ये गीत रफ़ी साहब और ललिता देवलकर जी मिल के गाए हैं ये सोलो गीत ये द्वैत और सही रामचंद्र के साथ पर ये पेश हुआ ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में और मांगने वाली थी रोतरदाम के रहने वाली इर्शिला जी। इर्शिला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा क्योंकि जिस गीत का जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों मिल के चलाए। इर्शिला जी आपको भी एक शुभ रात्रि बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगर नाम लम्बन हम पेश करने वाले हैं चलिए इसे सुनाते हैं उसके बाद पेश करेंगे विज्ञापन। विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ लेकिन पहले ये गीत सुन लीजिए।

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: www.vahonfm.nl पर आप ट्यून हैं और वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर जो लोग ट्यून के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। गीत गजल के कार्यक्रम चल रहा है ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आप तार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ फुटबॉल है और आप देख रहे होंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तब तक कौन जाने थोड़ी सी आपको मौका मिले तो तार कर सकते हैं। नौ से ही फिन तक दरी फाइव इन सेस तक तुएं तुएं तक सेफ ना फेयर तक, या तो नौ से ही फिन तक दरी तुएं सेस तक तुएं तक सेफ ना सेफ इन तक। बस आपके तार के इंतज़ार में हूँ। फुटबॉल देखिए और कान रखिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। बस चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

0: टाइटल सॉन्ग जहाँ प्यार मिले फिल्म का नाम है और गाना का टाइटल भी है, जहाँ प्यार मिले नेक दिन अख्तम फैफ तक का ये गीत, जी नहीं नेक दिन नेक हस्त का ये गीत शंकर जय किशन के साथ पर हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत
1: या
0: खुद नाफंत तो देया खुद नाफंत या हुए से मत मुफरो बे या
1: या या या खात वाला
0: चले
1: खाली खाली गटैया पेरा है
0: कोई जात रे पूछे बड़ा धीरे बोले तू
1: हम गटैया पेरा है।
0: अब हम कौन सी बोली दुई दवाई है हिंदुस्तान बोले दवा दारू कर लेता एड्स वाला ना तो तुई दवा ना तो एड्स वाला
1: दारू दवा दारू दवा दारू में पैरासिटामोल
0: ओके बोले हैं फ्लू बार पैरासिटामोल
1: ओ
0: दारुक बोले फ्लू ही बार पारा सीधा
1: ओ ओ
0: हाँ
1: पटा गया है
0: नहीं हो
1: ना
0: ना ना हम लोग जाने लौंडन जब बैठा रहे तो कुछ ना कुछ फरसेन कर ले तो बोले फ्लू बोले जो पारा सीधा मलवा ना कमाई तो फ्लू ही बार पारा सीधा मलवा ले लिया तो हम लोग समझ जाते रह ली बहुत सुधार नहीं बोलू
1: वो एरकर हुई तो दतरा लगे स्पोइटी
0: हाँ तब एरकर हुई तो कभी कभी कुछ ना हेल्प कर दे तरह हेल्प
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं प्लस चले होएगा ना नहीं दिमाग हो रहे माँ
0: नहीं तनी गर्म हो ठंडा हुआ वन तो आज से फर्क लाइक तुम पार दाख ली तो वस देर तक सो फिर और ये खेसर बहुत नत में 20 ग्राद
1: हाँ दिमाग हो रहे ली माँ प्लस चले नहीं से होए
0: तो सो ठोट होई
1: सो खेमर तो कुछ भैली सब
0: ना तो ठीक
1: कुछ के लिए लली
0: नहीं अच्छा हेल्प करी जरूर कुछ
1: या या या
0: एंड हु इज इट फर्द में फ्रॉम हियर ऑल इज गुड
1: या या खलुका फ्रेंड खात खुद
0: तम मोई
1: या तम बोली हुई हम भी एक गाना सोच सोच
0: एक के एकदम हुई तो हम लोग बोलते हैं मत तू दर्द बेलर बाल है यस एन
1: आशा
0: आशा रहा और दाना रोटरडम से फ्रॉम यूरसिला एंड न्यू दर्द बेया एक आद को बेया और देखी कौन बेया और बेल कर है
1: ओ ओके
0: हां
1: मर आज कमती है
0: हाँ हम वो सब बाल देखे तो जना है
1: अरे अब थोर को बिगिन है
0: अरे फोर बस खोएंगे ताके तो बैठ के मफ़ोम उसमें इस साल बखोना मिनु इस साल बखोना या इस साल बखोना
1: ओके
0: या
1: अच्छा खेफ नहीं हम द स्टलवा ताकले बेचे हैं फोर
0: कोई बोली कनवा रहे फाहन पर अखिया रहे दीफिया पर
1: परसीस ना दोनों सुन बे हम दुई गो तो
0: या यू राइट
1: ना ना हमारे कबरों टेलीविज़न ही तो ताई ताकेला
0: ओके मोई मफ़रो बेया कोनो कहाँ वो तो थोड़ा धल ले
1: अरे कहाँ वो छोड़ मान गटाई पी रहा है
0: अच्छा नेक्स्ट टाइम अज बेया वार मैकेनिक मैं तो वेल क्लिक कर रहा हूँ फनाफत योग
1: ना ही आज तो मोई बोले हर तब हम बोल जाएगा
0: बोल
1: हाँ एक गाना है हर खुशी है वहाँ तू जहाँ भी रहे
0: हर खुशी
1: हो वहाँ
0: यूसुफ बैठ के बाल देखे है
1: अरे बलवा तो हरहालिंग ना है तो
0: नहीं तो तू ऐसे करिए सुरनामो सब की आई है तो यूसुफ खतीन एगो छटकुन ले ले आई है
1: कुछ छटकुन लावे
0: इमली के
1: अब सुन ली बात की बड़ा चोट लगे है बा हम कभी ना पहली बात
0: नहीं तो नहीं एक सफार बात
1: एगो झूर वाला की कच्चा
0: है बे कोई फिर स्थान पर पूछे कोई सुरनामे में पूछ लिया
1: ओ हमने नहीं झूर वाला तो झूर वाला बे तो
0: हां हां में झूरा जाए तो
1: और का बोले रोज के काटा
0: अरे नहीं तो वो तो मोरदंत है वो तो प्रोसेस पर बाल पाई गई है भैया
1: तो मैं जो डरता है वहां में बड़का बड़का
0: ना जब रोज के काटा से मरिए तो वापन में गिनती रही है
1: ना ना एक आध गो कार्टून छील देते एक आध गो रही तो
0: ओ बोले मिस्टेक से रह गया हां ले
1: हां आर मो यूसुफ
0: पता नहीं सुने है कि ना सुना तो ही सुना तो वो एक कान से सुना तो ही
1: अच्छा अच्छा ना ही गरु मोई होई
0: ओके फिर अभी
1: अब फुटबॉल ना तक पई है
0: और मिस्किन लास्ट हाफ ईयर
1: ओ
0: और जो फरलैंग हो गेल देन
1: तब
0: देख ले बेल मैं यहाँ एक दिन नहीं दर्द खात फुर लेंगे
1: पर ये रतिया के ताकत ही बा हम देखी इस जहलफ पर उसे ब्लास हुई तो मैं गुस्सा लगा हम गली सूद गली तो सवेरे तकली हाँ। लेकिन फिर सहसा रहा तमरी ओ तो है बस
0: हाँ हाँ बाकी बड़ा स्पांग ना खेलो
1: ये
0: अथवा नेक नेक रेस
1: हाँ या मर हाँ,
0: फ्रांक रेगल मंद
1: मैं या जो रार जुड़ के सोचे जीते के तब उजित बिन करे
0: ये लख सेख हम या हम एक वर्ष नहीं फोन ही एक बे मैं खाते थे रम नतील अनी दर हिप्सन एक देंगस हम मांगे की रोबा में रह जाए
1: या तो
0: हाँ मतलब अब तो अब तो अर्जेंटीनिया दो से सौ वेल
1: हम अभी क्यों ओके अर्जेंटीनिया वो के इमली छट को लेता बे
0: ना ओके समझा दिए
1: इसे भैया कहे तो तब वो बोले और है तेरी है मक्सी मार के फ्रिंडे ने कहा
0: वो जना है
1: वो के छटकुट के बार मांगे है ने कटवा
0: एक होप दे रहे थे यूरोप अब लेफ्ट
1: या
0: ओके
1: मारिया ऊपर वाला जाने है कुछ जी हो हम लोग ना जाने लगा
0: या प्रसिस
1: वही तो वही जाने है कि जीती के करार
0: आसेहन बेस्ट
1: के रोई या सिला
0: इस खुद दान
1: में या इस खुद कहीं ऐसे हैं ने
0: या
1: और एल पेसीर
0: या थैंक यू वेल
1: और फुटबॉल टैकल करिए
0: या नहीं ना आधा घंटा रह जाता देखो घर है
1: या
0: मुफरोबी है थैंक यू वेल हेल फील लॉयस प्लेसीर एंड हेल फील केक प्लेसीर
1: या
0: एंड तो द फॉर्म ऑफ द केयर
1: या तो द फॉर्म
0: ऑफ द दा मुफरोबी या
1: ओके फाइन आफ
0: सेल्फ द दा
1: या दी दो
0: ये थी बेया जी उतरह के रहने वाली तो भैया मीनू ऑन पे करेंगे नेक्स्ट भी सौंदर्स ओके ओके नहीं प्रमोद भैया मीनू हमको फर्स्ट लाख देवल कर रहे हैं फनी फुटबॉल तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से आ रहा है ये रास्ते हैं प्यार की रफी साहेब और आशा जी

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में से निकाल कर हमने ये गीत पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं और ये है रामलाल के साथ पर फिल्म सेहरा में से निगती द्रिय शस्त का ये फिल्म है। और चलो सुनते हैं ये गीत।

0: है फोन हिंदुस्तानी रेडियो को देना आपको। हेलो हेलो
1: हेलो
0: या दक भैया कैसे रहते हैं?
1: मैंने कॉल
0: या
1: ओ हम आई गले
0: का वो दुलपेन बना था तू चल गए रहे का
1: ना हम कब ना सुनत रहे तो क्या
0: ओ ओके एंड हु इज इट भैया खुद ना आपन
1: या बेचे मु कल्या गईली एरखंस वसरन या अनसोट क्लाइन फेश बाय सबेरे से इट वाज हे लात हुवर्ड दिस अब हम बै आइला
0: Oh,
1: okay. te komen hoor.
0: Ja, begrijp
1: ik. Het is niet makkelijk meer om heel snel weer op de been te komen. Op cello hali hali ikeron. Nee, het duurt heel lang voordat je bijkomt.
0: Rustig aan doen, Bea.
1: Ja, je weet hoe het gaat met ouderdom.
0: Precies.
1: Ja, dus het is niet fijn.
0: Dus een lampel op ouderdom komt niet gebreken. Maar ouderdom, dan moet je voorzichtig zijn. Voordat je gebreken krijgt.
1: Ja, ja, ja. Precies. Maar ja, goed, het is onschuld, hè. Onbewust. Koop, houden. En dan denk je niet bijna. En nu pas denk je. Dat is niet houdelijk.
0: Dan ben je daar geen naadje tot je terug rijden. Want daar word je ook moe van.
1: Ja, daarom. Ja. En dan kon je kooi naar haar pietje maken. Waar laat ik je aan. Hoe kooi je dat?
0: Oh, dan hoor je bij mevrouw B.S. wat je aan het rijden. Moet je kan bijzien je Suriname. Dat je in mijn keer schat kunt leren.
1: Ik hoor de schat kunt je laten. En soms zeg ik, had ik maar iemand. Dan met schat kunt leken. Maar pietje rijden. Dit niet doen, dat niet. Ik heb ook hem een betuwaar bij hier. Maar chahe hem dekje 12 bezig ghoomie laten. Ghar waar me. O, kuch na boli. O, bole, oké, chahe pene se jane ke. जा पकड़ पीछे वहां हम तक बरेती रहती कि कोई रहा
0: कोई डांटे के ना
1: या डांटे के या पच्चीस हमें कोई ना हम यस इन अंदर सोम हम सब कोई के डांटी ला और कोई हमें डांटे ना है
0: ओ यार
1: ऐसे के को बेटर कोई रहा हमें डांटे के हमें कोई डांटे वाला ही ना है और जो कोई है डांटे वाला तब कौन सी डांटी जो चीज हम सब कुछ जाने ला
0: ओ
1: वही तो उचित डांटी जो चीज हमें सब कुछ पता है जो चीज हमें ना पता है वो हमें डांट
0: चाहे कोई का खोजे के जो कुछ अच्छेंट कर देगा तो
1: प्रसीज एंड खुये देंगा वही चाहे खुये देंगा हमें सिखाओ और एंड देंगा ना जो चीज हम जाने ला सब चीज दाखलस वाला चीज नहीं इतनी ज्ञान के बाद जैसे बोला जा है ज्ञान के बाद
0: या प्रसीज
1: प्रसीज ज्ञान के बाद बताओ कि जिसमें हम लोग के ज्ञान हो गए और ज्ञान वाला मनाई बहुत कमती मिली है मार ये मुझसे देखो कहू
0: या
1: ज्ञान वाला बात बहुत कमती मिले है सुने के या दैट इज एन सेल्फ साम सेगे से
0: कौन पे
1: खाने वाला बहुत कम है
0: कौन बेटा जी है यानी पास बूफन पास रहे तो
1: या
0: भैया बताओ कौन गाना मांग रहे हैं आप
1: कहीं देख लीजिए ये मेरे फिल्म के गाना ना है मैं खोद दाद नफरत है मुझसे कोई प्यार कर बैठा
0: नफरत
1: है मुझसे कोई प्यार कर बैठा अच्छा सन हेल लंगली मार ट्वीट नहीं मार फिल्म ना लिखा ला यूट्यूब पर तक ली अच्छा साथ कहीं फिल्म नाम मारे खोद दे ली चे तो सन हेल मोई हेल लंगली चे एक बार 8 मिनट है
0: एक है बट अब कुछ करीब है नफरत है मुझसे
1: हाँ
0: कोई प्यार कर बैठा
1: En als je die niet kan vinden, dan is nog een tweede keus. Dil bhool nahi sakta tumhe.
0: Bhool nahi.
1: Dat is een duet.
0: Sakta.
1: En volgens mij die is van Paheli Mohabbat.
0: अच्छा हम दोनों में से एक जरूर
1: हाँ मैं देश दिस इज एन हेल मोई लॉन्ग लीच मैं फिल्म के नाम ना लिखल है और ना लिखल खेन बकेन द सांगर
0: इसको तो वो खाना उस बेस दो अच्छा भैया आप बताओ कोनो कहावत वो रख ले
1: एन कोनो कहावत हम रख ली है ओ हाँ एन दिस इज सेल्फ रापा मुझे खुद बखराई पर खुद दत इधरी खाद बखराई पर सब बोलते हैं कहावत है बोलते हैं अगर वो आएगी झगड़ा लड़ाई करेगी
0: हाँ.
1: अगर जब वो आएगी तो ना सबको पता है जब वो आएगी तो लड़ाई झगड़ा करेगी सबको पता है
0: हाँ.
1: फिर भी सब कोई नाच गाना बजाना सब कुछ करके उसको जाकर ले आते हैं
0: ओ.
1: एंड वी इस
0: दो झगड़ा हुआ तो ले बड़ा प्रेम प्यार मोहब्बत से
1: लाते हैं वो सब कोई के पता है कि जब वो आई तो झगड़ा करेगी
0: हाँ.
1: फिर भी नाच कूद के गाना बजाना से जाकर खुद

0: आते हैं. वी इज दी पर्सन जो आई और झगड़ा करेगी, वो तो सबके पता है.
1: जो जन जो मियां आई बेहद हां तो मांगल बोले वे कि ना दो रफ करे बोले के
0: नाउ एक दो रफ वेल
1: तू तू ही बोल रहा है.
0: हां दुल्हनिया
1: कोई मतलब ना दो रफ करे तो नहीं.
0: दुल्हनिया के सब बोले हैं लड़ाई करी आई झगड़ा करी ई करी फिर भी वो अपने से घर में नहीं आते हैं.
1: ले आवल जा
0: तो ऐसा तो नख वोन ले आवल जा है
1: या पर नाच गाना से नाच गाना से बैंड
0: गाना बजाना सब कुछ से ओके ले आवल जा है फिर भी सब कोई जाने है कि वो शुरू करी लड़ाई झगड़ा सब कुछ मैं फिर भी ले आवल जा है.
1: ओके सब जाने काहे ले आवल है टाइम कर
0: एक दिन बात हो जा पे क्या अल्लाह हो
1: कि जाने सोचे टाइम हो जाए ले आवे तो
0: दा अच्छा सवाल खराब
1: देखो पर ये तो
0: अच्छा सब तो ये पका दे सो हां लड़ाई झगड़ा करी मैं फिर भी आवे
1: हेर बोल बे और एक को है
0: ना वो ये तक एक खाता मोपिया.
1: ओ वो है
0: कैका. हां व्हाट इज दी मोपिया नाउ दी मोपिया वाज इफ कैका कहां लिख ली मिस. ओ या बीवी बीवी जा है बाजार. हां बीवी मार्केट गई और जाते जाते बोल कर गई के बर्तन धो देना. बर्तन धो देना नहीं तो हम आकर धोऊं. तब अब वो आदमी आदमी से बोलिस छा अपन आदमी से जाता है बाजार तो बोलिस बर्तन अरे उजा है बाजार की जहाँ आबे तब बर्तन धो देना नहीं तो हम धोऊं. तब अब आदमी ने अब साला समझ नहीं आता. अब बोले आदमी अब साला समझ नहीं आता आके मुझे धोगी कि बर्तन धोगी. अब ओके पता ना कि उकास उना समझिस कुछ. बोलो आप ओके समझना है कि वो आई हमें धोई कि बर्तन वा धोई बच्चे सो मोपिया
1: मतलब वो वही रहा जिन बर्तन वा धोई है वो धोई को धोई
0: या
1: तो के ले थारी
0: या दिस लुक्स वन मोर एंड एक कैक जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है और जिसका मोबाइल होता है वो फिर भी किसी का नहीं होता है. उसका दिन भर तो मोबाइल में बेशक रहे हैं सो खासत है
1: नहीं
0: या पहले लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था. अब सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है. तो सो अपने यीशु जहाँ हैं तो मोबाइल इतना खुशियाली हुए हैं है कि आप हमने जाए के मतलब दुए को के हम भी उसने करीला मार मोबाइल भी सोचो थोड़ी कब बताइए अब तू ना जाइए सोते सो खाते थे
1: मैं भी आज बीच वाला तेज मैं जो आदत है ठीक हम और तक आलस खात फिया मोबाइल तू कहीं कुछ इन दिन करिए अन मेल जो ऑफ एन एपियर ऑफ जो ये खात बुक ये खात इन चेक स्टूल नंबर दे दात फलान दुकान ये कान फिया मोबाइल नो एक फिया मोबाइल का ये आफराफ दुन या फन आलस दिस द वर्ल्ड इज दिस दान नो नो सो फेयर फॉर द dat men gewoon die mobiel moeilijk kan missen. Alles wordt met die mobiel gedaan.
0: Ja.
1: Of zeg ik het verkeerd?
0: Zo. Ja. Even kijken. Ik had nog een kleine hier. Even kijken. Behetrin dino ke liye behetrin dino se guzarna padta hai. Zo is het toch? आवाज कान तक आती है जबकि खामोशी आसमान तक जाती है.
1: या क्रॉप्ट इंदरदात नहीं सब मोई फगाल दल्ले रही है इसे कुछ खाज के
0: इन लास्ट टर्म
1: या गो ऑन
0: ओके जो मैं हूँ उसे कोई जानता ही नहीं जिसे सब जानते वो मैं हूँ नहीं।
1: नहीं। That could be your dog, yeah?
0: Yeah, that is also.
1: Yeah, still water happened to be crowned, you can't even wait.
0: Yeah. I'm
1: erect at need. Nee, mooi. Heel mooi weer,
0: ja?
1: Dankjewel. En de luisteraars, die heeft het ook gehoord natuurlijk.
0: Ja, even een beetje gezellig met elkaar, een beetje leuke dingen doen.
1: Hij zat al te veel voetbal wat ik hier. Dankjewel dat je hebt gebeld. Aha. Is goed weer?
0: Ja.
1: Ja?
0: En ik zou zeggen fijne haven en ik hoef het bij elkaar horen, hè?
1: Hoi toch. Is goed, Bea, dankjewel.
0: Ja,
1: heel veel luisterplezier. Kijk
0: ja,
1: plezier.
0: Dankjewel.
1: En tot de volgende
0: keer. Tot de volgende keer. Keer. Fijne ja, avond.
1: Hetzelfde dag weer. Ye thi Bea Gujarat ji Den Haag ke rehne wali. To lijiye. Hum agla geet pesh karne wale hain ki to wo hai Utrecht ke rehne wali Bea ji. Bea ji Utrecht ke rehne wale hain aur wo ye geet mange hain. Chaliye wo geet hum Bea ji aapke liye chala rahe hain. शुभकामना के साथ प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा लीजिए बेया ये उत्तराखंड के रहने वाले आपकी गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से बेया जी उत्तराखंड के रहने वाले

हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, लता जी की आवाज़ में ये गीत सुनाया गया गीत गज़ल के कार्यक्रम में। और गीत को मांगने वाली थी, देखते हैं, बेया जी, वितरक के रहने वाले बेया जी। बेया जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने मिल के चलाए हैं। बेया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बेया वितरक के रहने वाले हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है, देखो ये, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

याद रहेगा मैं तो मुकेश हार्ट ऑफ ओपिनियंस और लता जी आपको सुनाए हैं। ये शानदार दिव्यत हमने पेश की ऊपर फाउ हिंदुस्तानी रो। चलो बढ़ते हैं गीत गजल के और दना के रहने वाली बेया गजराज जी। बेया गजराज जी आपकी गीत मुझे मिल गया इस तरह से आ रहा है जहाँ तक मेरा ख्याल है अरिजीत सिंह जी ने गाए ये गीत। चलो हम आपको सुनाते हैं दना के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए। चलिए बेया जी इस तरह से आ रहा है।

प्यार कर बैठा है, अरिजीत सिंह आपको सुनाए हैं। जी हाँ, अरिजीत सिंह आपको सुनाए हैं। शुभकामना के साथ कार्यक्रम गीत गजल में हमने पेश की, और पेश करवाने वाली थी दनाके रहने वाली बेया गजराज जी। बेया जी, आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों ने पा गए थे और मिलके हम चलाए हैं। अरिजीत सिंह का ये गाया हुआ गीत है और पेश हुआ वो फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। भैया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आखिरी गीत मैं चला रहा हूँ इस कार्यक्रम के, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और वो ये गीत है, इस तरह से आ रहा है।

अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो जी ये दोनों मिलके आपको सुनाए ये शानदार द्वैत ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज सोनदकनी का तिजोरी था और आप जिन लोगों ने तार किए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की श्रीमान मीनू भगवान दीन जी के साथ। भैया मीनू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो लोगों ने तार किए हैं चलिए उन लोगों के नाम पुकार लेते हैं। वो है आशा गौरी सिंह जी और उनका पति देव करण सिंह जी वितरक के रहने वाले हैं। इर्शिला जी रोतरदाम के रहने वाली है और बेया जी वितरक के रहने वाली है और बेया गजराज जी दना के रहने वाली है। आप सबको मैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और अपने तरफ से भैया मीनू भगवान दीन की तरफ से आप दोनों आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद पेश कर रहा हूँ। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला बृहस्पतिवार को 12:03 के दरमियान, तो 12:15 और मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद सभी सहयोगी मिल के आपके सेवा में रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिल रहा हूँ दोंदरदाह को। आप सबको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। हेल फेल लॉयसर प्रसीर एंड हेल फेल कैक प्रसीर।

बाहुंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो बाहुंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9753 तक सेफ नफेटा फाहुन हिंदुस्तानी राधा।

और यहाँ से कुछ मिली जुली पुराने और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

ही बता दे, दिल है यहाँ और दर्द भी वहीं होता है। दोस्तों जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्तराज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आप के दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है, तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों, कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आपके साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नहीं खतीन 5/5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहां, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

मेरे हम सफ़र हो मेरी हम सफ़र, लता मंगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बई, नेहा दीन फिर सस्ता का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है, पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: फिल्म पत्थर का सनम, पत्थर के सनम, नई गति 1967 गाना का हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथी लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है,

जिस पद पे चला उस पद पे मुझे मुझे लता जी फिल्म के नाम है यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

भाई, जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन ये आंखें क्या होगा। सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है, हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और होल्डर बिरमन के साथ में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नीहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से मांच आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है वो अपना हो ना हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों और हम तुरंत चलते हैं और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा। साधना संगम सरगम है इसमें और फिल्म के नाम है गुथ गर्स खुद गर्स। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

यहाँ से कुछ मिली जुली पुराने और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

कोई बता दे ये दिल है यहाँ, और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है, और ये गाना मैं चली आप सभी लश्राज के लिए है जो तार करते हैं।

फनफुंठे हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। का जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयाँ पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मुझसे पहले आप सभी के सेवा किए थे श्याम पूरन जी, यानी भाई श्याम पूरन जी, और उन्होंने मुझे देवी कहा। मैं तो कोई देवी वेवी नहीं हूँ। सुनने वालों, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ।

आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते और सभी दुखी प्राणियों के लिए, और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं भाई जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती जो ठीक नहीं चल रहा था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, तो ख़ास करके इन दोनों के नाम हम ये भजन पेश करते हैं और आप सभी सुनने वालों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुनोरे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। और ये गीत हमने वेरी वेरी स्पेशली चलाए हैं जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। और सभी दुखी प्राणियों के लिए हमने ये भजन चलाए हैं। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

तमाईती मुकेश जी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। होता है सुनने वालों, याद ना जाए बीते दिनों की। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं

ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। जितनी खुशियाँ आपके पास आज है इससे भी ज़्यादा कल हो। जो अभी अभी अपने बिस्तर से उठे हैं उसे हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं।

जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में, और ये तो सच्चाई है सुनने वालों। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त पता चली जब रास्ते पर पड़े फूलों ने मुझसे कहा कि दूसरों को ज़्यादा खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। सुनने वालों, ये गीत पहले बहुत ज़्यादा चलते थे रेडियो पर, और जब किसी के शादी होती थी या विवाह संस्कार होते थे तो बहुत ज़्यादा ये गीत चलते थे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे।

सुनने वालों, पहले ये गीत बहुत ज़्यादा रेडियो पर चलते थे विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर, शादी के उपलक्ष्य पर। और एक गीत ये भी है फ्रॉम द मूवी साथी से आप सुनेंगे, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किया है सुनने वालों। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। ये तो सच है सुनने वालों कि मेरा प्यार आप लोगों के लिए ऐसा ही है। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी वो रात फिर नहीं आएगी। हम सफ़र, मेरी हम सफ़र लता जी आपको सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम है पूर्णिमा।

वहीं आप सुन रहे थे हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम परिवाज हम, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पूर्णिमा। कर ले दिल की बात, अरे कर ले दिल की बात, आज मौका है पता है, यानी पता नहीं है कि ये मौका फिर मिले ना मिले, तो अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कीजिएगा।

कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है। सुनने वालों पता नहीं ये मौका फिर मिले ना मिले, अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सरसा हम देखे तो फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम।

इसी फिल्म से हमने पेश की है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक ग्राम। सुनने वालों, कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हम आप सभी के वास्ते पेश करने वाले हैं और उसके बाद में कुछ लव सॉन्ग्स भी हम चलाएंगे। बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी,

अभी आप सुन रहे थे बासी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, मिलन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम तो पेश करने वाले हैं मैं तो दीवाना।

मुबारक हो सबको, समाये सुहाना भी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है मिलन। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली, और रास्ता से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। ये कली जब तलक फूल बन के खिले

लता और महेंद्र कपूर जी मिलकर आप सभी को सुनाने वाले थे ये कली जब तलक फूल बन के खिले, फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे।

साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, अभी आप सुन रहे थे झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाला है किशोर डा जी, क्या नज़ारे।

झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं क्या नज़ारे, किशोरा आपको सुनाने वाले थे। गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, किशोरा आपको सुनाने वाले है फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी।

गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी से भी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज़ में शर्मती तेरी आंखों की।

0: शर्वती तेरी आंखों की झील की गहराई में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों किशोर डा की आवाज़ में। बुरे भी हम भले भी हम, द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू।
1: बाबा हमारा नाम

0: द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू से अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक 2 मिनट बाकी है 11 बजने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, और विज्ञापन के बाद में आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood. Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.

0: वॉइस ऑफ आशा भोसले द वर्सटाइल प्रियंका मित्रा।
1: हो तुम्हें ऐसी बात में दबाके चली आई, खुल जाए वो ही बात को दुहाई।
2: कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। चलिए मिलकर सुनते हैं।

मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना, तो सबने ठुकरा।

कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा, फ्रॉम द मूवी शराबी से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। हमने जफा ना सीखी, फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ज़िंदगी से। हमने पेश किए हैं हमने जफ़ा न सीखी, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।

जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा भी। आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इंतकाम, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी भरोसा, से हम पेश करते हैं।

वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। गुरुदत्त की आवाज़, यानी क्षमा करना सुनने वालों, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी भरोसा से हमने पेश किए हैं बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।

बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। झुक गया आसमां इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कहाँ चल दिए इधर तो आओ।

अभी आप सुन रहे थे कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे नींव को न ठुकराओ। फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमान से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो रे। फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने है।

तेरे घर के सामने है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं दिल का भंवर करे पुकार। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शांता खेमई जी के वास्ते जो हमारे साथी कर्मचारीगण हैं और हमारे प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं।

पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हमने पेश किए हैं। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया।

लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, फ्रॉम द मूवी बेनाम से हमने पेश किए हैं। तो हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

है मैं तुझ में हूँ अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इंतकाम से।

हमारे लिए तुम हमारे लिए भी आप सुन रहे थे। दो बदन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। फ्रॉम द मूवी दो बदन से आप सुनेंगे।

रहा घर दिशों में हरदम मेरी इश्क का सितारा, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दो बदन से। जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा नाम जोकर है फिल्म का नाम, मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।